सुप्रभात। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। आज शुक्रवार है। शक संबत 1948 के ज्येष्ठ मास की तिथि 15, तदनुसार 5 जून सन 2026। इस समय स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:49 होने को हैं और हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं अपनी पहली सभा के कार्यक्रमों के साथ।

0: ये आकाशवाणी पटना है, लीजिए सुनिए गांधी विचार।
1: महात्मा गांधी की अहिंसक समाज रचना की मौलिक दृष्टि उनकी कालजयी कृति हिंद स्वराज में बीज रूप में वर्णित है। इस पुस्तक की रचना 1909 में मूलतः गुजराती में की गई, जिसमें 20 अध्याय हैं, जिनमें विभिन्न अवसरों पर इंडियन ओपिनियन के पाठकों द्वारा हिंदुस्तान के हालातों पर दक्षिण अफ्रीका और विलायत में हिंसावादी विचारधारा वालों द्वारा पूछे गए सवालों पर विचार करते हुए उन्होंने अपना दृष्टिकोण रखा है। इनमें विभिन्न पुस्तकों से अर्जित ज्ञान के निचोड़ के साथ उनका अभिमत भी है। वे मानते थे कि हिंदुस्तान के दुखों का हिंसा के रास्ते से इलाज नहीं हो सकता। प्रस्तावना में गांधी जी लिखते हैं कि हिंद स्वराज्य पश्चिमी सभ्यता की धुन से अलग विचार रखने वाले बहुतेरे हिंदुस्तानियों के हैं। यही विचार यूरोप के हजारों लोगों के हैं। देश सेवा के उद्देश्य से और सत्य की खोज के लिए उन्होंने यह पुस्तक लिखी, पर कोई पूर्वाग्रह नहीं था। इसलिए अगर उनके विचार गलत साबित हों तो उन्हें पकड़ रखने का कोई उनका आग्रह नहीं था। हिंद स्वराज्य के बारे में लिखते हुए गांधी जी ने कहा कि हिंद स्वराज्य देश धर्म की जगह प्रेम धर्म, हिंसा की जगह आत्म बलिदान और पशुबल से टक्कर लेने के लिए आत्मबल खड़ा करती है। यह आधुनिक सभ्यता की सख्त टीका है। उन्होंने 1938 में भी कुछ शब्दों के संपादन के अलावा सब कुछ यथावत रखने की वकालत की थी। तात्कालीन हिंदुस्तान की दुर्दशा की समीक्षा करते हुए इसके अवनति का कारण परस्पर विश्वास एवं सद्भाव की कमी, औपनिवेशिक शोषण, पश्चिम का अंध उद्योगवाद, तकनीकी, स्वास्थ्य व्यवस्था, न्याय और संसदीय प्रणाली के अंधानुकरण को चिन्हित किया, जिन्हें कालांतर में उन्होंने और भी विकसित किया। उनके अनुसार अहिंसक समाज रचना में शोषण, छुआछूत, भेदभाव का कोई स्थान नहीं होगा। अहिंसक समाज में न तो कोई बड़ा होगा और न छोटा, न कोई ऊंचा होगा और न नीचा, न कोई अगड़ा होगा न पिछड़ा, न कोई भूखा होगा न कोई नंगा, सब बराबर होंगे। सभी की बुनियादी जरूरतें पूरी होंगी। अहिंसक समाज में संचय और लालच की कोई जगह नहीं होगी। परस्पर स्वावलंबन के आधार पर आवश्यकता अनुसार विकेंद्रित उत्पादन व्यवस्था होगी। सामाजिक जीवन परस्पर सहयोग और सहकार पर आधारित होगा। हर तरह से स्वदेशी अहिंसक समाज रचना की नींव होगी। गांधी जी के अनुसार अहिंसक समाज रचना की शिक्षा व्यवस्था भी अहिंसा के मूल्य पर आधारित होगी, जिसमें अक्षर का ज्ञान न तो शिक्षा का आदि है और न अंत। इस तरह की शिक्षा काम आधारित तो होती ही है, श्रम के आदर को भी स्थापित करती है। इसमें श्रम और बुद्धि दोनों को समान दर्जा हासिल है। इस व्यवस्था में श्रेष्ठता और न्यूनता के विभाजन का कोई स्थान नहीं होता। सभी समानता के सिद्धांत से निर्देशित होते हैं। तकनीकी शिक्षा भी प्रतियोगिता मूलक होने के बजाय शांति आधारित होती है, जो स्वाभाविक रूप से गरीबी निवारण में सहजता से कारगर हो सके। उदाहरण के लिए उन्होंने चरखा और सिलाई मशीन को लिया। उनके अनुसार चरखा विकेंद्रित तकनीक और व्यापारिक शांति का प्रतीक है। अहिंसा की आर्थिकी में चरखा की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह गांवों के आत्मनिर्भरता की कुंजी है और खादी एकता का सूत्र है। इसी तरह ग्राम उद्योग अहिंसक समाज रचना का एक अभिन्न अंग है। गांवों की जरूरतों का उत्पादन गांवों में हो, इसके लिए सरकार की जिम्मेदारी है कि वह विकेंद्रित लागत, उत्पादन और वितरण व्यवस्था को सुनिश्चित करे। स्थानीय स्वशासन अहिंसक समाज रचना का अभिन्न अंग है। स्थानीय संसाधनों का नियोजन तथा पंचायती राज और ग्राम गणराज्य के अहिंसक स्वरूप को उन्होंने समुद्रीय वृत्त सा पारस्परिक संबंध माना है, जो छोटे वृत्त से प्रारंभ होकर विशाल वृत्त में विलीन हो जाता है। राजनीति में अहिंसा का प्रयोग तो कुछ हुआ भी है, किंतु जीवन के अन्य क्षेत्रों में इसका प्रयोग होना अभी भी बाकी है। हिंदुस्तान की आजादी में अहिंसा का सफल प्रयोग हुआ। दक्षिण अफ्रीका में काले गोरे के भेद के खिलाफ सफल संघर्ष भी अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित था। और अब तो संयुक्त राष्ट्र महात्मा गांधी के जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मना रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अहिंसा की अवधारणा जनमानस को संरचनात्मक हिंसा से मुक्ति दिलाने का एक महत्वपूर्ण

0: हथियार बन गई है।
1: आकाशवाणी पटना से अभी आप गांधी विचार सुन रहे थे और अब लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि सूचना।
2: किसान भाइयों नमस्कार। हमारे देश के फलों में केले का स्थान प्रमुख है। इसकी खेती उत्तर प्रदेश, बिहार और पूर्वी क्षेत्र में अब बढ़ती जा रही है। इसमें शर्करा एवं खनिज लवण जैसे फास्फोरस और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके लिए दोमट भूमि जिसका जल निकास अच्छा हो, पीएच मान 6 से 7.5 के बीच हो का चयन करना चाहिए। केला की खेती जो है गड्ढे में की जाती है। पहले गड्ढे तैयार किए जाते हैं जो कि अप्रैल मई महीने में तैयार होते हैं और गड्ढे की लंबाई चौड़ाई और गहराई 60 सेंटीमीटर आपको रखनी होती है। फिर गड्ढे में गोबर या कंपोस्ट की सड़ी हुई खाद, उसके बाद कुछ दवाएं जो कि कीटनाशी होती हैं या नीम की खली डाल करके गड्ढे की भराई करनी चाहिए। पौधों और एवं कतार की दूरी 1.5 मीटर रखना चाहिए। इस तरह से 1 हेक्टेयर में 4,400 पौधे लग सकते हैं। लगाने का समय जो है 15 मई से 15 जुलाई होता है, लेकिन जो जलमग्न क्षेत्र होते हैं यानी कि जहाँ कुछ पानी वगैरह लग जाता है वहाँ देर से भी आप बुआई कर सकते हैं। केला की किस्मों में रोबस्टा, मालभोग, चिनिया, चंपा, अल्पान, मुठिया, कुठिया और बतीसा प्रमुख हैं। अल्पान जो है वो मुख्य रूप से अपने यहाँ वैशाली क्षेत्र में उगाया जाता है। मुठिया केला भी मध्यम आकार का होता है और उसे कच्ची अवस्था में सब्जी हेतु ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। उसकी भी खेती बिहार में खूब होती है। आप इसके लिए जो पौधे का चयन करते हैं वो 2-3 माह पुरानी तलवारनुमा पत्तियां जो होती हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। टिशू कल्चर से प्राप्त पौधे भी रोपण के लिए अच्छे होते हैं। इसमें फल जल्दी आते हैं और संख्या भी अच्छी होती है। 300 ग्राम नाइट्रोजन, 100 ग्राम फास्फोरस और 300 ग्राम पोटास प्रति पौधा प्रति वर्ष डालना चाहिए। नाइट्रोजन को 5, फास्फोरस को 2 और पोटास को 3 भागों में बांट करके देना चाहिए। जैसे पौधा रोपण के समय फास्फोरस 50 ग्राम, पौधा रोपण के 1 माह बाद नाइट्रोजन 60 ग्राम, पौधा रोपण के 2 माह बाद नाइट्रोजन 60 ग्राम, फास्फोरस 50 ग्राम और पोटास 100 ग्राम देना चाहिए। फूल आने के समय भी कुछ उर्वरकों का प्रयोग कर सकते हैं। बरसात के मौसम में जब आप इसकी रोपाई करते हैं यानी कि जून जुलाई अगस्त में तो सिंचाई की आवश्यकता कम होती है, लेकिन ज्यों ज्यों गर्मी बढ़ती है या नमी की कमी होती है तो सिंचाई करनी चाहिए। पौधे के बगल से निकलने वाली जो पुत्तियाँ होती हैं उनको भूमि की सतह से काट करके निकालते रहना चाहिए। मई जून के महीने में 1 पुत्ती हर पौधे के पास अगले वर्ष पेड़ों की फसल के लिए छोड़ देनी चाहिए। जब पौधे बड़े हो जाएं और फल लगने को हों उस समय बांस की सहायता से उन्हें सहारा दे देना चाहिए ताकि वे गिरे नहीं। बरसात के पहले मिट्टी भी चढ़ाई जाती है केले की फसल पर। इसमें कुछ रोग

0: चढ़ाई जाती है केले की फसल पर। इसमें कुछ रोग लग जाते हैं, जिन रोगों में पनामा बिल्ट बहुत महत्वपूर्ण है। यह कवक के द्वारा होता है। इसके प्रकोप से पौधे की पत्तियां पीली पड़कर डंठल के पास से नीचे झुक जाती हैं, अंत में पूरा पौधा सूख जाता है। रोकथाम के लिए बावेस्टीन के 15 मिलीग्राम प्रति लीटर पानी के घोल में घोल करके पौधों के चारों तरफ मिट्टी में 20 दिनों के अंतर से 2 बार देना चाहिए। तना गलन रोग भी इसमें लगता है। और इसके अलावा लीफ स्पॉट, बंची टॉप, ये सब रोग लगते हैं। कीड़ा जो लगता है उसमें केले का घुन प्रमुख है। इसके द्वारा काफ़ी हानि होती है। भूमि सतह के पास तने अथवा प्रकंद में छेद बनाकर इसकी मादा जो है अंडे देती हैं। सूढ़ियाँ निकलकर तने में छेद करके खाती हैं। इसके फल स्वरूप सड़न पैदा हो जाती है और पौधा गिर जाता है। तो इसके लिए स्वस्थ कंद लगाने चाहिए। कंदों को लगाने से पहले साफ करके 1 मिली लीटर फॉस्फेमीडान अथवा 1.5 मिली लीटर मोनोक्रोटोफास प्रति लीटर पानी के बने घोल में 12 घंटे तक डुबो करके उपचारित करके ही बुआई।
1: अभी आपने कृषि सूचनाएं सुनी। अब हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार।
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी का एक जनसभा करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री आज शाम दमन भी जाएंगे। श्री मोदी दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना रहा।
3: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता के लिए भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और ब्रिटेन की विदेश सचिव येविट कूपर ने कल नई दिल्ली में भारत यूके विजन 2035 की समीक्षा के लिए पहली वार्षिक बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत यूके विजन 2035 के विकास, प्रौद्योगिकी और नवाचार, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु तथा स्वच्छ ऊर्जा और शिक्षा के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के अवसरों का स्वागत किया है और इसके शीघ्र लागू होने की आशा व्यक्त की है। दोनों पक्षों ने पारस्परिक महत्व के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों और राष्ट्रमंडल सहित बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग के विषयों पर भी चर्चा की। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। SBI रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती मुद्रास्फीति और कच्चे तेल की कीमतों, रुपए के अवमूल्यन और संभावित कमजोर मॉनसून जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए रेपो दर में वृद्धि सही नहीं होगी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि रिजर्व बैंक बाजार में संकट को दूर करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए अल्पकालिक ब्याज दर और तरलता उपाय अपना सकता है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 1987 बैच के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी तरुण कपूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में 1 वर्ष का सेवा विस्तार देने को मंजूरी दे दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय में उनका ये कार्यकाल 10 जून से प्रभावी होगा और ये 1 और वर्ष की अवधि के लिए रहेगा।

0: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 7 जून तक भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसमें व्यापार, निवेश, आपसी संपर्क और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और इसके संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिन मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून को 1973 से हुई थी। ये दिन पर्यावरण की रक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करता है। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में कल भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाइजिंग को शिकस्त दी थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सबसे पहले सुनिए संवेद स्वर में देश वंदना।

अभी आप ये देशभक्ति गीत सुन रहे थे। अगर कोई और सब साधन छोड़कर केवल एकमात्र राम नाम की ही शरण ले लेता है, तो चाहे वह कितना भी बड़ा दुखी क्यों न हो, भगवान राम उसका बेड़ा पार लगा ही देते हैं।

गणेश जी के रोम रोम में माता पिता के प्रति श्रद्धा का भाव होने के कारण उन्होंने माता पिता की प्रदक्षिणा करके ही अग्र पूजा का अधिकार प्राप्त किया था। गणपति को हर जगह प्रथम पूज्य माना जाता है। हर शुभ काम की शुरुआत गणपति वंदना से ही होती है। गणेश की महिमा अपरंपार है। प्रतिदिन प्रातःकाल उनका नाम सुमिरन करने वालों को मनोवांछित फल मिलता है।

इस भजन के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। लीजिए सुनिए रामचरितमानस से पाठ, मुख्य स्वर वाणी जयराम का है।

जनकपुर में अपने चारों पुत्रों के विवाह का शुभ कार्य संपन्न होने के बाद महाराज दशरथ सभी सगे संबंधियों सहित अयोध्या लौटे। राजकुमारों की बारात की वापसी का समाचार पाकर अयोध्या में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। भेरी और शहनाई, नगाड़े और ढोल तथा शंख की मंगल ध्वनियां चारों दिशाओं में गूंजने लगीं। प्रसन्नता से झूमते नगर निवासियों ने घरों, बाजारों, गलियों और चौराहों तथा नगर द्वारों को तोरण और ध्वज पताकाओं से सजाया। घर घर मंगल कलश सजाए गए। अयोध्या का ये सजा संवरा रूप देखकर ब्रह्मा आदि देवता भी सिहाते हैं। राजमहल की रचना कामदेव के मन को भी मोहित करने वाली है। सामूहिक उत्साह मानो सहज सुंदर शरीर धारण करके राजा दशरथ के महल में सर्वत्र छा गया है।

0: आकाशवाणी पटना से अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस से पाठ। मुख्य स्वर वाणी जयराम का था। आकाशवाणी पटना से अब प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य सूचनाएं।
1: श्रोताओं नमस्कार, स्वास्थ्य कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं पटना के जाने माने चर्म एवं यौन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एके सुधाकर। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
2: नमस्कार
1: डॉक्टर साहब, जिस तरह से अभी गर्मी का मौसम, ऐसे में बाहर निकलने में कई लोगों को जैसे कि स्किन संबंधित प्रॉब्लम आ जाता है, तो लोग उसे कहते हैं कि हमारे स्किन संबंधित डिजीज हो गया। तो आज हम जानना चाहेंगे कि सन बर्न है क्या बेसिकली।
2: फर्स्टली हमको समझना होगा
1: जी
2: कि कोई भी पेशेंट, कोई भी मरीज यदि धूप में ज़्यादा देर तक रहते हैं
1: जी,
2: तो उनको ऐसे आभास होता है कि मैं सन बर्न का शिकार हो रहा हूँ।
1: जी जी जी।
2: लेकिन ऐसे हमको नहीं समझना है, हमें समझना है कि सूर्य की किरणों के संपर्क में आने से त्वचा की रंग थोड़ी सी भूरी होती है
1: जी,
2: या उससे संबंधित थोड़ा सा जलन पैदा हो जाता है या सन टैन होने लगते हैं। तो उस कंडीशन में हमें ये सर्च करने की जरूरत है कि सचमुच मैं सन बर्न का शिकार हूं या नहीं। पहले हम तो देख लेंगे कि यदि मेरी त्वचा छूने पर यदि थोड़ी सी गर्म महसूस हो रही है तो हमें 50% अस्वस्थ हो जाना चाहिए कि मैं सन बर्न का शिकार हो रहा हूँ। यदि आप सन बर्न के शिकार हो रहे हैं तो उसका और पहचान है, जैसे त्वचा में थोड़ी सी सूजन आ जाना, बहुत हल्की सूजन उसमें आ जाती है, छूने पर दर्द करना, लगे कि हमें महसूस हो रहा है कि कुछ न कुछ वहाँ पर इरिटेशन महसूस हो रही है।
1: जी जी।
2: यदि हमें सन बर्न सचमुच मान लीजिए हो ही गया तो इससे बचाव कैसे करेंगे?
1: जी जी जी।
2: अब फर्स्टली अपने आप घर में आ करके एक तो यदि स्वेलिंग हो गया या दर्द हो रही है तो एक दर्द निवारण दवाई आप ले लें, पैरासीटामोल की कोई टैबलेट आप ले लें
1: जी।
2: और त्वचा को ठंडे पानी से या बर्फ से यदि आप 2-3 बार सेक लेते हैं तो संभवतः ठीक हो जाएगा
1: जी। सनबर्न के बारे में अगर हम जाने, एक आम व्यक्ति कई बार दोपहर में निकलता है, कई बार सुबह में निकलता है, तो बेसिकली क्या टेम्परेचर किस समय ज़्यादा प्रभावित करता है हमारी स्किन को?
2: देखिए, हमारे अभी गर्मी के मौसम है, हमारी टेम्परेचर 35, 36, 37 डिग्री पहुंच जा रही है
1: जी।
2: कभी कभी इतनी गर्मी हो जा रही है कि 10-11 बजे भी हम लोग 36 टेम्परेचर का शिकार हो रहे हैं।
1: बिल्कुल।
2: तो ये कहना या नापना हमारी बस की चीज़ नहीं है, ये गवर्नमेंट की तरफ से एक मशीनरी लगाई गई है जो कि वो इवेल्युएट करता है
1: जी।
2: हम लोग उसको नहीं कर सकते हैं, फिर भी हमें अपनी त्वचा को देख करके गर्मी को महसूस कर लेना है
1: जी जी, और उसी हिसाब से एहतियात करना है।
2: उसी हिसाब से
1: तो बेसिकली लक्षण की अगर हम बात करें तो एक आम आदमी किस प्रकार इसको समझ ले, संक्षेप में हम कहें तो लक्षण क्या है?
2: फर्स्टली यदि आपको सनबर्न का शिकार हो गए हैं तो पहले आप देखें कि आपके शरीर पर कुछ लालीपन आया कि नहीं। यदि स्किन लालीपन आ गए, जो हमारे शरीर धूप के कॉन्टेक्ट में रहा
1: जी
2: वहाँ पे लालीपन आएगा।
1: बिल्कुल।
2: थोड़ी सी स्वेलिंग भी आ सकती है
1: जी,
2: हल्का उसमें दर्द भी होगा, थोड़ी सी खुजली भी हो सकती है। ये 3-4 यदि क्राइटेरिया हमारे शरीर पर महसूस हो रहे हैं तो हमें समझ जाना चाहिए कि कहीं न कहीं हम सनबर्न के शिकार हैं।
1: और इसके बचाव में मुख्य तौर पर जो दवाओं

0: की अगर हम बात करें तो दवा के अलावा
1: सबसे प्रथम है कि अभी शहरों को अपेक्षा देहातों में सनबर्न की शिकायतें बहुत मिलती है।
0: अच्छा
1: शहर में तो सभी लोग एसी के यूज़ करते ही हैं, फैन
0: जी
1: के यूज़ करते ही हैं,
0: जी जी
1: लेकिन हमारे सुदूर इलाकों में बहुत ऐसे गांव हैं, बहुत ऐसे ग्रामीण अभी भी रहते हैं जिन्हें अभी पंखा की आदत नहीं है।
0: बिल्कुल
1: शहर में लोग तो एसी की आदत बना ली है, कूलर की आदत बना ली है, फैन की आदत बना ली है, कहीं ना कहीं वो अपना बचाव कर रहे
0: कर रहे
1: हैं,
0: हैं।
1: लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बचाव नहीं कर पा रहे हैं। उनके लिए प्रथम चीज़ है कि यदि आप धूप में झुलसी हुई त्वचा ठीक करना चाहते हैं तो खास करके आप अपने घर से बाहर थोड़ा सा कम निकलें, जो ज़्यादा धूप है तो वहाँ ना
0: दो समय ना
1: निकलें।
0: निकले
1: यदि निकल भी गए, उसके शिकार हो भी गए, तो ठंडे कपड़े का यूज़ थोड़ा सा कभी ना कभी बराबर किया करें।
0: जी।
1: चेहरा को बराबर धोने का प्रयास करें, करीब 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद उसको लगे कि थोड़ा सा हमें चेहरा को पानी धोने का मतलब कि मैं
0: जी
1: चेहरा को न्यूट्रिशन दे रहा हूँ, इसलिए उसकी अपेक्षाएं हमारी सब जगह से ठीक होती
0: जी जी
1: तो हमें थोड़ा सा बेहतर महसूस कर सकते हैं।
0: जी
1: उसके बाद यदि हम घर पे आए तो एलोवेरा जेल लगा लें, हाइड्रोकॉर्टिजन की क्रीम आती है
0: जी
1: उसको थोड़ा सा यूज़ कर लें, चेहरे पर नहीं, चेहरे पर तो सनस्क्रीन लोशन चलती है
0: जी जी कई
1: तो
0: प्रकार
1: उसको भी
0: के तो
1: थोड़ा सा यूज़,
0: बिल्कुल
1: या
0: जी
1: अब तो सनस्क्रीन लोशन सभी जगह बॉडी में यूज़ किया जा सकता है
0: जी जी
1: तो उसको हम लोग यूज़ कर सकते
0: यूज़ कर
1: हैं।
0: सकते हैं
1: पर एक और चीज़ मैं कहना
0: जी
1: चाहूँगा,
0: जी
1: बहुत व्यक्ति हैं कि सन स्क्रीन लोशन जो लेते हैं
0: जी
1: SPF 30 किसी का होता है,
0: जी जी
1: किसी का SPF
0: 50
1: 50 होता है,
0: जी
1: इसका कैसे कैलकुलेशन हम करते हैं?
0: जी
1: तो SPF मीन्स होता ही है कि जैसे आप एक आकलन है वो, ठीक है ना, SPF का मीन्स ही हो गया कि सन प्रोटेक्शन फैक्टर,
0: जी जी जी
1: ये आकलन है। इसको जैसे मान लेते हैं कि 30 SPF 30 हुआ
0: इस जी
1: तो ये 5 घंटे के लिए यानी 5 घंटे के लिए आप उसे प्रोटेक्ट हो सकते हैं। 30 × 10
0: 30
1: तीन
0: इंटू
1: सौ हो गए,
0: 300 6
1: 300 मिनट्स
0: मिनट्स
1: आप SPF 30 से प्रोटेक्ट हो जाएंगे। यदि आप SPF 50 यूज करते हैं तो 50 × 10 यानी 500, यानी आप 7 से 8 घंटे SPF
0: 50 कैसे
1: 50
0: बच
1: यूज कर सकते।
0: सकते हैं,
1: बहुत लोगों का ऐसा कन्फ्यूजन होता है कि मैं 30 यूज करूं या
0: 50 यूज़
1: 50
0: करूं,
1: यूज
0: 50
1: करूं,
0: से ज़्यादा बचाव होगा एफ सी थर्टी
1: बचाव
0: से भी,
1: नहीं,
0: यानी
1: उससे बचाव नहीं, वो आपको
0: सेम
1: ड्यूरेशन
0: है,
1: को बढ़ाएगा,
0: ड्यूरेशन है केवल, इनका अंतर
1: ड्यूरेशन बढ़ाएगा,
0: ड्यूरेशन से है
1: ड्यूरेशन से बढ़ाएगा।
0: जी। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे श्रोताओं को सनबर्न और इसके क्या कारण, लक्षण और कैसे बचाव करें इस विषय पर हमारे श्रोताओं को जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आपने स्वास्थ्य सूचनाएं सुनी। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 kHz पर आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। अब सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 7:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हाल चाल। सात बजकर 15 मिनट पर हम आपको सुनवाएंगे बज्मे कव्वाली जफर हुसैन कव्वाल और साथी की आवाजों में। सात बजकर 25 मिनट पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे पद्मा तलवारकर का राग जौनपुरी में ख्याल गायन। उर्दू कार्यक्रम अंजुमन होगा हमेशा की तरह 9:10 पर। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसमंजरी सुनिएगा सुबह 10 बजे। बिहार का लोक संगीत ये कार्यक्रम होगा दिन में 12 बजे। 12:30 पर फोन इन कार्यक्रम में हेलो डॉक्टर का प्रसारण किया जाएगा। आज का विषय है विभिन्न प्रकार के जोड़ों के दर्द, विशेषज्ञ हैं डॉक्टर पंकज कुमार। कार्यक्रम पराग आप सुनेंगे दिन में 1:05 पर। फिल्म संगीत हम आपको सुनवाएंगे दिन में 1:30 पर। 2:10 पर रोजगार सूचना प्रसारित की जाएगी। युवाओं का कार्यक्रम युववाणी होगा शाम 5 बजे। शाम 5:30 पर भोजपुरी कार्यक्रम आरती का

0: शाम 6:30 पर ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम चौपाल होगा और हमारे किसान भाई खेती गृहस्थी कार्यक्रम सुनेंगे शाम 7 बजे। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे सरकार के 12 साल पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम, थीम होगा महिला सशक्तिकरण। रात्रि 8:35 पर आप सुनेंगे विज्ञान का प्रचार प्रसार और आकाशवाणी, प्रस्तुति रजत कुमार की होगी। रात्रि 9:30 पर होगा कार्यक्रम शब्द शिल्प और रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे थीम पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आज की रात। रात्रि 10:30 पर होगा फिल्म संगीत। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। इस समय 6:55 होने को हैं। अब हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार होंगे।
1: EM आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचको नरेन्द्र दत्त सेमवालः। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य गुजरातस्य दमनक्षेत्रस्य भ्रमणं करिष्यति। सः सूरत नगरे राजमार्गस्य विद्युदुत्पादन प्रकल्पस्य औद्यमिक क्षेत्रस्य च कृते 8,18,000 crore rupees बहुविध विकास परियोजनानां समर्पणं शिलान्यासं च करिष्यति। श्रीमोदी सूरत नगरे 200 शय्या युक्तं ESIC इति चिकित्सालयम् अपि उद्घाटयिष्यति, यत् विशिष्ट क्षेत्रेषु आधुनिक माध्यमिक स्वास्थ्य सेवाः प्रदास्यति। प्रधानमंत्री गुजरात सर्वकारस्य अनेकेषां महत्वपूर्णानां उपक्रमाणां उद्घाटनमपि करिष्यति, येषु आधुनिक विद्युत वितरण उन्नयनम्, उन्नत अपशिष्ट व्ययनम्, पेट्रोलियम चेत्यादीनि अन्तर्भवन्ति। सायंकाले प्रधानमंत्री मोदी दमननगरं गत्वा प्रायः 77,900 crore rupees विकास परियोजनानां शिलान्यासं करिष्यति। एतासु परियोजनासु स्वास्थ्य सेवा, नागरिक विमानयानम्, पर्यटनम्, अवसंरचना, संपर्कः, जनकल्याणम् इत्यादीनि विविध क्षेत्राणि सम्मिलितानि सन्ति। प्रधानमंत्री नमो विमानस्थानकस्य, नमो चिकित्सालयस्य च नूतन भवन सहितं प्रायः 44,300 crore rupees परियोजनानां उद्घाटनं संपर्कं च अपि करिष्यति। नूतन विमानस्थानक टर्मिनल इत्यनेन क्षेत्रीय वायुसंपर्कः महत्वपूर्ण रूपेण वर्धिष्यति, अपि च अस्य प्रदेशस्य आर्थिक वृद्धि च सुकरा भविष्यति। भारतीय रिजर्व बैंक इत्येतत् द्वैमासिक्याः मौद्रिक नीत्याः घोषणां करिष्यति। RBI इत्यस्य प्रमुखः संजय मल्होत्रा अद्य प्रातः मौद्रिक नीति समित्या कृतानां निर्णयानां उद्घोषणं करिष्यति। FBI रिसर्च रिपोर्ट इत्यस्य अनुसारं वर्धमान मुद्रास्फीतिः, क्रूड मूल्यानि, अवमूल्यन रूप्यकाणि, संभाव्य दुर्बलं वर्षाकालम् इत्यादीनां समस्यानां निवारणार्थं रेपो इत्यस्य मितौ वृद्धि समुचितोपायः न भविष्यति। तद्विहाय RBI अल्पकालिक लाभांश मिति साधनानि, द्रव्यता उपायांच उपयुज्य विपण्याः विकृति परिहर्तुं, वित्तीय स्थिरतां च समर्थयितुं शक्नोति। SBI इत्यनेन संसूचितं यत् भारतं सापेक्षक रूपेण प्रबलं समष्टि आर्थिक मूल्यं निरन्तरम् अनुभवति, तथा च वर्तमान मुद्रास्फीति प्रतिसन्धि बहुधा बाह्य कारणानां, विशेषतः पश्चिम एशियायाः भू राजनैतिक समस्यया अशोधित मूल्यानां वर्धनेन च प्रेरिता अस्ति। लोकसभायाः पूर्व महासचिवः संवैधानिक विशेषज्ञः च सुभाष सी कश्यपः दीर्घकालं यावत् अस्वस्थतायाः अनन्तरं गतदिने राजधान्यां नवदिल्ल्यां निधनम् उपगतः। असौ 97 वर्षीयः आसीत्। एकं राष्ट्रं एक निर्वाचनम् इति विधे निर्माणाय संघटितायाः उच्चस्तरीय समित्याः सदस्यः अपि आसीत् डॉ. कश्यपः। अधिक पुस्तकानां लेखकः सः गतशताब्दस्य 83 तमाब्दात् 90 तमशताब्दं यावत्

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी का एक जनसभा का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री आज ही दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और समुदायों में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है। अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि योग शारीरिक फिटनेस से कहीं अधिक स्वस्थ रहने के लिए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण है।
1: योग भोग से भी मुक्ति देता है और रोग से भी मुक्ति देता है, और सबसे अहम बात कि मिनिमम बजट में हेल्दी लाइफस्टाइल का ये सबसे उत्तम उपाय है। इसलिए आपको ये मंत्र याद रखना है, हर रोज योग भगाएगा सारे रोग।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और ब्रिटेन की विदेश सचिव यवेट कूपर ने कल नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन विजन 2035 की समीक्षा के लिए पहली वार्षिक बैठक की। दोनों नेताओं ने इसके विकास, प्रौद्योगिकी और नवाचार, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा तथा शिक्षा के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के अवसरों का स्वागत किया और इसके शीघ्र लागू होने की आशा व्यक्त की। दोनों नेताओं ने पारस्परिक महत्व के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों तथा राष्ट्रमंडल सहित बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग के विषयों पर भी चर्चा की। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। एसबीआई शोध रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती मुद्रास्फीति और कच्चे तेल की कीमतों, रुपए के अवमूल्यन और संभावित कमजोर मॉनसून जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए रेपो दर में वृद्धि सही नहीं होगी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि रिजर्व बैंक बाजार में संकट को दूर करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए अल्पकालिक ब्याज दर और तरलता उपाय अपना सकता है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने बताया कि श्री कपूर का विस्तारित कार्यकाल 10 जून से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे। इसमें व्यापार, निवेश, आपसी संपर्क और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों के लेखन का काम पूरा किया। वे 1983 से 1990 तक लोकसभा के महासचिव रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने श्री कश्यप के निधन पर शोक व्यक्त किया है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और इसके संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस

0: मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून 1973 को हुई थी। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुकरण ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में कल भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोनताई और कैंग खाईजिंग को शिकस्त दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव भी 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम हाल चाल। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज सबसे पहले जानेंगे इतिहास में आज का दिन के बारे में। आज है 5 जून और आज के दिन यानी 5 जून को वैश्विक स्तर पर विश्व पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को प्रकृति के महत्व के बारे में जागरूक करना और पर्यावरण संरक्षण के लिए कदम उठाना है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा सन 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान इसकी स्थापना की गई थी और पहला पर्यावरण दिवस 5 जून सन 1973 को मनाया गया था। यह दिन लोगों को क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण और जैव विविधता के नुकसान जैसे गंभीर मुद्दों पर कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है। पर्यावरण दिवस पर अक्सर पेड़ लगाने, प्लास्टिक का उपयोग कम करने और स्वच्छता अभियानों में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं ताकि हमारी पृथ्वी का पर्यावरण संतुलित रहे और इसकी खूबसूरती बनी रहे।

श्रोताओं, आज है जून का पहला शुक्रवार। राष्ट्रीय डोनट दिवस जून के पहले शुक्रवार को मनाया जाता है। इसकी स्थापना 1938 में शिकागो साल्वेशन आर्मी द्वारा डोनट लैसीज के सम्मान में की गई थी। ये वे महिला स्वयंसेवक थीं जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस में अमेरिकी सैनिकों को तले हुए आटे के छल्ले परोसे थे। श्रोताओं, स्वस्थ रहने के लिए योग करना अति आवश्यक है। योग एक प्राचीन कला और जीवन शैली है जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक के स्वास्थ्य को संतुलित करती है। भागदौड़ भरी वर्तमान जीवन शैली में यह तनाव मुक्ति और सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है, जो मनुष्य को एक निरोगी, शांत और अनुशासित जीवन जीने में मदद करती है।

अभी आप कार्यक्रम हालचाल सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। अब प्रस्तुत है बज़्मे कव्वाली। इसमें आइए सुनते हैं ज़फ़र हुसैन कव्वाल और साथी की आवाज़ों में ये बज़्मे कव्वाली।

0: वही गरीब खड़े वही गरीब खड़े हमारे सामने एक रोज यूं भी आ जाओ
1: हमारे सामने एक रोज यूं भी आ जाओ
0: कोई हिजाब ना हो

अभी आप जफर हुसैन कव्वाल और साथी की आवाजों में बज़्म-ए- कव्वाली सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है, प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इसमें आज सुनिए पद्मा तलवारकर का राग जौनपुरी में ख्याल गायन। तबले पर इनकी संगति की है ओमकार गुलाबाडी ने।

0: अभी आप पद्मा तलवारकर का राग जौनपुरी में ख्याल गायन सुन रहे थे। तबले पर इनकी संगति की थी ओमकार गुलवाड़ी ने। इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: इधर आइए इधर।
1: इधर?
0: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
2: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
1: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।

0: है तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
1: आकाशवाणी का ये पटना,
2: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन के दौरे पर रहेंगे। लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को विश्वसनीय साझेदार बताया, कहा अमेरिका का दबाव भारत रूस संबंधों को प्रभावित नहीं करेगा। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री का दमन दौरा भी होगा। प्रधानमंत्री वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
6: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4 लेन बनाने की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुँच में सुधार होगा। जनकल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 24 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं से लैस एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा गुजरात में ट्रांसमिशन नेटवर्क विस्तार, दहेज PCPIR और सरिगाम GIDC में उन्नत अपशिष्ट निपटान प्रणाली और वलसाड में आधुनिक बिजली वितरण उन्नयन सहित कई महत्वपूर्ण औद्योगिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी आज शुभारंभ किया जाएगा। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है। 4 से 8 जून तक आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि योग स्वस्थ रहने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण है।
7: मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
5: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये चैंपियनशिप आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले विश्व स्तर पर योग के संदेश को पहुंचाने का अवसर है।
7: 21 जून को वर्ल्ड योगा डे भी मनाया जाएगा। उस दिन दुनिया के अलग अलग देशों में योग से जुड़े आयोजन होंगे और इसका प्रमुख कार्यक्रम भारत के एक और ऐतिहासिक शहर कोलकाता में होगा। वर्ल्ड योगा डे से पहले वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप अपने आप में हेल्थ

0: और वेलनेस की डबल डोज लेकर आ गई है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे मुंबई में मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। 6 सदस्यीय समिति ने बुधवार को 3 दिवसीय विचार विमर्श शुरू किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अप्रैल में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी प्रमुख नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया था।
4: खुदरा मुद्रा स्फीति पर आधारित महंगाई सूचकांक 4% तक सीमित रखने का लक्ष्य भारत सरकार ने रिजर्व बैंक को दिया है। असाधारण परिस्थितियों में यह सूचकांक 2-6% के दायरे में रखने की भी छूट है। सोने एवं चांदी के आभूषण तथा खानपान सामानों की कीमतें बढ़ने के कारण अप्रैल में यह सूचकांक 3.48 पर था, जो कि दिए गए दायरे के अंदर है। इसी कारण विश्लेषकों का मानना है कि रिजर्व बैंक इस बार भी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। पश्चिम एशिया में उत्पन्न संकट का महंगाई तथा आर्थिक वृद्धि पर होने वाला परिणाम देखते हुए रिजर्व बैंक सतर्क दृष्टिकोण अपनाएगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। कुछ दिन पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सीएस सेट्टी ने भी कहा था कि रिजर्व बैंक ब्याज दरों में बदलाव नहीं करता है तो आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया को स्थिर रखने में मदद मिलेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से जीवन भावसा।
3: मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। श्री कपूर का विस्तारित कार्यकाल 10 जून से 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत को रूस के साथ सहयोग कम करने के लिए मजबूर करने के पश्चिमी देशों के प्रयास व्यर्थ और वैश्विक स्थिरता के लिए हानिकारक हैं। प्रमुख वैश्विक समाचार एजेंसियों के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री पुतिन ने कहा कि अमरीका के साथ भारत की राजनयिक भागीदारी दोनों देशों के चिरस्थायी संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं डालती। उन्होंने कहा कि रूस भारत को एक विश्वसनीय साझेदार मानता है। श्री पुतिन ने भारत के साथ रूस के रक्षा और सैन्य संबंधों की भी चर्चा की और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के सह विकास और सह उत्पादन के बारे में भी बताया। श्री पुतिन ने कहा कि रूस ने भारत को 5वीं पीढ़ी के SU-57 लड़ाकू विमान के निर्माण में संयुक्त रूप से काम करने का प्रस्ताव दिया है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खानाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खानाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। व्यापार समझौते पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत का अपना 4 दिन का दौरा पूरा किया है। एक रिपोर्ट।
5: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि इस दौरान वस्तुओं के व्यापार, गैर टैरिफ उपायों, सीमा शुल्क और व्यापार सुविधा, आर्थिक सुरक्षा संरक्षण और पारस्परिक हित के अन्य क्षेत्रों सहित कई मुद्दों पर रचनात्मक और सकारात्मक चर्चा की गई। मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने वाले पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत और अमरीका ने 7 फरवरी को जारी एक संयुक्त वक्तव्य में व्यापार से संबंधित एक अंतरिम समझौते पर सहमति व्यक्त की। यह भारत अमरीका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
3: आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन

0: की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून 1973 को हुई थी।
1: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। विभिन्न अभियानों, कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से लोगों और समुदायों को पर्यावरण की रक्षा के लिए आगे आने तथा बेहतर और टिकाऊ भविष्य के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देशवासियों से जलवायु और भविष्य के लिए प्रकृति से प्रेरणा लेते रहने का संकल्प दोहराने का आग्रह किया है। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों के लेखन का काम पूरा किया। वे 1983 से 1990 तक लोकसभा के महासचिव रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के दूसरे सर संघ चालक माधव सदाशिवराम गोलवलकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा कि श्री गोलवलकर ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को एक मजबूत वैचारिक आधार दिया। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच जापान के काकामिगिहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार आज शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। महिला अंडर 18 एशिया कप में भारत ने ग्रुप चरण में बिना कोई मैच हारे सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गरज के साथ आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
2: धन्यवाद जागृति। प्रधानमंत्री मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति की मुलाकात को आज प्रकाशित अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला से बढ़ेगी कच्चे तेल की खरीद, ऊर्जा साझेदारी पर भी चर्चा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का सेंट पीटर्सबर्ग में मीडिया को दिया बयान, अमर उजाला ने प्रथम पृष्ठ पर दिया है। भारत पर दबाव की कोशिश में अमरीका, लेकिन सभी जानते हैं मोदी पर दबाव बनाना नामुमकिन। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर दैनिक जागरण की खबर है, धुएं ने छीन ली सांसे पर आखिरी पल तक नहीं छोड़ा साथ। पंजाब केसरी की खबर है, मौत की इमारतों पर होगा एक्शन, उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने नगर निगम को दिए कार्रवाई के निर्देश। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ में हादसों की जवाबदेही का विश्लेषण दिया है, किसी भी हादसे का सबसे जरूरी सबक ये होना चाहिए कि भविष्य में ऐसे इंतजाम किए जाएं ताकि वैसी घटना दोबारा ना हो। दैनिक भास्कर ने बड़ा कदम शीर्षक से इको फ्रेंडली खबर दी है, सिर्फ एथेनॉल से चलने वाली देश की पहली कार लॉन्च, 5,000 पंप खुलेंगे, इससे प्रदूषण घटेगा और किसानों की आय भी बढ़ेगी। राजस्थान पत्रिका ने मॉनसून की दस्तक को मंगल प्रवेश बताते हुए लिखा है, बूंदों की बारात लेकर मॉनसून केरलम पहुंचा, 20 को राजस्थान में आगवानी। अब उत्तर भारत में तपिश के गिने चुने दिन, पत्र ने विश्व पर्यावरण दिवस पर लिखा है, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा, धरती संकेत दे रही है, क्या हम सुन रहे हैं, पहले मौसम बदलता था अब बिगड़ता है, प्रकृति से सिर्फ लिया कभी कुछ जमा नहीं किया, अब धरती दे रही चेतावनी।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल

0: फाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम नरेश मागो। द हेडलाइंस: प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू विजिट गुजरात एंड दमन टुडे to launch multiple development projects worth around 21,800 crore rupees. Prime Minister calls upon athletes participating in World Yogasan Championship to become ambassadors of Ayush Ministry's Yog 365 campaign. Reserve Bank of India to announce its bi-monthly monetary policy today. Former Lok Sabha Secretary General and constitutional expert Subhash C. Kashyap passes away in New Delhi. Russian President Vladimir Putin says U.S. pressure will not affect India-Russia ties, describes India as a reliable partner, and India to take on arch-rivals Pakistan in semi-final of Men's Under-18 Asia Cup Hockey Tournament in Japan today. Prime Minister Narendra Modi will visit Surat in Gujarat today to launch multiple development projects worth over 18,800 crore rupees in road, power and industrial sectors. Mr. Modi will first visit Hazira and will review the ongoing industrial and infrastructure projects before addressing a large public gathering in the afternoon. Later in the evening, the Prime Minister is scheduled to visit Daman to inaugurate and lay the foundation stones for various projects worth around 2,970 crore rupees in Daman. A report from our correspondent.
2: In a major boost to regional infrastructure, Prime Minister Narendra Modi will dedicate key packages of 8-lane Vadodara-Mumbai Expressway to the nation today, significantly enhancing connectivity between Gujarat and Maharashtra. The Prime Minister will also lay the foundation stone for the 4-laning of critical sections of National Highway 56 to improve access to tribal regions and Statue of Unity. Catering to public welfare, the Prime Minister will also inaugurate a modern 200-bedded ESIC hospital in Surat, equipped with round-the-clock emergency and trauma care. In addition to this, several critical utility and industrial infrastructure projects will also be launched today, including the transmission network expansion in Gujarat, advanced effluent disposal system at Dahej, and Sarigam GIDC modern power distribution upgrades in Valsad. Aparna Khund, Akashwani News, Ahmedabad.
1: Prime Minister Modi has called upon athletes participating in World Yogasan Championship to become global ambassadors of the Ayush Ministry's Yog 365 campaign when they return to their home countries. Speaking at the opening ceremony of the championship in Ahmedabad, Mr. Modi said the Ministry of Ayush has launched the Yog 365 campaign to encourage year-round engagement with yog and promote healthier lifestyles across communities.
3: भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने योगा 365 अभियान शुरू किया है। मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
1: The Prime Minister said the championship represented more than a sporting competition and offered an opportunity to spread the broader message of yoga worldwide.
3: योगासन स्पोर्ट्स का एक और पक्ष है। हम जानते हैं कि हर बड़ा स्पोर्ट अपने साथ एक पूरा इकोसिस्टम लेकर आता है। ये रोजगार के नए अवसर पैदा करता है। इसलिए जैसे जैसे योगासना स्पोर्ट्स का विस्तार होगा, वैसे वैसे इससे जुड़ी नई संभावनाएं भी बढ़ेगी। ये खिलाड़ियों के लिए नई कैरियर अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। यह ट्रेनर्स, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और इवेंट मैनेजर्स के लिए भी नए अवसर बनाएगा।
1: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI विल अनाउंस इट्स बाई मंथली मॉनिटरी पॉलिसी टुडे। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा विल अनाउंस द डिसीजंस मेड बाय द मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी एट 10 AM इन मुंबई। द 6-member MPC स्टार्टेड इट्स 3-day deliberations ऑन Wednesday।

0: a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन जा रहे हैं, जहां वो तकरीबन 21,800 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। वजीर आजम ने आलमी योग आसन चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाले एथलीट्स पर जोर दिया है कि वो आयुष वजारत की योग 365 मुहिम के सफीर बने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आज अपनी दो माही माली पॉलिसी का ऐलान करेगा। लोकसभा के साबिक सेक्रेटरी जनरल और आईनी माहिर सुभाष सी कश्यप का नई दिल्ली में इंतकाल हो गया है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अमेरिका के दबाव से भारत रूस ताल्लुकात मुतासर नहीं होंगे। उन्होंने भारत को एक काबिल भरोसा साझेदार करार दिया है। और जापान में आज 18 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों के एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला रिवायती हरीफ पाकिस्तान से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सूरत जा रहे हैं, जहां वो सड़कों, बिजली और सनती शोबों में 18,800 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। जनाब मोदी पहले हाजिरा जाएंगे और सनती और बुनियादी ढांचे के मौजूदा प्रोजेक्टों का जायजा लेंगे। वजीर आजम दोपहर को एक बड़े जलसयाम से खिताब करेंगे। जना मोदी शाम को दमन जाएंगे और तकरीबन 2,970 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
2: इलाकाई बुनियादी ढांचे को खास तौर से फरोग देने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज 8 लेन वाले वडोदरा मुंबई एक्सप्रेस वे को मुल्क के नाम वक्फ करेंगे, जिससे गुजरात और महाराष्ट्र के दरमियान कनेक्टिविटी बेहतर होगी। वजीर आजम कबाइली खित्तों और मुजस्मा इत्तेहाद तक रसाई को बेहतर बनाने के लिए कौमी शाहराह 56 पर अहम हिस्से को 4 लेन बनाने का संगे बुनियाद भी रखेंगे। अवामी फलाह बहबूद की खातिर वो सूरत में एक जदीद 200 बिस्तर वाले ESIC अस्पताल का भी इफ्तिताह करेंगे, जो 24 घंटे इमरजेंसी और ट्रामा खिदमात फराहम करेगा। इसके अलावा मुख्तलिफ अहम और सनती बुनियादी ढांचे से मुतालिक प्रोजेक्टों का भी आगाज किया जाएगा, जिनमें गुजरात में तरसीली निज़ाम की तौसी और वलसाड़ में बिजली की तकसीम की जदीद कारी शामिल है। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आलमी योग आसन चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाले एथलीट्स पर जोर दिया है कि वो जब अपने अपने वतन वापस जाएं तो आयुष वजारत की योग 365 मुहिम के सफीर बने। अहमदाबाद में चैंपियनशिप की इफ्तिताही तकरीब में इजहार ख्याल करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि आयुष की वजारत ने योग के साथ पूरे साल सरगर्मियों की हौसला अफजाई करने और सभी तबकों में सेहतमंद तर्ज जिंदगी को फरोग देने के लिए योग 365 का आगाज किया है।
3: मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
1: वजीर आजम ने कहा कि ये चैंपियनशिप खेल मुकाबले से कहीं ज्यादा आगे बढ़कर है और इससे दुनिया भर में योग के वसी तर पैगाम की तशहीर का मौका फराहम हुआ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आज अपनी दो माही माली पॉलिसी का ऐलान करेगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे मुंबई में माली पॉलिसी कमेटी की जानिब से किए गए फैसलों का ऐलान करेंगे। छह अरकान पर मुश्तमिल माली पॉलिसी कमेटी ने बुध के रोज 3 रोजा तबादला ख्याल का सिलसिला शुरू किया था। अप्रैल में रिजर्व बैंक ने अपनी अहम पॉलिसी शरह में कोई तब्दीली नहीं की थी। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
4: सरकार ने इफराती दर की शरह पर मबनी अशियाए सारफीन की कीमतों का इशारिया 4% तय किया है। मरकजी बैंक के लिए इसकी बालाई हद 6% और निचली हद 2% रखी गई है। अप्रैल के महीने में अशियाए सारफीन की कीमतों का इशारिया मामूली बढ़कर 3.48 فیصد ہو گیا اور ایسا سونے

0: और चांदी के जेवरात के साथ साथ रसोई की कुछ अशिया की कीमतें बढ़ने की वजह से हुआ। चूंकि अशियाए सारफीन की कीमतों का इशारिया तय की गई हदूद के अंदर है, लिहाजा इक्तसादी माहरीन ये उम्मीद कर रहे हैं कि अहम शरह सूद 5.25% की सतह पर ही बरकरार रहेगी। उनका यह भी कहना है कि मगरबी एशिया महास आराई की वजह से इफरात जर की शरह और माशी तरक्की को लाहक चैलेंजेस के तनाजुर में रिजर्व बैंक मोहतात रवैया अख्तियार करेगा। मुंबई से जीवन भावसार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
1: लोकसभा के साबिक सेक्रेटरी जनरल और आईनी माहिर सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में इंतकाल हो गया। वो 97 साल के थे और तवील अरसे से बीमार थे। डॉक्टर कश्यप साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की सरबराही वाली आला सतह की उस कमेटी में शामिल थे जो एक साथ इंतखाबात कराए जाने के बारे में कानूनी फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए तश्कील दी गई थी। वो 1983 से लेकर 1990 तक लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे पर फायज रहे। डॉक्टर कश्यप 100 से ज्यादा किताबों के मुसन्निफ थे। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने उनके इंतकाल पर रंजोगम का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब राधाकृष्णन ने कहा कि डॉक्टर कश्यप ने अपने मुताले इल्म तसानीफ और अवामी खिदमत के जरिए भारत के आईन और पार्लिमानी जमहूरियत की सूझबूझ के सिलसिले में गरा कदर रोल अदा किया। तकर्रियों से मुतालिक काबीना कमेटी ने 1987 बैच के रिटायर्ड आईएएस अफसर तरुण कपूर की वजीर आजम नरेंद्र मोदी के मुशीर की हैसियत से मुद्दत कार में एक साल की तौसी को मंजूरी दे दी है। अमले और ट्रेनिंग के महकमे ने मुत्तला किया है कि वजीर आजम के दफ्तर में जनाब कपूर की तौसी शुदा मुद्दत कार एक साल के लिए इस माह की 10 तारीख से शुरू होगी। तकर्रियों से मुतालिक काबीना कमेटी ने वाशिंगटन में आलमी बैंक हेडक्वार्टर में नीलकंठ मिश्रा की बतौर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तकर्री को मंजूरी दे दी है जिसकी मुद्दत कार 3 साल होगी। अमले और ट्रेनिंग के महकमे ने मुत्तला किया है कि जब तक नए अहदेदार जिम्मेदारी नहीं संभालते हैं तब तक परमेश्वरन अय्यर की मुद्दत कार में तौसी भी दी गई है। आंध्र प्रदेश में एनडीए इतिहाद ने राज्यसभा की 4 खाली सीटों में से 3 तेलुगु देशम पार्टी को और 1 जनसेना पार्टी को देने का फैसला किया है। कल रात अमरावती में एनडीए के इतिहादियों के साथ मीटिंग के बाद वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने इस फैसले का ऐलान किया। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ रूस की कलीदी साझेदारी की स्ताइश की है और जोर देकर कहा है कि रूस के साथ अपना इश्तराक कम करने के लिए भारत पर दबाव डालने की मगरबी मुल्कों की कोशिशें लाहासिल हैं और इनसे आलमी इस्तेहकाम को नुकसान पहुंच रहा है। सरकर्दा आलमी खबर रसा एजेंसियों के सरबराहों के साथ गुफ्तगू में सदर पुतिन ने भारत की मुआशी तरक्की और उसकी आजादाना खारजा पॉलिसी को सराहा और कहा कि रूस भारत के साथ अपने इकतसादी राब्तों को वसत देने का पाबंद है। सदर पुतिन ने कहा कि भारत की मुआशी तरक्की उस मेहनत का नतीजा है जो भारत सरकार वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में कर रही है। रूस के सदर ने यह भी कहा कि अमरीका के साथ भारत के सिफारती राब्तों से रूस के साथ वक्त की कसौटी पर खरे उतरने वाले उसके रिश्तों में कोई खलल नहीं पड़ता और ना ही ये कमजोर होते हैं। उन्होंने कहा कि रूस भारत को एक काबिल भरोसा साझेदार मानता है और किसी दूसरे मुल्क के साथ भारत के बाहमी ताल्लुकात की वजह से किसी तरह के मनफी मुजमरात की कोई बात नहीं है। सदर पुतिन ने मजीद कहा कि भारत एक अजीम मुल्क और अजीम जमहूरियत है और रूस के साथ अपने ताल्लुकात को वसअत देता रहेगा। आज दुनिया भर में माहौलियात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। कुरे अर्ज पर जिंदगी बचाने के लिए बेदारी पैदा करने की खातिर माहौलियात से मुतालिक अक्वामे मुत्तहिदा प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर 1973 से हर साल 5 जून को ये दिन मनाया जाता है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: फितरत और कुर्राए अर्ज के तहफ्फुज़ के लिए माहौलियात के एतबार से मुस्बत इकदामात करने के लिए बेदारी बढ़ाने की खातिर ये दिन मनाया जाता है। इस मौके पर माहौलियात जंगलात और आबो हवा की तब्दीली महकमे के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव एक पेड़ माँ के नाम मुहिम के तहत कौमी राजधानी में मैदान गढ़ी के मकाम पर नमो ऑक्सीजन पार्क में दरख्त लगाने के लिए एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। इसके अलावा मुख्तलिफ रियासतों में कई मरकजी वजीर वज़राए आला अरकान पार्लियामेंट और अरकान असम्बली माहौलियात के आलमी दिन की तकरीबात में शामिल होंगे। मुख्तलिफ मुहिम तकरीबात और इकदामात के जरिए ये दिन लोगों और मुख्तलिफ तबकों को इस

0: सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला रिवायती हरीफ पाकिस्तान से होगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
1: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: कहाँ चलती है, इधर तो
4: इधर आइए, इधर
5: इधर।
4: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
6: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
5: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
6: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
5: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
6: शुभ वाणी,
5: लाभवाणी,
4: आकाशवाणी।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय आज पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ लेंगी। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत बिहार को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना में उद्यान परियोजना के अंतर्गत 1,00,000 पेड़ लगाने के कार्य का शुभारंभ करेंगे। और मौसम विभाग ने आज अररिया, किशनगंज, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर और जमुई सहित राज्य के कुछ स्थानों पर बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय आज पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ लेंगी। मुख्य समारोह पटना स्थित लोक भवन में होगा। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन उन्हें शपथ दिलाएंगे। शपथ के बाद न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय को उनके सम्मान में पटना हाईकोर्ट में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया है। गौरतलब है कि इससे पहले न्यायमूर्ति मीनाक्षी सिक्किम उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश थीं। वे पटना हाईकोर्ट की दूसरी महिला और 48वीं मुख्य न्यायाधीश होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा

0: देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है। 8 जून तक आयोजित होने वाली पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि योग स्वस्थ रहने के लिए व्यवहारिक दृष्टिकोण है।
1: मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
0: प्रदेश को नवीकरणीय ऊर्जा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हुई हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत सरकारी भवनों के सौर ऊर्जाकरण में उत्कृष्ट कार्य के लिए बिहार को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के 2 वर्ष पूर्ण होने तथा 1 करोड़ छतों तक सौर ऊर्जा के विस्तार के अवसर पर यह पुरस्कार प्रदान किया गया। राज्य की ओर से नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के महाप्रबंधक और ब्रेडा के निदेशक राहुल कुमार ने यह सम्मान प्राप्त किया। राज्य सरकार ने इसे नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में बिहार की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। इधर महिलाओं की सुरक्षित, सुलभ और सम्मानजनक यात्रा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संचालित पिंक बस सेवा के लिए बिहार का चयन प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड के लिए किया गया है। ये पुरस्कार आगामी 20 जून को नई दिल्ली में आयोजित स्कॉच समिट के दौरान प्रदान किया जाएगा। पिंक बस सेवा को महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। इस उपलब्धि से राज्य की जन कल्याणकारी योजनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली है। कृषि विभाग ने खरीफ मौसम से पहले उर्वरकों की कालाबाजारी और जमाखोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। विभाग द्वारा चलाए गए विशेष अभियान के तहत राज्य में 29 उर्वरक विक्रेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है, जबकि 208 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि किसानों के हितों से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य में किसानों को उर्वरकों की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी और निर्धारित मूल्य पर खाद की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे मुंबई में मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। 6 सदस्य समिति ने बुधवार को 3 दिवसीय विचार विमर्श शुरू किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अप्रैल में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी प्रमुख नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया था।
2: खुदरा मुद्रा स्फीति पर आधारित महंगाई सूचकांक 4% तक सीमित रखने का लक्ष्य भारत सरकार ने रिजर्व बैंक को दिया है। असाधारण परिस्थितियों में यह सूचकांक 2 से 6% के दायरे में रखने की भी छूट है। सोने एवं चांदी के आभूषण तथा खानपान सामानों की कीमतें बढ़ने के कारण अप्रैल में यह सूचकांक 3.48 पर था, जो कि दिए गए दायरे के अंदर है। इसी कारण विश्लेषकों का मानना है कि रिजर्व बैंक इस बार भी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। पश्चिम एशिया में उत्पन्न संकट का महंगाई तथा आर्थिक वृद्धि पर होने वाला परिणाम देखते हुए रिजर्व बैंक सतर्क दृष्टिकोण अपनाएगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। कुछ दिन पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सीएस शेट्टी ने भी कहा था कि रिजर्व बैंक ब्याज दरों में बदलाव नहीं करता है तो आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया को स्थिर रखने में मदद मिलेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से जीवन भावसा।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने अदालतों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर मसौदा जारी किया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि कोई भी न्यायिक निर्णय केवल एआई द्वारा उपलब्ध कराए गए विश्लेषण या एल्गोरिथम निर्णय लेने पर आधारित नहीं हो सकता है। मसौदे पर लोगों से इस माह की 20 तारीख तक सुझाव मांगे गए हैं। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रचारित उन खबरों का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि सरकार राष्ट्रीय छात्र लैपटॉप योजना 2026 के तहत छात्रों को मुफ्त लैपटॉप देने के लिए आवेदन आमंत्रित कर रही है। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई ने बताया है कि ये दावा फर्जी है। कार्यालय ने कहा है कि सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना या विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: इधर आइए इधर।
1: इधर?
0: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
2: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
1: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
2: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
1: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
2: शुभ वाणी,
1: लाभवाणी,
0: आकाशवाणी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Pटना को फॉलो कर सकते हैं। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर जीवन को बचाने के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत यह दिवस वर्ष 5 जून को 1973 से मनाया जाता है। एक रिपोर्ट।
3: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। विभिन्न अभियानों, कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से लोगों और समुदायों को पर्यावरण की रक्षा के लिए आगे आने तथा बेहतर और टिकाऊ भविष्य के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार।
0: इधर राजधानी पटना के जेपी गंगापथ समग्र उद्यान परियोजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज 1,00,000 पेड़ लगाने के कार्य का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री ने सभी आमजनों से अधिक पौधारोपण कर धरती पर हरियाली बढ़ाने की अपील की है। साथ ही उन्होंने लोगों को बिजली की बचत, सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ाने, ईंधन बचाने और ईवी वाहनों के उपयोग करने को कहा है। मौसम विभाग ने आज अररिया, किशनगंज, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर और जमुई सहित राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्व हिस्सों में कुछ स्थानों पर बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चलने की भी चेतावनी जारी की गई है।
4: दिनांक 5 जून राज्य के उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व भाग के जिलों के एक या दो स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा, हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। अगले तीन दिनों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने की संभावना है।
0: इधर पटना सहित राज्य के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी की स्थिति बनी हुई है। कई स्थानों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान 41.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ बक्सर राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी शिक्षकों को ई शिक्षा कोश पोर्टल पर व्यक्तिगत और सेवा संबंधी सूचनाओं का सत्यापन तथा संशोधन शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया है। विभाग की ओर से कहा गया है कि आज के बाद ई शिक्षा कोश पोर्टल को बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद इस पोर्टल पर किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं होगा। निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने पटना के फुलवारी शरीफ प्रखंड के मैन पुरंदा पंचायत में राजस्व कर्मचारी राणा रणविजय गोपाल को 45,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। इस दौरान राजस्व कर्मचारी के सहयोगी को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार कर्मचारी पर अवैध अतिक्रमण को हटाने संबंधी रिपोर्ट देने के बदले राशि ले रहा था। रोहतास जिले के विभिन्न स्कूलों में फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी कर रहे 142 शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी गई है। उप विकास

विजय कुमार पांडे ने संबंधित नियोजन इकाइयों से इन शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से हटाने का निर्देश दिया है। ये सभी शिक्षक पिछले 10 साल से वेतन ले रहे थे। अररिया जिले में निर्धारित किराए से अधिक राशि वसूलने वाले बस संचालकों के विरुद्ध जिला प्रशासन ने विशेष निगरानी रखने का निर्णय लिया है। जिला परिवहन पदाधिकारी ने बस संचालकों को यात्रियों से केवल निर्धारित किराया ही लेने का निर्देश दिया। भोजपुर पुलिस मद्य निषेध और राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की संयुक्त कार्रवाई में 1.5 किलो से अधिक मात्रा में मादक पदार्थ ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। जब्त ब्राउन शुगर की कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। अररिया जिले के भरगामा प्रखंड अंतर्गत खजूरी पंचायत के बलुआही टोला में एक पोखर में नहाने के दौरान डूबने से 3 किशोरियों की मौत हो गई। अरवल जिला प्रशासन की ओर से बैंकों की जिला स्तरीय परामर्शदात्री और समन्वय समिति की बैठक की गई। बैठक के दौरान वित्तीय समावेश

0: खजूरी पंचायत के बलुआही टोला में एक पोखर में नहाने के दौरान डूबने से तीन किशोरियों की मौत हो गई। अरवला जिला प्रशासन की ओर से बैंकों की जिला स्तरीय परामर्शदात्री और समन्वय समिति की बैठक की गई। बैठक के दौरान वित्तीय समावेशन, ऋण वितरण, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार और जनहित से जुड़े विषयों पर समीक्षा की गई। आज संपूर्ण क्रांति दिवस है। आज ही के दिन महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। इस अवसर पर राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पटना के जेपी गोलंबर पर आयोजित मुख्य राजकीय समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। भारतीय खेल प्राधिकरण साई पटना की ओर से विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर 7 जून को फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल रैली का आयोजन किया जाएगा। रैली सुबह 6 बजे पटना के इनकम टैक्स गोलंबर से शुरू होकर पटना जू तक जाएगी। इस आयोजन में राज्य के विभिन्न खेल संघों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के छात्र छात्राओं के साथ साथ सशस्त्र बलों के जवान भी भाग लेंगे। रैली का उद्देश्य लोगों को फिटनेस और स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूक करना है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, सड़कों पुलों के रखरखाव में कोताही बर्दाश्त नहीं। दैनिक जागरण लिखता है, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, सरकार नौकरी सिर्फ निर्धारित योग्यता वाले अभ्यर्थियों को ही। दैनिक भास्कर ने मौसम से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, बिहार में मौसम के दो रंग, दक्षिण में लू, उत्तर में वज्रपात का अलर्ट, मानसून ने केरल में दस्तक दी। प्रभात खबर ने मुजफ्फरपुर अस्पताल में अग्निकांड की खबर को अपनी लीड बनाते हुए लिखा है, आईसीयू बन गया शमशान, 6 मरीज जिंदा चले। और अब अंत में मुख्य समाचार। न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय आज पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ लेंगी। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत बिहार को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना में उद्यान परियोजना के अंतर्गत 1 लाख पेड़ लगाने के कार्य का शुभारंभ करेंगे। और मौसम विभाग ने आज अररिया, किशनगंज, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर और जमुई सहित राज्य के कुछ स्थानों पर बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: कहाँ चलती है, इधर तो
3: इधर आइए, इधर
4: इधर।
3: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
5: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
4: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
5: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
4: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294, हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042, हमारा ईमेल एड्रेस है patna@gmail.com।
5: शुभ वाणी,
4: लाभ वाणी,
3: आकाशवाणी।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर।
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: AIR at 90.
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी पटना दरभंगा है, पेश उर्दू प्रोग्राम अंजुमन।

सामान अभी आप जफर हुसैन और उनके साथियों की आवाज में सुन रहे थे ये नात। आज आलमी योम माहौलियात है। अक्वाम मुत्तहिदा के जरिए उनकी क़यादत में इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई। हर साल 5 जून को दुनिया के कई ममालिक में माहौलियात की तहफ्फुज़ से मुतालिक सरकारी व प्राइवेट इदारों को में प्रोग्राम मुनाकिद किए जाते हैं, जिसका मकसद माहौलियाती आलूदगी को ख़त्म करना, कुदरती वसाइल के तहफ्फुज़ और मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से दुनिया भर में आवाम को शऊर की आगाही करना और उनको बेदार करना। आज माहौलियात इंतहा दर्जा के हरारत और इसके इजाफे और प्लास्टिक की आलूदगी जैसे संगीन मसाइल की जद में है। जंगलात की कटाई और सनती फसलों के ने ज़मीन, पानी और हवा को जहरीला बना दिया है, जिससे न सिर्फ इंसान की सेहत मुतासिर हो रही है बल्कि इस ज़मीन पर मौजूद दिगर जानदारों की बका भी ख़तरे में पड़ गई है। इसलिए आज के इस मखसूस दिन की को में की मुनासबत से दुनिया भर में बड़े पैमाने पर शक्रकारी और शजरकारी मुहिम चलाई जाती है। प्लास्टिक को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने और डिस्पोजल अशिया करने से गुरेज करने की हिदायत दी जाती है। पानी की बचत, तवानाई की दुरुस्त इस्तेमाल और माहौल दोस्त यानी इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी को फ़रोग देने की भी हिदायत दी जाती है। माहौलियात को बचाने और बेहतर बनाने के लिए लाजमी है कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे तरीक़ेकार अपनाएं जो माहौलियात के लिए नुकसानदेह ना हो। ये हकीकत हम याद दिलाती है कि हम कुदरत के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। इस माहौल की तहफ़्फ़ुज़ हमारी मुश्तरका और अव्वलिन समाजी अखलाकी ज़िम्मेदारी है, और हम अगर अपने माहौल को बेहतर रखेंगे

0: तभी हम सेहत अच्छी सेहत और खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकते हैं, अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं। चलिए अब सुनते हैं आज का मकाला, बातें जिनसे जिंदगी संवरती है। मकाला निगार हैं सैयद अबू जर कादरी और आज का मौजू है नेक नियति।
1: अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों को पैदा फरमाने के बाद ये वाज़ेह फरमा दिया कि हमने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। फरमाने बारी ताला है, वमा खलक्तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियाबुदून। तर्जुमा, और मैंने जिन और आदमी इसी लिए बनाए कि वो मेरी इबादत करें। यानी इंसान की पैदाइश का असल मकसद इबादत है, और इबादत का मगज नेक नियति और इखलास है। इखलास तमाम आमाल हरकत की रूह और जान है, और वह अमल जिसमें नेक नियति ना पाई जाए उस जिस्म की तरह है जिसमें ना रूह हो। दूसरे लफ्जों में ये बात कही जा सकती है कि बगैर इखलास का अमल मुर्दा जिस्म है। नेक नियति की लुगवी तहकीक। लफ्ज़ नेक नियति दो अल्फाज से मुरक्कब है, एक नेक जिसके माना है अच्छा, खालिस, पाकीज़ा, और दूसरा लफ्ज है नियत जिसके माना इरादा, कस्द और दिल के अज़्म के हैं। तो लुगवी एतबार से नेक नियति का मतलब हुआ नेक, अच्छा और खालिस इरादा। इस्तिलाही तहकीक। इस्तिलाह में नेक नियति ऐसे इरादे या नियत को कहते हैं जो खालिस अल्लाह ताला की रजा के लिए हो और उसमें किसी किस्म की रियाकारी, फरेब या दुनियावी मफाद वगैरह शामिल ना हो। फरमाने बारी ताला है, वमा उमिरु इल्ला लियाबुदुल्लाह मुखलिसीन अलहुद्दीन, के और उनको उसके सिवा कोई हुक्म नहीं दिया गया था कि वो अल्लाह की इबादत करें दीन को उसके लिए खालिस करते हुए। इस आयत को इबादत में इखलास और नेक नियति के मामले में बुनियादी हैसियत हासिल है। इसी तरह कुर्बानी के जानवर के गोश्त और खून के बारे में अल्लाह ताला का फरमान है, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालहु तक्वा मिनकुम। तर्जुमा, अल्लाह के यहाँ हरगिज न उनके गोश्त पहुँचते हैं और न उनके खून, अलबत्ता तुम्हारी तरफ से तकवा और परहेजगारी उसकी बारगाह तक पहुँचती है। इसी तरह मुतअद्दद अहादीस शरीफा में नेक नियति की तरफ इंसानों को मुतवज्जह किया गया है। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है, वो कहते हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना कि आमाल का दारोमदार नियतों पर है और हर इंसान को वही मिलेगा जिसकी उसने नियत की। अन उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى। इसी तरह नसाई शरीफ में है, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي له وجهه। के رسول الله صلى الله عليه وسلم इरशाद फरमाते हैं कि बिला शुबा अल्लाह ताला सिर्फ उन्हीं आमाल को कबूल करता है जो खालिस उसी के लिए किया गया हो और जिससे सिर्फ उसकी रजा व खुशनूदी मतलूब हो। यही वजह है कि इंसान की जिंदगी महज उसके जाहिरी आमाल से नहीं बल्कि उसके इरादों, सोचों और नियतों से इबादत होती है। नियत तो बज़ाहिर एक छोटा सा लफ्ज है, लेकिन उसके अंदर बहुत बड़ी मानवियत और काफी वसी मफहूम शामिल है। नियत दिल का वो जज्बा है जो इंसान के हर कौल व फेल को राह अमल बख्शता है और इंसान के हर अमल को बल्कि हर तरह के हरकत सकनात को नियत ही की वजह से रूह और ताजगी मिलती है। अगर किसी भी अमल में नेक नियति हो तो आम और छोटा सा अमल भी खुदा के नजदीक अजीम और ज्यादा सवाब का बायस बन जाता है, और अगर नियत में कमी हो, दिखावा हो, तो बड़े बड़े कारनामे भी बेवकत और बेहसियत हो जाते हैं। यही वजह है कि नेक नियति को इंसानी किरदार, अच्छा अखलाक और रूहानी तरक्की की बुनियाद तसव्वुर किया जाता है। कुरान और हदीस में बारह इंसान को मुखातब करते हुए ये बात कही गई है कि इंसान के आमाल की कबूलियत और अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ पसंदीदा होने का मेयार उसकी नियत पर है। एक मशहूर हदीस है जैसा कि शुरू ही में जिक्र किया गया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इन नमल आमाल बिन्नियात, के तमाम आमाल का दारोमदार नियतों पर है और हर शख्स को वही मिलेगा जिसकी उसने नियत की है। इस हदीस में अगर गौर किया जाए तो ये बात वाजह होती है कि बुनियाद नियत को बनाया गया है बल्कि आमाल का दारोमदार ही नियत पर रख दिया गया है। यानी अगर नियत खास हो तो सवाब भी खास, अगर नियत में खराबी हो तो अमल में भी खराबी आ जाएगी। और ये हदीस इस बात को भी वाजह करती है कि इंसान का बातिन उसके जाहिर से ज्यादा अहमियत का हामिल है। अगर एक शख्स किसी नेकी की नियत करता है और उसे पाए तकमील तक नहीं पहुंचा पाता, तब भी अल्लाह ताला उसकी नियत को बुनियाद पर अज्र अता करते हैं। मजीद ये कि अगर रोजमर्रा के काम, मसलन खाना पीना, काम करना, एजुकेशन हासिल करना वगैरह, अगर नेक नियति से किए जाए तो वह भी सवाब का जरिया

0: हो जाए। किसी शायर ने ये भी कहा है, रिया से पाक हो दिल, अमल साफ हो, तभी बंदे पे रब का इनाम खास हो। हमें अल्लाह ताला हर चीज नेक नियति से करने की तौफीक अता फरमाए।
1: सामईन, अभी आप सुन रहे थे मकाला बातें जिनसे ज़िंदगी संवरती है। मौजूदा नेक नियति और मकाला निगार थे सैयद अबू ज़र खादरी। नशा मुक्त भारत, नशा से पाक हिंदुस्तान, ये हुकूमत हिंद की अहम मुहिम है। इसका मकसद मुआशरे में बिलखसूस नौजवानों को मुंशियात के लानत से बचाना और नशे की तलब को ख़त्म करना। मुल्क की सतह पर इस मकसद को हासिल करने के लिए, नशा मुक्त भारत को कामयाब बनाने के लिए, ये इस मुहिम को कामयाबी के साथ जारी रखा गया है। इस मुहिम का जो खास निकात भी हैं, इस मुहिम का आगाज़ जो है वजारत समाजी इंसाफ और तफवीज़ अख्तियारात की जानिब से 15 अगस्त 2020 में किया गया था, जिसका मकसद मंशियात की फ्राहमी को कंट्रोल करना, तलब की कमी लाना और मुतासरीन के लिए तिब्बी इलाज और बहाली के मराकज कायम करना। इस मुहिम के तहत मुल्क भर में स्कूलों, कॉलेजों और कम्युनिटी के जरिए करोड़ों नौजवानों को नशे की मज़र असरात से आगाह किया जाता है, ताकि नौजवान इसकी जद में ना आए, नशे से पाक रह सकें, महफूज रह सकें और जो इस तरह नशे से मुख्तलिफ़ किस्म की जो बीमारियाँ होती हैं, बहुत ही ख़राब तरीके की बीमारियाँ, लाइलाज बीमारियाँ, उससे वो बच सकें। आइए अब सुनते हैं कलामी शायर। आज कलामी शायर में मोहम्मद फरीद अनवर ख़ान से उनके नातिया कलाम समाप्त करते हैं।

قلب ارشد کی بس صدا تم ہو، قلب ارشد کی بس

सामईन, अभी आप फरीद अनवर खान से उनके खूबसूरत कलाम समाप्त कर रहे थे। आइए अब प्रोग्राम के आखिर में चंद नात समाप्त करते हैं। पेश है इरम फातिमा जन्नत की आवाज़ में ये प्यारी नात।

अभी आप आरिफ शाहबादी की लिखी ये नात सुन रहे थे, इरम फातिमा जन्नत की आवाज़ में। आइए अब कल्लन खां की आवाज़ में सुनते हैं अगली नात।

अभी आप कल्लन खां की आवाज में सुन रहे थे ये नात। आइए आप अगली गजल सुनते हैं, अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाज में।

अभी आप शमीम जयपुरी के लिखी ये नात सुन रहे थे अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाज़ में। आइए अब चलते चलते आखिरी गज़ल सुनते हैं कल्लन खां की आवाज़ में।

अभी आप तालिक लिखी गजल नात सुन रहे थे कल्लन खां की आवाज में। आइए अब इसी के साथ हमारे उर्दू प्रोग्राम का अंजुमन का वक्त यहीं खत्म होता है। जर्री फातिमा को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज़।

उर्दू प्रोग्राम अंजुमन अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसमंजरी। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए फिल्म धूम 2 का ये गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म बीवी नंबर वन से, जिसे गाया है सुखविंदर सिंह ने। समीर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है अनु मलिक ने।

0: आकाशवाणी पटना से अभी आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसमंजरी। कार्यक्रम का शेष गीत हम आपको सुनवाएंगे एक छोटे से अंतराल के बाद। कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ।
1: दस लाख की लॉटरी मुझे,
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
6: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
7: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: कार्यक्रम रसमंजरी में आपका पुनः स्वागत है। जुड़वा इस फिल्म का गीत सुनिए पूर्णिमा और अनु मलिक की आवाजों में।

रचना समीर की, संगीत नदीम श्रवण का, आवाज़ें दी है अलका याज्ञिक और साथी ने। फिल्म का नाम सिर्फ तुम।

0: नीति मोहन के गाए इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसमंजरी अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: 10 लाख की लॉटरी मुझे,
5: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
6: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज सुनिए मोहम्मद असलम की आवाज में गजल।

मोहम्मद असलम के गाए इस गजल के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्स पर। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए फिल्म द डट्टी पिक्चर का ये गीत बप्पी लाहिरी और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में। रजत अरोरा के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है विशाल शेखर ने।

सुहाग इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और शैलेंद्र की आवाज़ों में। अब आइए सुनते हैं फिल्म मेरे हमसफ़र का ये गीत महेंद्र कपूर, बालबीर और साथी की आवाज़ों में। आनंद बख्शी की रचना है, संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: आकाशवाणी पटना से अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। शेष गीत हम आपको सुनवाएंगे छोटे से अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हमारे

0: बस एक क्लिक पर हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: KIR at 90. नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: अंदाज, इस फिल्म का गीत सुनिए कुमार सानू और अलका याज्ञिक की आवाजों में। समीर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है नदीम श्रवण ने।

0: हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: जीत, इस फिल्म का गीत सुनिए विनोद राठौर और अलका याज्ञिक की आवाजों में।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

आकाशवाणी के पटना केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत, और अब कार्यक्रम की अगली पेशकश फिल्म फूल और कांटे से। आवाजें हैं अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की, गीत के बोल लिखे हैं समीर ने और धुन बनाई है नदीम श्रवण ने।

लता मंगेशकर और रफ़ी की आवाज़ों में सुनिए फिल्म लैला मजनू का ये गीत। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी और संगीतकार मदन मोहन।

आकाशवाणी के पटना केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत, और अब कार्यक्रम की अगली पेशकश फिल्म बोल बच्चन से। अगला गीत सुनिए हिमेश रेशमिया और श्रेया घोषाल के युगल स्वर में। गीत के बोल लिखे हैं शबीर अहमद ने और धुन बनाई है हिमेश रेशमिया ने।

इसी गीत के साथ समाप्त होता है फिल्म संगीत। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब प्रस्तुत है बिहार का लोक संगीत। कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं सत्येंद्र कुमार और भरत कुमार के स्वर में भोजपुरी लोकगीत। तो आइए सत्येंद्र कुमार की आवाज में सुनते हैं शिव भजन।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
4: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री, बस 30 रुपए में।
5: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

0: बिहार के लोक संगीत में अभी आप सुन रहे थे सतेंद्र कुमार और भरत कुमार के स्वर में भोजपुरी लोकगीत। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। इस वक्त दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर।
4: हेलो डॉक्टर, हेलो डॉक्टर, हेलो डॉक्टर, हेलो डॉक्टर, हेलो डॉक्टर।

0: आकाशवाणी पटना के सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज के हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर पंकज कुमार। आप पटना के प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक और स्पाइन सर्जन हैं। श्रोताओं को हम बता दें कि आज का हमारा विषय है विभिन्न प्रकार के जोड़ों के दर्द और उपचार। तो डॉक्टर साहब से सबसे पहले हम पूछना चाहेंगे कि लोगों के शरीर में जो विभिन्न प्रकार के जोड़ होते हैं उनमें किन किन प्रकार के दर्द होते हैं, हम कैसे पहचाने और उसके क्या तरीके हैं?
1: नॉर्मली जो होता है दर्द, जो ज्वाइंट का पेन हो या गर्दन का दर्द हो,

0: या कमर का दर्द हो, ये कॉमनली जो होता है, जैसे गर्दन का दर्द हुआ, ड्राइविंग, बाइक ड्राइविंग ज़्यादा कर रहे हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन टीवी पे बैठे हुए हैं, सिस्टम पे बैठे हुए हैं, ऑफिस में बैठे हुए हैं, उस कंडीशन में नेक पेन, बैक पेन कॉमनली होता है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, उस कंडीशन में नी पेन भी ज़्यादा होगा। एक ही पोस्चर में लॉन्ग ड्यूरेशन बैठेंगे तो नी पेन बहुत ही ज़्यादा होता है। तो उस पोस्चर में करेंगे क्या, जैसे आधा घंटा काम कर रहे हैं तो आधा घंटा के बाद दो, एक दो मिनट के लिए उठ के खड़े हो जाएंगे, थोड़ा घूम फिर के फिर काम करेंगे, तो नी पेन, बैक पेन और गर्दन का दर्द कम हो जाएगा। अब रही कितने टाइप का जोड़ों का दर्द होता है, तो पहला कॉमनली जो होता है इल्डरली में, मेल और फीमेल जो हो, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसे कहते हैं, नी पेन ज़्यादा होता है, समझे,
1: घुटनों में
0: घुटनों में,
1: जी
0: घुटनों का दर्द कॉमनली होता है। एक होता है ट्रॉमेटिक, तो किसी तरह से माइनर ट्रॉमा हुआ, उसको निगलेक्ट कर दिए, माइनर बोन इंजुरी हुआ, लिगामेंट इंजुरी हुआ, उसको निगलेक्ट कर दिए लॉन्ग ड्यूरेशन, तो नी पेन हो जाए, ट्रॉमेटिक होगा, आर्थराइटिक। एक होता है रूमेटिक पेन, ये गठिया के जोर लोग परेशान रहते हैं,
1: जी
0: तो ये सारे दर्द को पहचानना पड़ेगा, इसमें कौन कौन सा दर्द होता है। गठिया के दर्द में मल्टीपल ज्वाइंट, स्मॉल ज्वाइंट, हाथ के जोड़ों का दर्द, नी ज्वाइंट, एंकल ज्वाइंट, और सुबह सुबह जो है ना मुट्ठी टाइट रहने का चांस रहता है, उस कंडीशन में गठिया रोग होता है। लेकिन अपने मन से कुछ दवा लेंगे नहीं, इसमें डॉक्टर को दिखा के ही लेंगे। और रही बच्चों में दर्द, एक होता है एडल्ट में, बच्चों में, तो बच्चों में कॉमनली क्या होता है, ओवर यूज, जैसे बच्चे ज़्यादा खेलने लगते हैं तो ओवर यूज के चलते भी बच्चों में ज्वाइंट नी पेन होता है। और बच्चों में और दूसरा कारण क्या, ग्रोइंग, बच्चों फास्ट ग्रो करता है, उस कंडीशन में भी ज्वाइंट पेन होता है। तो उसके लिए आइस कंप्रेशन 2 से 3 बार देंगे तो आराम हो जाएगा। और ज़्यादा कुछ ज़्यादा एक सिंपल पारास्टामोल दे सकते हैं, अगर परसिस्टेंट पेन हुआ तो ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाएंगे।
1: जी, श्रोताओं को हम बताते चलें कि आप हमारे फ़ोन नंबर 0612-220-2561 और 0612-220-2562 पर फ़ोन करके हमारे डॉक्टर साहब से जोड़ों के दर्द के बारे में और उसके उपचार के बारे में पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि किस किस प्रकार के जोड़ों के दर्द होते हैं, तो इसका उपचार मतलब धीरे धीरे करके घुटनों के दर्द में या ऑस्टियोपोरोसिस होता है, ऑर्थराइटिस होता है, तो इसका उपचार कैसे किया जाए और शल्य चिकित्सा की आवश्यकता कब पड़ती है? उधर से इशारा हो रहा है कि एक श्रोता हमें फ़ोन कर रहे हैं। जी नमस्कार, हेलो डॉक्टर, मैं आपका स्वागत है।
2: जी धन्यवाद।
1: जी अपना नाम बताइए।
2: जी मैं प्रेम कुमार बोल रहा हूँ।
1: कहाँ से बोल रहे हैं?
2: जी मैं बोल रहा हूँ गर्दनीबाग पटना से।
1: जी अपने सवालों को डॉक्टर साहब से पूछें कृपया।
2: डॉक्टर साहब, जानना ये है कि पिछले कुछ महीनों से बाहों में एकदम पिन पॉइंटेड दर्द रहता है, दोनों बाह में, और कभी कभी हाथ उठाने से झटका सा लगता है, तो ये एक चिंता का कारण हो गया है कि क्या समस्या है, कैसे इसका इलाज हो।
0: आपका एज कितना हुआ?
2: जी 50।
0: 50। कभी चोट भी लगी थी?
2: नहीं, कोई चोट नहीं लगी। जी
0: हाथ में झनझनी भी हो रहा है?
2: कभी कभी झटका सा लगता है।
0: हाँ। और ये हाथ में पेन रेडिएट करता है, हाथ से, गर्दन से लेके हाथ में दर्द
2: जी
0: जो
2: जी
0: होता है?
2: जी पहले नहीं हो रहा था, लेकिन पिछले 1 सप्ताह से हो रहा है।
0: हाँ, टिंगलिंग सेंसेशन जैसे हाथ में है, तो ये आपको गर्दन की दर्द से हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है ये पेरी अर्थराइटिस जिसको कहते हैं, फ्रोजन शोल्डर, उससे होता है। लेकिन आपने बताया कि गर्दन में भी दर्द है, हाथ में झनझनी भी हो रहा है, तो ये नस का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो अपने मन से दवा ना लें, एक ऑर्थोपेडिक स्पाइन सर्जन से कंसल्ट करें, बेटर होगा, और उसके बाद ही एक्सरसाइज या मेडिसिन लें।
2: जी डॉक्टर को एक बार दिखाया, उन्होंने कहा कि आपको मस्कुलर पेन हो सकता है। 1 महीने की दवा उन्होंने दी, कुछ पेन किलर्स थे, तो आराम तो 2 महीने लगभग हुआ, लेकिन दवा जब से छोड़ी है फिर से शुरू हो गया है।
0: हाथ में टिंगलिंग कंटिन्यू है, झंझनी कंटिन्यू है,
2: झिनझिनी कंटिन्यू नहीं है, कभी कभी आता है।
0: कभी कभी आता है। तो और आपने ऑर्थोपेडिक सर्जन से दिखाया था कि स्पाइन सर्जन से?
2: जी ऑर्थोपेडिक।
0: बेटर होगा एक बार स्पाइन सर्जन को कंसल्ट करें।
2: जी
0: ऑर्थोपेडिक स्पाइन सर्जन।

0: धन्यवाद डॉक्टर।
1: जी डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे ऑस्टियोपोरोसिस या आर्थराइटिस, जो भी बीमारी होते हैं घुटनों के या जोड़ों के, तो उसमें शल्य चिकित्सा अर्थात सर्जरी की आवश्यकता कब पड़ती है?
2: घुटनों की दर्द जैसे एल्डरली मेल और फीमेल जो हुआ, ये डिजेनरेटिव कहते हैं, ओल्ड एज में होता है, तो इमिडिएटली सर्जरी की जरूरत होती नहीं है। पहले
1: जी
2: प्रिकॉशन लेना है, यानी मतलब जैसे एक्सरसाइज, माइल्ड एक्सरसाइज फिजियोथेरेपिस्ट से सीख लेंगे, अपने घर में रेगुलर करेंगे, ग्राउंड लेवल एक्टिविटी करने मतलब नीचे बैठ के कोई भी काम नहीं करेंगे, जो पूजा पाठ करना हो या नमाज पढ़ना हो या टॉयलेट कमोड का टॉयलेट खाना में चेयर लेवल एक्टिविटी करें, तो उससे बहुत ही आराम रहा। अगर पेन बहुत ज़्यादा सीवियर हो रही है, बहुत ज़्यादा सीवियर लॉन्ग ड्यूरेशन हो रही है, तो जैसे राइट नी में हुआ तो लेफ्ट नी में स्टिक लेके चलेंगे, लेफ्ट में हुआ तो राइट नी में चलेंगे, और आइस कंप्रेशन जैसे गर्मी के मौसम में आइस कंप्रेशन दिन में 3 बार 4 बार करेंगे तो अच्छा लगेगा, और रही ठंड के मौसम में गर्म पानी से सेकेंगे तो वो बेटर अच्छा लगेगा, दिन में 3 बार।
1: जी, कुछ और उदाहरण देते हुए हम प्रश्न पूछना चाहेंगे। जैसे कोई लोग भारी वजन उठाते रहते हैं तो उसमें भी कमर दर्द हो जाता है, तो उसका क्या इलाज है और लोग किस तरीके से इलाज करें? उसके अलावा आप कितने लोग सोते रहते हैं एक ही तरफ करके हाथ सोते हैं तो उसमें भी हाथ वगैरह दर्द करने लगता है, तो उससे क्या समस्याएं होने की संभावना होती है और
2: हाँ,
1: कैसे
2: होती
1: उसमें?
2: क्या है, कमर में जो होता है मेरुदंड में दो हड्डी के बीच में एक डिस्क होता है, समझे,
1: जी
2: डिस्क जिसे बोलते हैं, डिस्क गाड़ी का जैसे शॉकर होता है उसी डिस्क शॉकर की तरह काम करते हैं, और उसके पीछे में नस होती है। कोई भारी सामान नहीं उठाए तो सडनली क्या होता है, समटाइम्स नॉट ऑल द टाइम्स डिस्क बाहर निकल के नर्व पे कंप्रेशन करता है, तो आपको पैर में टिंगलिंग सन मतलब पैर में खिंचाव के दर्द हो शुरू हो जाएगा, चलना लॉन्ग ड्यूरेशन दिक्कत हो जाएगा। अगर पैर में खिंचाव नहीं है तो कने मतलब ये मसल्स पुल हुआ, समझे, अगर पैर में खिंचाव आ रहा है, पैर में झिनझिनी हो रहा है, चलने में दिक्कत हो रही है, तो नस का प्रॉब्लम है, उस स्थिति में ऑर्थोपेडिक स्पाइन सर्जन से कंसल्ट करेंगे। अगर केवल बैक पेन हो रहा है तो ये मसल्स पुल हुआ, समझे ना, मसल्स पुल में आप थोड़ा 1 से 2 दिन, 2 से ज्यादा दिन रेस्ट नहीं लेना, दो मैक्सिमम टू टू रेस्ट लेंगे, मसल्स रिलैक्सेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन से दिखा के खाएंगे तो आपको रिलीफ मिलेगा। लेकिन अगर सीवियर पेन हो उस कंडीशन में मसल्स रिलैक्सेंट ले, थोड़ा रेस्ट ले तो आराम रहेगा, एक्सरसाइज थोड़ा सा पेन रिलीव हो 25-30% रिलीव होने के बाद ही करेंगे, अगर एक्यूट कंडीशन में एक्सरसाइज करेंगे तो दर्द और ज़्यादा बढ़ जाएगा।
1: अच्छा, इसी क्रम को और बढ़ाते हुए हम पूछना चाहेंगे कि जो हड्डियों में विभिन्न प्रकार के संक्रमण भी हो जाया करते हैं तो वो क्यों होता है और उसका निदान कैसे किया जा सकता है?
2: यूजली जो होता है हड्डियों में कॉमनली जो एज ए ऑर्थोपेडिक स्पाइन सर्जन होता है, कॉमनली जो होता है स्पाइन बोर्ड में ट्यूबरक्लोस का इन्फेक्शन, टीबी जिसे बोलते हैं, टीबी का इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। दूसरा तो होता है पायोजेनिक, जो लेस लाइकली रहता है कि इन्फेक्शन होने का, तो दो ही टाइप का इन्फेक्शन कॉमनली टीबी होता है। टीबी में अगर लॉन्ग ड्यूरेशन बैक पेन हो और उसके बाद खाने में रुचि नहीं जगे, वेट लॉस हो रहा, यूजली पेन रात में ज़्यादा हो, तो उस कंडीशन में आप डॉक्टर को दिखाए, ट्यूबरक्लोसिस चांस रहता है, इसमें वेट भी लॉस होता है, खाने का मन नहीं करेगा, आप पेन सीवियर बैठ नहीं पाएंगे, ये टीबी होता है। टीबी में 100% क्योरेबल है मेडिसिन से, अगर आप शुरू में दिखाएं तो, अगर लॉन्ग ड्यूरेशन इसको निग्लेक्ट करेंगे, पैर में वीकनेस हो गया, पक्षाघात हो सकता है, तो उसको उस कंडीशन बाद में आपको ऑपरेट करना पड़ सकता है स्पाइन सर्जन के द्वारा।
1: जी, कभी कभी ऐसा भी होता है डॉक्टर साहब कि लोगों को जब चोट लग जाता है या कमर में ही मोच हो गया अथवा पैरों में मोच हो गया तो वो डॉक्टर से सलाह लेना उचित नहीं समझते और वैसे ही रहने देते हैं, सोचते हैं कि ठीक हो जाएगा, मगर
2: नहीं,
1: वो फूलते हुए सूजन होते हुए धीरे धीरे फिर
2: और
1: और बढ़
2: ज्यादा
1: जाता
2: दिक्कत
1: है।
2: होता
1: तो
2: है।
1: क्या इस पर मतलब अगर जो घर में भी बहुत सारे लोग हल्दी वगैरह का इस्तेमाल करके, हल्दी चूना का इस्तेमाल करके ठीक करने की कोशिश करते हैं तो उस पर आप क्या कहेंगे?
2: जैसे यूजली जो कॉमनली एंकल स्प्रेन जो इसको बोलते हैं, इसमें हड्डी में कुछ नहीं होता है, एंकल के अराउंड या फुट के अराउंड जो लिगामेंट होता है उसमें इंजुरी हो जाता है, माइनर इंजुरी होता है, तो फुट जो होता है वेट बेयरिंग बोर है, इससे क्या अगर इसको निग्लेक्ट करेंगे, हमको तो हड्डी एक्सरे कराए, हड्डी में

0: कुछ नहीं मिला, दर्द। लेकिन एस्पिरिन बहुत ही पेनफुल होता है।
1: उधर से इशारा हो रहा है कि एक श्रोता हमें फोन कर
2: हेलो
1: रहे हैं। जी, आपका नाम क्या है?
2: हेलो डॉक्टर,
0: हाँ
2: मेरा
0: बोलिए।
2: नाम अजय कुमार हुआ।
1: जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
2: हम जहानाबाद से बोल रहे हैं।
1: जी बताइएगा, आपकी समस्या क्या है? डॉक्टर साहब सुन रहे हैं आपको।
2: हाँ, मेरी माता जी को 1 महीने से एक पैर में सूजन है और थोड़ा दर्द भी रहता है। नहीं,
0: सूजन कहाँ से? पूरा नी से लेके एंकल तक होल ले गए मैं है कि
2: सिर्फ नीचे तलवा तलवा के पास है जो दिखता है।
0: एंकल ज्वाइंट के अराउंड
2: और
0: में है?
2: हाँ
0: एंकल ज्वाइंट जो एंकल ज्वाइंट के
2: जी,
0: अराउंड
2: और
0: है।
2: आगे में दर्द, चलने में थोड़ा दर्द करते हैं, और नस में जब चलती है तो पूरा नस में पेन होता है।
0: एक ही साइड, एक ही लेग में।
2: हाँ, एक ही साइड, लेफ्ट साइड ही
0: कमर में भी दर्द हो रही है? कमर में
2: सर।
0: दर्द?
2: हाँ, कमर में भी चलती है तो इधर 10 दिन से कह रही है कि दर्द है।
0: हाँ, और पैर में झिनझिनी भी हो रही है।
2: जी सर,
0: हाँ, तो इसके कारण हो सकता है। यूली कितना दिन से हो रहा है?
2: 1 महीना हो गया सर।
0: 1 महीना से। आपने डॉक्टर ऑर्थोपेडिक स्पाइन सर्जन को दिखाए थे?
2: हाँ, दिखाया था सर, दवा दिया है तो पेन कम हुआ है,
0: लेकिन
2: नर्व का पेन कम हुआ है,
0: टिंगलिंग
2: लेकिन
0: टिंगलिंग
2: सर
0: नहीं जा रहा है, झिनझिनी नहीं जा रही है
2: नहीं, सर नहीं जा रही,
0: ना,
2: सूजन नहीं जा रहा सर।
0: सूजन नहीं जा रहा है। सूजन का दो तीन कारण हो सकता है। पहला, एक ही साइड में है तो समटाइम्स
2: जी सर,
0: यूरिक एसिड बढ़ने से भी हो सकता है।
2: जी सर,
0: एक ही पोस्चर में लॉन्ग ड्यूरेशन बैठने से भी हो सकता है। और दूसरी बात, समटाइम्स आपने बोल रहा है कि कमर में दर्द है, पैर में झुंझुनी भी है, हो सकता है कमर का नस दबी हुई हो तो उससे भी हो सकता है। तो बेटर होगा एक यूरिक एसिड का टेस्ट करा के देख लीजिएगा, अगर उससे नॉर्मल आ रहा है तो ऑर्थोपेडिक
2: नहीं सर, वो
0: एस
2: तो बढ़ा हुआ आ रहा है सर।
0: हाँ यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो दवा खानी पड़ेगी और डाइट कंट्रोल करना पड़ेगा। यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है ना तो डाइट कंट्रोल।
2: जी
0: डाइट
2: सर,
0: में क्या हुआ? हाई प्रोटीन डाइट। हाई प्रोटीन में जैसे मटन हुआ, रेड कलर का जो भी मीट हुआ, कबूतर का मीट हुआ, गोट मीट हुआ, ये रेड कलर का मीट नहीं करेंगे। पनीर नहीं खाएंगे, पालक नहीं खाएंगे, मशरूम हुआ, अंडा का पीला पोर्शन नहीं खाएंगे। प्रोटीन रिलेटेड, हायर प्रोटीन रिलेटेड चीज नहीं खाएंगे। तो
2: लाल वाल भी नहीं खाना है सर। जी
0: दाल कम कर देंगे, सब चीज बंद ही करने से कैसे काम चलेगा।
2: सर,
0: हाई प्रोटीन डाइट कम करेंगे, टमाटर हुआ, ये सब। मटन तो खाना ही नहीं, समझिए। अल्कोहल नहीं लेना है, अगर अल्कोहल ले रहे हैं तो अल्कोहल ये सब के अवॉइड कंप्लीटली। रेड मीट, टमाटर, ये सब, पनीर, ये सब अवॉइड करेंगे, नहीं तो फिर पेन शुरू हो जाएगा। और दवा यूरिक एसिड के लिए लेते रहेंगे। ओके
1: जी
2: जी
1: जी डॉक्टर साहब, यहाँ पर हम ये पूछना चाहेंगे कि जो विभिन्न प्रकार के दर्द हैं हड्डियों में, तो उनसे हम बचें कैसे? सावधानी किस तरीके से बरतें? अपनी जीवन शैली को कैसा बनाए रखें? खान पान की शैली को कैसा बनाए रखें? अच्छा, एक फिर श्रोता का फोन आ रहा है, ज़रा बात करते हैं।
2: हेलो।
1: हेलो, हाँ जी,
2: हाँ
1: अपना
2: सर,
1: नाम और कहाँ से
2: नमस्कार,
1: बोल
2: मैं
1: रहे हैं?
2: तारकेश्वर, तारकेश्वर
0: जी
2: बोल रहा हूँ सर, बोरिंग रोड से। जी,
0: हाँ जी,
2: हेलो
0: बोलिए।
2: डॉक्टर, मुझे बात करना था सर।
0: हम डॉक्टर पंकज बोल रहे हैं, ऑर्थोपेडिक स्पाइन
2: सर
0: सर्जन।
2: नमस्कार सर। सर
0: नमस्कार।
2: हमको एक प्रॉब्लम के लिए आपसे डिस्कस करना था
0: हाँ बोलिए।
2: सर। ये हमको मतलब ये सर्वाइकल का प्रॉब्लम है सर,
0: हाँ, सर्वाइकल,
2: और जी
0: गर्दन गर्दन में दर्द हो रही है, और क्या हो रही है?
2: सर, वो 5, 6 और 6, 7 मतलब गैप स्लाइटली रिड्यूस्ड आता है सर एक्सरे में,
0: हाँ एक्सरे में।
2: और हमको सर दर्द नहीं होता है सर। दर्द का प्रॉब्लम नहीं है,
0: हाँ
2: मूवमेंट का ही प्रॉब्लम नहीं है सर।
0: हाथ
2: हमको
0: में,
2: जैसे बिछावन पे सोते हैं ना, तो
0: हाँ
2: करवट जब बदलते हैं तो चक्कर मतलब कुछ सेकंड के लिए,
0: हाँ
2: और
0: हाँ
2: 2 सेकंड, 4 सेकंड के लिए, यही प्रॉब्लम है सर
0: और
2: हमको।
0: हाथ में झिनझिनी भी दे रही है।
2: नहीं, हाथ में झिनझिनी भी नहीं होता है सर,
0: हाँ
2: लेकिन और ना दर्द होता है गर्दन में, ना मूवमेंट में प्रॉब्लम होता है। सिर्फ हमको सर जब चलो करवट लेते हैं तो ये कुछ सेकंड के लिए, और वो भी चक्कर जैसे 2-3 दिन के लिए हुआ प्रॉब्लम, फिर महीनों तक गायब रहा, फिर 2-3 दिन के लिए आ जाता है सर।
0: तो ये
2: जी
0: बेटर
2: सर,
0: होगा ऑर्थोपेडिक स्पाइन सर्जन को दिखा दें, स्पाइन
2: जी
0: जिसपे लिए
2: जी
0: ऑर्थोपेडिक स्पाइन सर्जन को दिखाएंगे। समटाइम्स क्या है, सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइटिस में
2: जी सर,
0: डिस्क स्पेस रिड्यूस हो जाता है, नस पे माइनर प्रॉब्लम रहता है तो
2: जी
0: चक्कर
2: जी
0: आने
2: जी
0: का ज़्यादा चांस रहता है। अगर हो
2: जी जी
0: सके तो
2: जी
0: MRI करा के दिखा लें, और नस पे प्रॉब्लम
2: जी
0: है, अगर हाथ में दर्द नहीं है तो समझिए लेस लाइकली रहता है। और चक्कर के लिए
2: जी जी
0: एक दवा होती है, वो प्रिस्क्राइब कर देंगे स्पाइन सर्जन, और रेगुलर खाएंगे तो
2: जी
0: आराम रहेगा। और

0: थोड़ा सा दर्द कम होने के बाद गर्दन का एक्सरसाइज करेंगे तो आपको रिलीफ मिलेगा, लेकिन एक्सरसाइज रेगुलर करेंगे कहीं मतलब इस सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता है, थोड़ा सा एज बढ़ जाने से होता है, तो यही गर्दन का एक्सरसाइज करेंगे तो आपका चक्कर भी दर्द भी सारे चीज आराम रहेंगे। लेकिन एक्यूट कंडीशन में एक्सरसाइज नहीं करेंगे, मतलब सीवियर पेन हो उस कंडीशन में एक्सरसाइज नहीं करेंगे, थोड़ा दर्द आराम होने के बाद करेंगे तो एक्सरसाइज तो आपको रिलीफ मिलेगा। आपको एक प्रॉब्लम है ऑर्थोपेडिक स्पाइन सर्जन को दिखाएं।
1: जी। और कोई मतलब दवा सर आप बताते हैं हमको तब तक? डिजिटल एक्सरे कई बार कराए हैं सर, हमेशा एक ही रिपोर्ट आता है सर।
0: हेलो इंडिया, इस पर दवा बताना ठीक नहीं रहता बिना देखे हुए, एक बार देख लेते तब तो ये
1: अच्छा ठीक ठीक है सर,
0: ठीक
1: ठीक है सर,
0: ठीक
1: ठीक है, थैंक यू थैंक यू
0: ओके
1: थैंक यू।
2: जी। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि खान पान एवं जीवन शैली में किस प्रकार से सुधार करें ताकि ये हड्डियों और जोड़ों का दर्द हो ही नहीं, या हो तो बहुत कम हो।
0: कम हो, जैसे एज रिलेटेड डिजन, घुटनों का दर्द हुआ, कमर का दर्द हुआ, गर्दन का दर्द हुआ, ये सब दर्द रेगुलर व्यायाम 10 से 15 मिनट सुबह शाम करेंगे, नॉर्मल जो होता है जो करेंगे तो आपको गर्दन का दर्द जो ऑफिशियल काम जो सिस्टम पे ज़्यादा कर बैठे हुए रहते हैं तो उस सब को, जैसे बाइक ज़्यादा ड्राइव करते हैं उस कंडीशन में, ड्राइविंग ड्राइवर लोग जो है ड्राइव कर रहे हैं तो उस कंडीशन लोगों को रेगुलर 10 से 15 मिनट सुबह शाम व्यायाम करेंगे तो ये 99% चांस रहता है कि ये दर्द नहीं बढ़ेगा। अगर इसको निग्लेक्ट करेंगे तो क्रोनिक पेन होगा और प्रॉब्लम होती जाएगी। रही खान पान की बात, हाई प्रोटीन डाइट अवॉइड करेंगे, जिसे जैसे यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो उसमें हाई प्रोटीन डाइट जैसा मटन हुआ, अल्कोहल को नहीं के बराबर छुएंगे, नहीं लेना है, अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ तो छूना ही नहीं है, नहीं
2: जी,
0: तो अभी पियेंगे सुबह में दर्द शुरू, सीवियर पेन,
2: वैसे भी बिहार
0: प्रोटीन
2: सरकार ने बिहार
0: ऐसे
2: में बंद ही कर
0: बंद ही
2: रखा है,
0: करें,
2: तो
0: तो
2: उचित भी
0: अल्कोहल
2: ये रहेगा।
0: नहीं लेंगे तो अच्छी बात है, कंप्लीटली छूना ही नहीं है तो इसमें। और नी एक्सरसाइज का, जैसे नी का पेन हुआ, आर्थराइटिस पेन हुआ, इसको डिले कर सकते हैं, आप रोक नहीं सकते, एजिंग प्रोसेस है, उसको रोक कोई नहीं रोक सकता है,
2: जी
0: इस प्रोसेस को आप रोक सकते हैं, डिले कर सकते हैं, कंप्लीटली बंद नहीं कर सकते हैं। उसके लिए रेगुलर व्यायाम करेंगे, घुटनों का ग्राउंड लेवल एक्टिविटी कम करेंगे, एक्सरसाइज करते रहेंगे तो ये कम होगा। और सीवियर कंडीशन में अगर पेन हो तो डॉक्टर दिखा के कुछ मेडिकेशन ले सकते हैं।
2: जी तो अभी जैसा कि हम सभी जानते हैं, आने वाली 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है, तो इसी अवसर पर हम आपसे भी पूछना चाहेंगे कि जो विभिन्न प्रकार के जोड़ों के दर्द हैं उसके उपचार में योग, आसन एवं व्यायाम की कितनी भूमिका है, और आयुर्वेदिक उपचार जो ग्रामीण स्तर पर किया जाता है, जैसे मैंने बताया था पहले भी कि हल्दी चूना का मिश्रण करके लेप लगाया जाता है, तो ये सब कितना कारगर होता है और कितना करना चाहिए?
0: देखिए हम तो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं नहीं कि आपको
2: जी
0: हल्दी चूना के बारे में बताएंगे,
2: जी
0: हम एलोपैथिक डॉक्टर हैं, उसके बाद हम नहीं डिस्कस करेंगे तो अच्छा है।
2: जी
0: लेकिन योग बहुत ही अच्छी चीज है, सुबह शाम नॉर्मल आदमी, जो नॉर्मल आदमी है ऑफिस जा रहे हैं काम पे जा रहे हैं, अगर योग कर रहे हैं बहुत ही अच्छी चीज है, आपको इसको बैक पेन, नेक पेन, नी पेन, सारे जॉइंट पेन को आप प्रिवेंट कर सकते हैं, जो नॉर्मल है वो प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन आर्थराइटिस हुआ है कभी, रूमेटिक फीवर जन्म जा, जैसे रूमेटॉइड है, एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कर सकते, ये हेरिडेटरी है, उसमें आप रोक सकते हैं, समझे ना। एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में क्या होता है, ज्वाइंट सब फ्यूज होने लगता है, तो कोई भी मेडिसिन कारगर नहीं होता, कुछ भी मेडिसिन अभी तक एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए कारगर नहीं है।
2: जी
0: उसमें योग, एक्सरसाइज, स्विमिंग हुआ जैसे हुआ, साइकिलिंग हुआ, रेगुलर कोई भी तरह का इंडोर आउटडोर गेम करेंगे तो आपको एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का पेन रिलीव हुआ। पेन कितना दिन खाएंगे, पेन किलर कितना दिन खाएंगे, तो संभव नहीं है। आप एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में आप डिले कर सकते हैं विथ एक्सरसाइज, योगा से। अगर सीवियर ज्वाइंट फ्यूजन हुआ तो लास्ट में सर्जरी, ज्वाइंट सर्जरी होता है, वो बाद की बात है। स्पेशली एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है यंग एज में, यंग मेल में होता है, 20-25 साल में, जोड़ों का दर्द शुरू हुआ, सीवियर पेन हो रहा है, धीरे धीरे क्या स्टॉपिंग पोस्चर करने में तो आगे झुकने लगते हैं, बैक ज्वाइंट फ्यूज हो जाता है,
2: जी
0: तो एक्सरसाइज ही मूल मंत्र है उसके लिए, एंकोलाइज कोई भी मेडिसिन काम कर रहा है।

0: अभी तक कोई मेडिसिन बना ही नहीं है कि आपको एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को ठीक करे, रूमेटॉइड आर्थराइटिस पेन को ठीक करे, ये पेन को कंट्रोल किया जाता है, ठीक नहीं होगा ये।
1: अच्छा, तो यहाँ पर हम यह भी पूछना चाहेंगे कि सामान्यतः आपको हड्डियों और जोड़ों के दर्द में फिजियोथेरेपी की भी प्रिस्क्राइब
0: ना,
1: सलाह दी जाती है,
0: हम लोग यूजली
1: तो
0: ट्रीटमेंट दे के फिजियोथेरेपिस्ट के पास भेजते हैं, एक्सरसाइज सिखाने समता हीट थेरेपी देते हैं फिजियोथेरेपिस्ट, बैक पेन, नेक पेन, नी, उसमें भी बहुत राहत मिलती है। उसके बाद नी पेन जो के लिए भी जो हुआ, शोल्डर पेन हुआ, ये से पहले अल्ट्रासोनिक मसाज हुआ, टेंस हुआ, बहुत तरह की हीट थेरेपी होता है। डिफरेंट फिजियोथेरेपी डिसाइड करते हैं कि इसमें कौन सा हीट थेरेपी, इस सिंपल गर्म पानी से नहीं सेकना है, डिफरेंट टाइप का हीट होता है, अल्ट्रासोनिक मसाज होता है, टेंस होता है, IFT होता है, तो ये डिसाइड फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी एक साइंस है, ये इसे नहीं कि हाथ चलाना, इसे साइंस है। फिजियोथेरेपिस्ट का एडवाइस लेके ही कोई भी एक्सरसाइज करेंगे, कोई भी हीट थेरेपी लेंगे तो बेटर रहेगा।
1: तो ये फिजियोथेरेपी की सुविधा क्या सरकारी अस्पतालों में, सभी सरकारी
0: हाँ,
1: अस्पतालों
0: सब
1: में
0: सब
1: उपलब्ध?
0: जगह सरकारी अस्पताल में हो रही है, प्राइवेट सेक्टर में भी है, प्राइवेट क्लिनिक भी है, लेकिन एडवाइस ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से लेके ही फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे।
1: जी, तो अभी हम जैसे आर्थराइटिस ही होगा, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया,
0: आज तो
1: स्पॉन्डिलाइटिस हो
0: आया
1: गया,
0: एक,
1: इसका थोड़ा सा विवरण बता दीजिए, मतलब क्या क्या है, कहाँ पे दर्द होता है, घुटनों में होता है, जोड़ों में होता है, ये बता दीजिएगा।
0: ऑस्टियोपोरोसिस वाले में सब चीज ज्वाइंट के बारे में बताया। ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है यूजुअली इल्डरली फीमेल, मतलब इल्डर फिर आफ्टर मीनोपॉज, महामारी जो बंद हो जाती है उसके उसके बाद ऑस्टियोपोरोसिस ज्यादा होता है। जो क्रोनिक अल्कोहलिक होता है उसमें ऑस्टियोपोरोसिस, मेल ऑस्टियोपोरोसिस लोग जानते हैं कि केवल फीमेल में ही ऑस्टियोपोरोसिस, लेकिन आजकल मेल ऑस्टियोपोरोसिस में प्रीडोमिनेटली होते जा रहा है। जो क्रोनिक अल्कोहलिक है 25-30 बरस के बच्चों में भी ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार हो रहा है, अल्कोहल ज़्यादा ले रहे हैं, डिफरेंट टाइप का अल्कोहल, ये टोबैको, इसमें भी बोन का लॉस जल्दी शुरू होना शुरू होता है। जैसे इल्डरली फीमेल हुआ, मेनोपॉज हुआ, कन महामारी बंद हो जाता है, तो उसमें उस कंडीशन में शरीर में पूरा कड़वी, इधर दर्द हुआ, इधर दर्द हुआ, हाथ में पैर में झिंझनी, हेडेक, नींद नहीं आना, हाथ में जलन, पैर में जलन, ये ऑस्टियोपोरोसिस का यूजुअली लक्षण हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस में भी क्या होता है, बोन कम हो जाता, बोन का घनत्व जो होता है उसमें कम हो जाता है, बताशा एक
1: हड्डियों के जो अंदर का जो रहता है।
0: घनत्व जो होता है वो कम होता है। बताशा एक मिठाई जानते होंगे,
1: जी,
0: बताशा जो मिठाई होता है जैसे ऐसे देखने से कितना सॉफ्ट लगता है, जस्ट छुएंगे तो क्या होगा, फट के टूट जाता
1: भुरभुरा
0: है,
1: हो जाता है।
0: बुड़बुड़ा हो जाता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस में बोन भी उसी तो बुड़बुड़ा हो जाता है, थोड़ा सा भी धक्का मार दें कहीं ना कहीं फ्रैक्चर हो जाएगा। तो उस कंडीशन में डॉक्टर को दिखाएं और हाई रिच कैल्शियम फूड लें, जैसे हुआ सिंपली जो हम लोग सिंघारा जो छठ में यूज करते हैं, तो सिंघारा का पाउडर या आटा जो होता है उसमें हाई रिच कैल्शियम होता
1: सिंघाड़ा
0: है, छठ
1: जो
0: में जो यूज करते हैं
1: तालाबों में होता
0: तालाब
1: है।
0: में होता है,
1: जी
0: उसका जो पाउडर होता है आटा नॉर्मल गेहूं में मिला के रोटी सबको घर में सबको, सो हाईली रिच कैल्शियम होता है। सहजन जो होता है सीजनल सहजन जिसको होता है ड्रम स्टिक इंग्लिश में बोलते हैं सहजन,
1: जी जी
0: या मिथिलांचल में मुनगा बोलते हैं,
1: हाँ, जी,
0: तो वो सब सीजनल में लेंगे तो हाई रिच कैल्शियम रहता है। अगर नॉन वेज खाते हैं तो छोटी छोटी मछली जो होती है उसमें कैल्शियम फॉस्फोरस ज़्यादा होता है, तो वो
1: छोटी
0: लेंगे,
1: मछलियों में खास
0: छोटी
1: करके।
0: खासकर छोटी मछलियों में कैल्शियम
1: अच्छा,
0: रिच ज़्यादा रहता है, वो ज़्यादा सेवन करेंगे तो अच्छा रहेगा। और ऑस्टियोपोरोसिस सीवियर ले रहे नहीं है तो बोन डेक्सा स्कैनिंग होता है, डेक्सा स्कैनिंग कर करके बोन स्पाइन बोन का या करके तब ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से सलाह लेके ट्रीटमेंट लें। और यदि कैल्शियम अपने मन से अब लग रहा है कि है तो कैल्शियम खा सकते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन कैल्शियम खाना पड़ेगा, उसके साथ कुछ नेजल स्प्रे आता है, कुछ इंजेक्शन आता है, उसे भी ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट दे सकते हैं।
1: जी, इसी प्रकार से डॉक्टर साहब कृपया बताएं हमारे श्रोताओं को कि स्पॉन्डिलाइटिस ये क्या है और
0: जिसे स्पॉन्डिलाइटिस, अभी जस्ट एक श्रोता बोले कि हमारे गर्दन में दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहा है, तो एज रिलेटेड जैसे घुटना में डिजेनेटिव चेंजेज होता है उसी तरह स्पाइन बोन में भी चेंजेज आता है। जैसे छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे का स्किन कैसा नरम रहता है, फिर एडल्ट हुआ डिफरेंट स्किन होता है, फिर ओल्ड एज हुआ।

0: स्किन का कंडीशन कैसे चेंज, उसी तरह स्किन का बोन का भी चेंजेज आते हैं।
1: जी
0: छोटे बच्चों में बोन बहुत नरम होता है, एडल्ट में बोन हेल्दी होता है, और ओल्ड एज हुआ था एक्स्ट्रा अराउंड द ज्वाइंट, जो स्पाइन बोन में भी ज्वाइंट होता है वहाँ पे एक्स्ट्रा बोन ग्रोथ होने लगता है, तो नर्व का कंप्रेशन होता है, ज्वाइंट स्टिफनेस होने लगता है, तो ये इस कंडीशन में नेक का स्टिफनेस बढ़ जाता है, समटाइम्स चक्कर आने लगती है, समटाइम्स टिंगलिंग सेंसेशन, ये कंडीशन और बढ़ते गए तो उस कंडीशन में डॉक्टर ऑर्थोपेडिक स्पाइन सर्जन को दिखा के आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। प्रिकॉशन यही लेना है, रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो ये सब चीज़ें आपको बहुत ही आराम रहेगी।
1: अच्छा, अब चलते चलते हम ये भी पूछना चाहें कि बच्चों में हड्डियां नरम होती हैं और उनका धीरे धीरे विकास होकर के फिर कठोर होते जाता है, तो मतलब बच्चों को किस तरीके से रखा जाए ताकि उनका हड्डी मजबूत रहे?
0: मदर को जैसे रेगुलर बेसिस पे कैल्शियम रिच फूड देना चाहिए, एक्सरसाइज एक्टिविटी
1: जो
0: में कमी,
1: स्तनपान करवाती हैं।
0: हाँ स्तनपान करा तो कैल्शियम रिच फूड लेना है, जैसे बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो डाइट का ख्याल रहना है, हाई कैल्शियम डाइट देना चाहिए। और आजकल के बच्चे क्या है, मोबाइल पे दिन भर बैठे रहते हैं, फादर मदर भी बाहर नहीं जाने देते हैं, भाई सिंगल मदर हैं या मदर, बैठे रहते हैं
1: दोनों
0: मोबाइल दे
1: वर्किंग
0: दे
1: हैं
0: रहे,
1: खास करके
0: अपने
1: तब।
0: भी मोबाइल पे बैठे हैं, बच्चों को भी मोबाइल पे दे दिए,
1: जी
0: तो ये गलत चीज़ है, बच्चों को खेलने दीजिए, आज़ाद रहने दीजिए, खेलेंगे धूपेंगे तो बोन स्ट्रांग होगा।
1: जी डॉक्टर साहब, हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आप आए और विभिन्न प्रकार के जोड़ों के दर्द और उपचार संबंधी हमारे श्रोताओं के भी आपने समस्याओं को सुना और उसका उचित उपचार का तरीका बताया। आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू।
2: हेलो डॉक्टर, हेलो डॉक्टर, हेलो डॉक्टर, हेलो डॉक्टर, हेलो डॉक्टर।

अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। इस वक्त दोपहर के 1 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: ni cap. भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत तटस्थ रखा गया है।
1: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
0: बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। उद्योग संगठन एसोचैम ने RBI के रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने के निर्णय की सराहना करते हुए कहा है कि यह विकास को गति देगा और उद्योग जगत को मजबूती प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी का एक विशाल जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज शाम दमन भी जाएंगे।
2: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4-लेन बनाने की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुँच में सुधार होगा। जनकल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 2400 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधा

0: से लैस एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की डिजिटल बुनियादी ढांचा यात्रा गति पकड़ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एयरट्रंक ने भारत में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने और 5 गीगावाट डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने की योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ये देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रस्तावित सबसे बड़े निवेशों में से एक है। गृह मंत्री अमित शाह त्रिपुरा के अगरतला में बीएसएफ के जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की हर सीमा की भौगोलिक और सुरक्षात्मक चुनौतियां अलग अलग हैं, इसलिए सभी सीमाओं पर एक जैसी रणनीति के बजाय स्मार्ट मॉडल अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पर्यावरण को लेकर कई कदम उठाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के अनामलाई के पार्टी की प्राथमिक

0: विकसित करने की योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ये देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रस्तावित सबसे बड़े निवेशों में से एक है। गृह मंत्री अमित शाह त्रिपुरा के अगरतला में बीएसएफ के जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की हर सीमा की भौगोलिक और सुरक्षात्मक चुनौतियां अलग अलग हैं, इसलिए सभी सीमाओं पर एक जैसी रणनीति के बजाय स्मार्ट मॉडल अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पर्यावरण को लेकर कई कदम उठाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के अनामलाई के पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिए गए इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। अनामलाई ने हाल ही में भाजपा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा था। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें बेंगलुरु विकास मंत्रालय देने का वादा किया गया था, लेकिन उन्हें जल संसाधन मंत्रालय दिया गया। उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहा ताल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के प्राकृतिक परिवेश और विशेष रूप से आर्द्र भूमि की रक्षा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता इससे झलकती है। नागालैंड सरकार ने राज्य में तंबाकू या निकोटीन युक्त सभी खाद्य उत्पादों के निर्माण, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री पर एक वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध पान मसाला, सुगंधित और स्वादयुक्त चबाने योग्य उत्पादों के साथ साथ तंबाकू या निकोटीन युक्त किसी भी अन्य खाद्य पदार्थ पर लागू होता है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज गिरावट का रुख रहा। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 86 अंक फिसल का 74,274 पर, जबकि निफ्टी 43 अंक लुढ़क कर 23,374 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। इस वक्त दोपहर के 1:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम पराग। कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे एक वार्ता जिसका विषय है गुरु परंपरा भारतीय संस्कृति का सार। वार्ताकार हैं अशोक कुमार।
2: गुरु परंपरा जीवन का अमृत अंश माना गया है और इसे भारतीय दर्शन एवं संस्कृति में गुरु परंपरा को एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जिसे जीवन यात्रा में सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। कई साक्ष्य हैं जिससे ज्ञात होता है कि यह विशिष्ट परंपरा अपने देश में अनादि काल से चला आ रहा है। विभिन्न धार्मिक ग्रंथों के प्रेरक आख्यान हमें बताते हैं कि सृष्टि के सृजन काल में इसके संचालन का संदेश यही था कि पृथ्वी पर ज्ञान का प्रवाह शाश्वत रहे, ताकि नकारात्मक प्रवृत्तियों का समन सदैव होता रहे एवं समाज में परिचालित पुनित ताने बाने बिखरने न पाए। गुरु यानी जो अपने ज्ञान पुंज से व्यक्ति विशेष में विद्यमान अज्ञान और असमंजस को दूर कर उसे प्रकाश के द्वार की ओर उन्मुख करे। शाब्दिक अर्थ में यह माना गया है कि गु अर्थात अंधकार या अज्ञान, जबकि रू से ज्ञान की उत्पत्ति हुई है। इसी प्रकार परंपरा का तात्पर्य है बिना किसी बाधा के सृजन रूपी वैचारिक तरंग की श्रृंखला में निरंतरता बनाए रखना। समाज में अनेक परंपराएं आज इसलिए भी जीवंत हैं क्योंकि हमारे पूर्वजों ने उसकी मजबूत आधारशिला रखी थी और आज भी बिना किसी परिवर्तन के यह प्रवाहित हो रहा है। गुरु परंपरा को भी हम इसी कड़ी में विहंगम दृष्टिपात करते हैं। यह बिना किसी बदलाव और रुकावट के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचारित हो रहा है। सभी धर्मों में यह मान्यता है कि अज्ञान को नष्ट करने वाला जो ब्रह्म रूपी प्रकाश है वह गुरु हैं, जिनके माध्यम से समाज में सृजन और शांति की चेतना अविरल गति से बहते रहती है। यही कारण है कि गुरु को समाज में अत्यधिक सम्मानित स्थान प्राप्त हुआ है। भारतीय इतिहास में गुरु की भूमिका समाज को सुधार की ओर ले जाने वाले मार्गदर्शक के रूप में होने के साथ साथ

क्रांति को सही दिशा दिखाने वाली भी रही है। भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर माना गया है। संत कबीरदास जी की उक्ति आज भी अत्यंत प्रसिद्ध एवं अनुकरणीय है, जिसमें वे कहते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद यो बताए। यानी गुरु और भगवान दोनों एक साथ सामने खड़े हों तो पहले गुरु के चरणों में झुकना चाहिए, क्योंकि गुरु ही ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता दिखाते हैं। यूं कहें कि गुरु परंपरा एक अमृत तुल्य जीवनदायिनी प्रक्रिया है, जो ज्ञान की निरंतरता एवं आध्यात्मिक प्रगति सुनिश्चित करती है। जिस प्रकार बिना बीज के पौधे नहीं उग सकते और वह भविष्य में वृक्ष का स्वरूप ग्रहण नहीं कर सकता, उसी तरह गुरु में भंडारित ज्ञान तत्व मानव जीवन का कल्याण तब तक नहीं कर सकता है जब तक कि उस अमूल्य निधि को ग्रहण करने वाले कोई योग्य पात्र अर्थात शिष्य न हो। गुरु परंपरा की आत्मा में प्रथम स्थान उसके शिष्य का ही है, जो उसे प्राप्त कर सबसे पहले अपने जीवन में प्राप्त सद्गुणों को उतारता है और बाद में वह समाज में उसे प्रस्तुत करता है। सवाल यह भी प्रासंगिक है कि गुरु परंपरा में शिष्य बिना समुचित जांच परख के प्रमाणित पैमाने पर बिना सफल हुए इसके संचालन की योग्यता धारण नहीं कर सकता। इस हेतु गुरु को अपनी कठिन साधना और तपस्या से उपजे ज्ञान रश्मियों से अपने शिष्य को सदैव सींचना पड़ता है। वे अपने शिष्य को अनेक जटिल परीक्षाओं से गुजरने और उसमें सफल होने के सूत्र निर्धारित करते हैं। साक्ष्य दर्पण बताते हैं कि कभी नालंदा विश्वविद्यालय में छात्रों के प्रवेश हेतु उसे द्वारपाल द्वारा पूछे गए प्रश्नों को हल करना पड़ता था। यानी यह प्रयोग गुरु परंपरा का वह अद्भुत अंश था कि पहले छात्र बुनियादी प्रश्नों का सही उत्तर दें, तभी उनका अमुक पाठ्यक्रम में प्रवेश होगा। गुरु परंपरा में एक गुरु अपने ज्ञान अनुभव और आध्यात्मिक शिक्षा को क्रमबद्ध तरीके से अपने शिष्य को हस्तांतरित करते हैं। उसमें ज्ञान का विरासतीय प्रमाणीकरण, गुरु एवं शिष्य के बीच एक गहन बौद्धिक संबंध को बढ़ावा देना तथा समाज के सर्वांगीण उत्थान के लिए निरंतर ज्ञान प्रवाह को बनाए रखना शामिल है। यह परंपरा सिर्फ शिक्षा या पाठ्यक्रम तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्म अवलोकन, आत्म साक्षात्कार एवं जीवन के हर क्षेत्र में ज्ञान के संरक्षण और प्रसार का एक सशक्त माध्यम है। संक्षेप में इसका तात्पर्य है कि गुरु परंपरा बुनियादी तौर पर गुरु और शिष्य की एक पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली श्रृंखला है, जहां ज्ञान संपदा का हस्तांतरण एक प्रमाणित स्रोत से होता है। इसे इस रूप में भी समझा जा सकता है कि गुरु अपना ज्ञान और शिक्षा शिष्यों को देते हैं, फिर शिष्य इसके दीर्घकालिक अभ्यास करते करते खुद को जब गुरु की भूमिका में आते हैं तो वे इस प्रकल्प को अगली संतति को प्रदान करते रहते हैं। यह परंपरा समाज का गौरवशाली आधार स्तंभ है, जो एक शक्तिशाली समृद्ध और जागरूक नींव की स्थापना करता है। प्राचीन काल में गुरु परंपरा का मुख्य आधार गुरु का ज्ञान और शिष्य की अगाध भक्ति सह श्रद्धा मानी जाती थी। सांस्कृतिक विरासत का यह अभिन्न अंग है, जो गुरु एवं शिष्य के मध्य एक पवित्र और अटूट संबंध स्थापित करती है। यह परंपरा हिंदू धर्म के अतिरिक्त सिख, जैन और बौद्ध समाज में दीर्घकालिक अवधि से पाया जा रहा है और बहुत हद तक इसके निर्वहन आज भी हो रहे हैं। भारतीय संस्कृति में ऋषि, मुनि, तपस्वी और महापुरुष ने ही प्रथमतः अपनी गुरु परंपरा की शुरुआत की थी और अर्जित ज्ञान प्रकाश से अपने शिष्य या अनुयायियों का चरित्र निर्माण करते हुए उनके भविष्य को उत्तम बनाया था। इस परंपरा का उद्देश्य है कि समाज में सदैव ज्ञान पुंज का प्रवाह होता रहे, व्यक्ति सही और गलत के स्वभाव में व्याप्त अंतर को समझते हुए सार्थक और सात्विक मर्म को अपना सके। इसी की छाप से समाज में सर्वत्र सुख, समृद्धि एवं शांति का सूर्योदय होता रहेगा। प्राचीन काल में गुरु परंपरा का साक्षात दर्शन गुरुकुल में देखे जाते थे। एक निश्चित अवधि में विद्या अर्जन कर शिष्य वे सभी गुण अपने गुरुदेव से प्राप्त करते थे, जिसकी अपेक्षा उनके गुरु उनसे किया करते थे। समय के प्रवाह ने आज भले गुरुकुल की परंपरा को कमतर किया है, किंतु योग्य गुरु और छात्र ने समाज और देश

0: में अपने कुशल प्रेरक व्यक्तित्व से एक आदर्श भूमिका निभाने में आज भी कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। वैदिक धर्मशास्त्रों ने गुरु को ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश की संज्ञा से भी अलंकृत किया है। गुरु परंपरा की पगडंडी आसान नहीं होती, बल्कि उसे हर पल कठिन परीक्षा के दौर से गुजरने को बाध्य रखती है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस की गुरु शक्ति ने ही बालक नरेंद्र को स्वामी विवेकानंद बनाया था। गुरु परंपरा के नूतन संस्करण ने देश की स्वतंत्रता के बाद द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर वर्ष 1962 में उनका जन्म दिवस मनाने का आग्रह उनके छात्रों ने जब उनसे किया तो उन्होंने सुझाव दिया कि इस तिथि यानी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए ताकि शिक्षकों के योगदान को उचित सम्मान मिल सके। उस तिथि से एक प्रकार से गुरु परंपरा की पवित्र पृष्ठभूमि में शिक्षक दिवस देश के हर शैक्षणिक संस्थान में आयोजित करने का प्रचलन व्याप्त है। सामान्य तौर पर यह भी स्वीकार किया गया है कि जिस भी स्रोत से किसी को ज्ञान बिंदु का स्पर्श हो वह उसे अपने जीवन के व्यवहारिक पक्ष में निरूपित करे, वह स्रोत भी गुरु के दर्जे से विभूषित होते हैं। तुलसीदास जी को अपनी धर्मपत्नी से मिले ज्ञान प्रसंग ने उनके जीवन में एक अद्भुत और ऐतिहासिक परिवर्तन ला दिया था। भारतीय शास्त्रों में ऐसे असंख्य दृष्टांत अंकित हैं जहाँ छोटे छोटे जीवन के घटनाक्रमों ने व्यक्ति में अभूतपूर्व उपलब्धि प्राप्त कराया है। इसे हम गुरु परंपरा के जीवंत उदाहरण के रूप में मनन कर सकते हैं। कभी गुरुकुल के प्रति पूरे समाज में एक अलग प्रतिष्ठा का भाव रहा करता था। अभिभावक अपने बच्चों को इसमें प्रवेश हेतु अधिक लालायित रहते थे, क्योंकि उन्हें पता होता था कि यदि उनके बच्चे गुरुकुल में ज्ञान अर्जन हेतु प्रवेश लेते हैं तो उनके जीवन का समावेशी विकास होगा। वे वहाँ का अनुशासन के सूत्रों से अपने जीवन यात्रा में सदा सफल होंगे। गुरु परंपरा की सबसे उत्तम उपलब्धि यह थी कि शिष्य अपने अध्ययन काल में पूरी निष्ठा और समर्पित भाव से अपने गुरु की आज्ञा एवं निर्देश का अक्षरशः पालन किया करते थे। गुरु भी अपने शिष्य को पाठ्यक्रम से कुछ ऐसे जटिल प्रश्न पूछते थे जहाँ छात्र सिर्फ सैद्धांतिक या वस्तुनिष्ठ उत्तर के जगह व्यावहारिक दृष्टिकोण रखते थे। गुरु परंपरा में छात्रों की दैनिक परीक्षा भी हुआ करती थी। गुरुकुल में अध्ययन, किसी विषय पर विमर्श, भोजन की तैयारी से लेकर उसे पकाना और भोजन मंत्र के साथ उसे सेवन करना आदि प्रक्रम अति सहजता और सरलता से संपन्न हुआ करते थे। काल के कपाल पर नित्य जीवन शैली में हो रहे परिवर्तन ने गुरु परंपरा की पुनर्स्थापना हेतु समाज को वर्तमान में चिंतन हेतु बाध्य किया है, क्योंकि अल्प रूप में शैक्षणिक प्रतिकूलताएं हमारे पुरखों द्वारा निर्मित ज्ञान मंदिर को अस्वस्थ कर रही हैं। चूंकि पारिवारिक पाठशाला ही जीवन का श्रेष्ठ और बुनियादी ढांचा है, जहां से प्राप्त प्रारंभिक ज्ञान व्यक्ति को उसके भविष्य का मार्ग प्रशस्त करता है। संयोग है कि आज यह क्रम थोड़ा बाधित होता दिख रहा है, जिसे संभालने की नितांत आवश्यकता है। जितना योग्य छात्र होंगे वे ही भविष्य में लोकप्रिय और प्रभावी शिक्षक बन सकेंगे। शिक्षक अपने देश के वह अमूल्य निधि हैं जिनके पुरुषार्थ से शैक्षणिक मंडल की आभा उदीयमान होगी। इस ओर आज समाज के सभी वर्गों को प्रवृत्त और चिंतित होने की आवश्यकता है। कभी भारतवर्ष विश्व गुरु के रूप में प्रसिद्ध रहा है, लेकिन राग रंग की नव तरंग में हमने इस मूल्यों को विस्मृत कर दिया है। आइए सुबह को भूले हम शाम की गोधूली वेला में घर लौट आएं, ताकि गुरु परंपरा के प्राचीन प्रतिमान फिर से जीवंत हो सके।
1: कार्यक्रम पराग में अभी आप सुन रहे थे एक वार्ता जिसका विषय था गुरु परंपरा भारतीय संस्कृति का सार। वार्ताकार थे अशोक कुमार। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण इस अंतराल के बाद।

हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्ज पर। इस वक्त दोपहर के 1:20 हुए हैं। अब सुनिए देशगान। आवाजें हैं सुखविंदर सिंह और सलीम मर्चेंट की, फिल्म का नाम चक दे इंडिया, गीतकार हैं जयदीप साहनी और संगीतकार सलीम सुलेमान।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। इस वक्त दोपहर के 1:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म कॉकटेल के इस प्यारे से गीत के साथ। आवाजें हैं नीरज श्रीधर और कविता सेठ की। गीत के बोल लिखे हैं इरशाद कामिल ने और धुन बनाई है प्रीतम ने।

0: श्रोताओं, फिल्म संगीत का सफर आगे भी जारी रहेगा इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: अंतराल के बाद आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है फिल्म संगीत में। और अब कार्यक्रम की अगली पेशकश फिल्म कृष्णा से। आवाजें हैं अभिजीत भट्टाचार्य और अलका याग्निक की, गीतकार हैं आनंद राज आनंद और संगीतकार अनु मलिक।

जसपिंदर नरूला और रूप कुमार राठौर के युगल स्वर में अभी आप सुन रहे थे फिल्म होगी प्यार की जीत का ये गाना। और अब अगला गीत फिल्म खामोशी से, आवाजें हैं कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू की। गीत के बोल लिखे हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने और धुन बनाई है जतिन ललित ने।

फिल्म संगीत की अगली पेशकश फिल्म दिल का क्या कसूर से, आवाज़ें हैं आशा भोसले की, गीतकार समीर और संगीतकार नदीम श्रवण।

और अब कार्यक्रम की आखिरी पेशकश फिल्म ए दिल है मुश्किल से। आवाज है अरिजीत सिंह की, गीत के बोल लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने और धुन बनाई है प्रीतम ने।

और इसी गीत के साथ समाप्त होता है फिल्म संगीत मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्स पर। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। इस वक्त दोपहर के 2 बजने ही वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय ने आज पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली। पटना स्थित बिहार लोक भवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के बाद न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय के सम्मान में पटना हाई कोर्ट में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, राजस्व और भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल, खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी, सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव सहित राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्य उपस्थित थे। समारोह में कई न्यायाधीश, प्रशासनिक अधिकारी और गणमान्य लोग भी मौजूद थे। गौरतलब है कि इससे पहले न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय सिक्किम उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश थीं। वे पटना हाई कोर्ट की दूसरी महिला और 48वीं मुख्य न्यायाधीश बनी हैं। बक्सर जिले के इटाढ़ी रेलवे कुमटी पर नवनिर्मित रोड ओवरब्रिज क्षतिग्रस्त हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि 26 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से निर्मित इस आरओबी का उद्घाटन 4 दिन पहले हुआ था। आरओबी का पाया संख्या 5 पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। इसके बाद प्रशासन ने पुल पर आवागमन बंद कर दिया है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर जीवन को बचाने और जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत यह दिवस वर्ष 1973 से मनाया जाता है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस अवसर पर राजधानी पटना के जेपी गंगापत उद्यान परियोजना में पौधारोपण कर 1 लाख पेड़ लगाने के कार्य का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने लोगों से अधिक पौधारोपण कर धरती पर हरियाली बढ़ाने की अपील की। साथ ही उन्होंने लोगों को बिजली की बचत, सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ाने, ईंधन बचाने और ईवी वाहनों का उपयोग करने को कहा। इधर हमारे संवाददाताओं ने बताया कि इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण के संकल्प के साथ कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की बात।

0: आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी। और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। पूरा प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में है। कई स्थानों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान 41.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ बक्सर राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान तापमान

सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ बक्सर राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान तापमान में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान उत्तर पश्चिम और उत्तर मध्य भागों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चलने की चेतावनी जारी की गई है। आज संपूर्ण क्रांति दिवस है। आज ही के दिन लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। मुख्य राजकीय समारोह पटना के जेपी गोलंबर पर आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी समेत राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्यों ने जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। अररिया जिले के पलासी थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर एक व्यक्ति को लगभग 5 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। शेखपुरा से पुलिस ने 2 कार से भारी मात्रा में शराब के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। खगड़िया जिले की चौथम थाना क्षेत्र में NH 107 पर एक तेज रफ्तार हाईवा की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों की मौत हो गई। इधर समस्तीपुर के मुसरी खरारी थाना क्षेत्र के गंगापुर गांव के पास एक अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

ये आकाशवाणी पटना है। अब आप शर्फुल हुदा से इलाकाई खबरें सुनिए। जस्टिस मीनाक्षी मदन राय ने आज पटना हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ लिया। पटना वाक़े बिहार लोक भवन में मुनक़िद एक तकरीब में गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हसनैन ने उन्हें ओहदे और राजदारी का हल्फ दिलाया। हल्फ बर्दारी के बाद जस्टिस मीनाक्षी मदन राय के एजाज़ में पटना हाई कोर्ट में इस्तकबालिया तकरीब मुनक़िद की गई। इस मौके पर वज़ीर आला सम्राट चौधरी, नायब वज़ीर आला विजय कुमार चौधरी, महसूलात व इस्लाहात अराजी के वज़ीर दिलीप जायसवाल, खुराक और सार्फिन तहफ़ के वज़ीर अशोक चौधरी, इमदाद बाहमी के वज़ीर राम कृपाल यादव समेत रियासती काबीना के कई अराकीन मौजूद थे। तकरीब में कई जजेज, इंतजामी अफसरान और मुअज्जज शख्सियतें भी मौजूद थीं। गौरतलब है कि इससे कबल जस्टिस मीनाक्षी मदन राय सिक्किम हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस थीं। वो पटना हाई कोर्ट की दूसरी खातून और 48वीं चीफ जस्टिस बनी हैं। बक्सर ज़िले के इटाढ़ी रेलवे गुमटी पर नौतामीर रोड ओवर ब्रिज नुकसान ज़दा हो गया है। हमारे नामानिगार ने बताया कि 26 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से इस आरओबी का इफ्तिताह 4 दिन पहले हुआ था। आरओबी का पिलर नंबर 5 पूरी तरह तबाह हो गया है। इसके बाद इंतज़ामिया ने पुल पर आमदोरफ्त मसदूद कर दिया है। आज आलमी यौम माहौलियात है। ज़मीन पर ज़िंदगी को बचाने और बेदारी पैदा करने के लिए अक़वामे मुत्तहिदा माहौलियात प्रोग्राम के तहत ये दिन 5 जून को 1973 से मनाया जाता है। वज़ीर आला सम्राट चौधरी ने इस मौके पर राजधानी पटना के जेपी गंगापथ बोटानिकल प्रोजेक्ट में शजरकारी करके 1 लाख दरख्त लगाने का काम किया। वज़ीर आला ने लोगों से ज़्यादा शजरकारी करके ज़मीन पर हरियाली बढ़ाने की अपील की है। साथ ही उन्होंने लोगों को बिजली की बचत, शमसी तवानाई का इस्तेमाल बढ़ाने, ईंधन बचाने और ईवी गाड़ियों को इस्तेमाल में लाने को कहा। इधर हमारे नामानिगारों ने बताया कि आलमी यौम माहौलियात पर माहौलियात के तहफ़ के अज़्म के साथ कई बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं। पूरी रियासत शदीद गर्मी की जद में है। कई मकामात का दर्जा हरारत 40 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान 41.8 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा से ज़्यादा पारा हरारत के साथ बक्सर रियासत का सबसे गर्म जगह रहा। राजधानी पटना का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम की पेशगोई में कहा गया है कि

7,150 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु 28 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अप्रैल 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 8 जून 2026 तक है। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप इसकी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। वेबसाइट नोट कर लें, www.sbi.bank.in। रोजगार सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। इस वक्त दोपहर के 2:15 होने ही वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.25% पर यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। सरकार ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्कों का उद्घाटन किया। और जापान में पुरुषों के अंडर 18 हॉकी एशिया कप के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों के 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा जाएंगे। प्रधानमंत्री दोपहर में एक जनसभा को संबोधित करने से पहले औद्योगिक और बुनियादी ढांचा कार्यों की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री शाम को दमन का दौरा करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दमन में नमो हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन और आधुनिक नमो अस्पताल का उद्घाटन करेंगे, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री आज दमन कन्वेंशन सेंटर, निफ्ट परिसर और एक प्रतिष्ठित ब्रिज समेत कई ऐतिहासिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। समुद्री विकास की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में प्रधानमंत्री आज केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लिए भी 885 करोड़ रुपए की बंदरगाह परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं के तहत कल्पेनी और कदमत द्वीपों पर बहुउद्देश्यीय जेटियों का विकास किया जाएगा, जिससे स्थानीय मछुआरों को एकीकृत मछली पकड़ने और नाव मरम्मत सुविधाएं मिलने के साथ साथ बड़े यात्री और क्रूज जहाजों के लिए साल भर रुकने की व्यवस्था उपलब्ध होगी। अपर्णा खुण, आकाशवाणी समाचार, सूरत।
0: सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाले पूंजीगत लाभ और ब्याज से आय को पूरी तरह से कर छूट दे दी है। ये छूट इस वर्ष 1 अप्रैल से लागू होगी। सरकार ने इस संबंध में आयकर संशोधन अध्यादेश 2026 जारी किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से सरकारी प्रतिभूतियों पर कराधान कई देशों के समान हो जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इसी तरह के आयकर छूट बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स को भी दी गई है। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत तटस्थ रखा गया है।
2: After a detailed...

0: assessment.
1: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से एलएएफ के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
2: स्थायी जमा सुविधा की दर 5% पर बनी हुई है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर 5.5% पर ही है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। बैंक ने मुद्रास्फीति के अपने पूर्वानुमान को भी 4.6% से बढ़ाकर 5.1% कर दिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि पॉलीमर आधारित करेंसी नोट का प्रस्ताव बैंक के विचाराधीन है। देश के विभिन्न हिस्सों में बैंक शाखाओं और एटीएम में नोटों की कमी को लेकर कुछ ग्राहकों ने शिकायतें की हैं। इन मुद्दों पर उन्होंने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त नकदी है और यदि कोई कमी है तो उसे तुरंत पूरा कर दिया जाएगा। उद्योग संगठन एसोचैम ने आरबीआई के रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने के निर्णय की सराहना करते हुए कहा है कि यह विकास को गति देगा और उद्योग जगत को मजबूती प्रदान करेगा। एसोचैम के महासचिव सौरभ सान्याल ने कहा कि यह निर्णय आर्थिक प्रगति के साथ साथ मुद्रास्फीति को एक सुरक्षित दायरे में बनाए रखने में मददगार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की डिजिटल बुनियादी ढांचा यात्रा गति पकड़ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एयर ट्रंक ने भारत में लगभग 3,00,000 करोड़ रुपए का निवेश करने और 5 गीगावाट डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने की योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ये देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रस्तावित सबसे बड़े निवेशों में से एक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल विदेश मंत्री एस जयशंकर के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। इस यात्रा के दौरान श्री खनाल नई दिल्ली में डॉक्टर जयशंकर से मुलाकात करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधों सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से पारस्परिक हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। एक रिपोर्ट।
3: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत की सभ्यता ने अपने नागरिकों को प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहना सिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम जैसी पहलों ने प्रतिवर्ष लगभग 1.1 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को व्यक्त करने का प्रतीक है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज त्रिपुरा के लंकामुरा सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों को संबोधित करते हुए सीमा सुरक्षा को लेकर एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। विश्व पर्यावरण दिवस पर श्री शाह ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ के पर्यावरणीय योगदान को लेकर कहा कि वर्ष 2019 से सीएपीएफ कर्मियों द्वारा लगभग 6 करोड़ 40 लाख पौधे लगाए गए हैं।
4: 2019 से लेकर आज तक हमारे सभी सीएपीएफ में जवानों ने लगभग 6 करोड़ 40 लाख वृक्षों को लगाने का काम किया। इस साल हम 40 लाख से 60 लाख वृक्ष लगाने वाले हैं और अगले साल हम सब का एक सामूहिक संकल्प बनने वाला है कि अगले साल एक ही वर्ष में सीएपीएफ के जवान 2 करोड़ से ज्यादा वृक्षों का लगाने का काम करेंगे और पर्यावरण की और

0: सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाया। आकाशवाणी से बात करते हुए डॉक्टर मुरुगन ने नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने जल संरक्षण, वृक्षारोपण और वृक्षों की रक्षा तथा संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया।
1: माँ का नाम से एक पेड़ लगाने के लिए हमारा प्रधानमंत्री जी ऑलवेज एक्सप्रेस एंड ही कॉल्ड टू द नेशन वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे, सो वी आर ऑल ऑब्जर्विंग दिस डे। यस एंड माँ का नाम से एक पेड़ लगाएंगे।
0: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजधानी में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत कई पर्यावरणीय पहलों का शुभारंभ किया। श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश बनकर उभरा है।
2: भारत दुनिया में जो विश्व पर्यावरणीय संकट है उसमें एनर्जी के क्षेत्र में, वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। जैसा अभी एरेना की रिपोर्ट में भी आया है कि सोलर ऊर्जा में हम दूसरे नंबर पे आए हैं, देश में वन क्षेत्र बढ़ रहे हैं और दिल्ली में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में धूलमुक्त दिल्ली के लिए कार्यक्रम शुरू हुआ है। दिल्ली में जो लोकल वनस्पतियां और जो पेड़ हैं उसके लिए प्रदर्शनी लगाई गई है। सभी एक पेड़ माँ के नाम पे जरूर लगाएं।
0: इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए हरियाली बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण उपायों में से एक है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हब एंड स्पोक मॉडल का उपयोग करते हुए हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद नेटवर्क के माध्यम से लगभग 100 कारीगरों को अमरीका के बाजारों से जोड़ा जा चुका है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि ये पहल स्थानीय स्तर पर निर्मित हस्तशिल्प को बढ़ावा देती है और वोकल फॉर लोकल के दृष्टिकोण को मजबूत करती है।
3: जो बसंत कुंज में अवस्थित ये मार्केट है, सरकार ने मुझे ये जमीन दी है आर्टिजन के बढ़ावा के लिए, तो हम इसमें आर्टिजन को अभी स्टॉल लगा रहे हैं। लोकल फॉर भोकली है, दूसरा एकदम पर्यावरण अनुकूल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव का एक लेख साझा किया है। अपने लेख में श्री यादव ने पर्यावरण संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई और जन भागीदारी का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भूपेंद्र यादव ने प्रकृति आधारित समाधानों के माध्यम से इन चुनौतियों से निपटने का अनुरोध किया है, जो टिकाऊ, किफायती और दीर्घकालिक पारिस्थितिकी लाभ प्रदान करने में सक्षम है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कई मंत्रियों ने एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत पौधारोपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहा ताल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के प्राकृतिक परिवेश और विशेष रूप से आर्द्र भूमि की रक्षा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता इसमें झलकती है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई के पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिए गए इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। अन्नामलाई ने हाल ही में भाजपा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा था। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता जारी है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते में स्थायी रूप से ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका जाना चाहिए। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने कहा कि परमाणु अप्रसार उनकी सरकार के दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य बना हुआ है। एक रिपोर्ट।
4: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भविष्य में किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते की आलोचना करते हुए इसे ईरान के परमाणु हथियार हासिल करने का मार्ग बताया और यह दावा किया कि कोई भी नया समझौता मौलिक रूप से अलग होगा। ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए अमरीकी हमलों का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि ये ठिकाने पूरी तरह नष्ट कर दिए गए थे और उन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर अमरीकी सैनिकों को निशाना बनाया गया तो तुरंत जवाबी कार्रवाई की जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति की ये

0: टिप्पणियां ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर दीर्घकालिक समझौते तक पहुंचने के लिए जारी राजनयिक प्रयासों के बीच आईं। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 0.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलते तक सेंसेक्स 289 अंक फिसलकर 74,071 पर, जबकि निफ्टी 100 अंक लुढ़ककर 23,317 पर था। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच जापान के काकामेगाहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण करेंगे। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.2% पर यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर और विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। सरकार ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। इस वक्त दोपहर के 2:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। वसीम अकरम और गुड़िया खातून जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: सफलता प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है कठोर परिश्रम और लगन।
0: बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यारे संदेश के लिए। आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। कुतुबपुर तहसील जिला हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा,
2: छोटी बलिया मुंबई से आमना अंसारी, जुबैदा और नेहा अंसारी,
0: और बेगूसराय बिहार से इकबाल मोगा, देव अजय मोगा और अहमद मोगा,
2: ऊपरकोट मोहल्ला चकुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य,
0: और डोंडी दोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया,
2: और मगरपारा बिलासपुर से वसीम जाटव, अकरम जाटव, आफताब जाटव, मेहताब जाटव, मेराज जाटव और अल्ताफ जाटव।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। साथियों, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं शीत मरुस्थलों की।
2: अब तक हम चर्चा कर चुके हैं अंटार्कटिक, गोबी और लद्दाख के शीत मरुस्थलों की, तो चलिए आगे चर्चा को बढ़ाते हैं और आज हम बात करते हैं भारत के एक और शीत मरुस्थल की, जिसे लाहौल स्पीति के शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। इसे लामाओं की भूमि भी कहा जाता है। तो अजीत जी, एक बार फिर से मैं श्रोताओं की ओर से उसी प्रश्न पर आती हूँ, इसे शीत मरुस्थल क्यों कहते हैं?
0: विमलेश जी, जैसा कि हमने बार बार चर्चा की है ना, कि मरुस्थल केवल गर्म ही नहीं होते, जरूरी नहीं है कि वहाँ रेती हो या गर्मी हो जैसी कि आम धारणा है। ऐसा है कि जहाँ वर्षा मानक औसत से बहुत कम हो, जहाँ वनस्पतियों का अभाव हो, जनजीवन कठिन हो, वो स्थान मरुस्थल कहलाते हैं।
2: जी अजीत जी, लाहौल स्पीति में वर्षा बहुत कम होती है क्योंकि ये क्षेत्र हिमालय की वर्षा छाया यानी रेन शेडो में पड़ता है। हिमालय क्षेत्र की ओर आने वाले मानसूनी बादलों को रोक लेता है, इसी कारण से यहाँ हरियाली बहुत कम देखने को मिलती है। अजीत जी, ये तो बता दें श्रोताओं कि लाहौल स्पीति कहाँ है?
0: विमलेश जी, लाहौल स्पीति है हिमाचल प्रदेश के उत्तरी भाग में।
2: जी,
0: आमतौर पर हम इसे लाहौल स्पीति कह देते हैं, लेकिन दरअसल ये दो अलग अलग घाटियाँ हैं।
2: जी,
0: यहाँ का तापमान सर्दियों में -25 डिग्री सेल्सियस

0: से लेकर -32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है।
1: जी
0: गर्मियों में दिन के समय तेज धूप होती है, लेकिन शाम होते ही तापमान गिरने लगता है। रातें बहुत ठंडी हो जाती हैं।
1: श्रोताओं, जहां तक जनजीवन का प्रश्न है, कम ऑक्सीजन, भारी बर्फबारी और लंबे सर्द मौसम के बावजूद लोग यहाँ छोटे छोटे गांवों में रहते हैं। खेती करने का मौसम बहुत छोटा होता है। मुख्य रूप से यहाँ आलू, जौ और मटर जैसी फसलें उगाई जाती हैं। कई गांवों में तिब्बती संस्कृति और बौद्ध मठ देखे जा सकते हैं। अजीत जी, कल आप बात कर रहे थे यहाँ के आसमान की, कोई खास बात है क्या?
0: जी विमलेश जी, यहाँ का आसमान सच में रात के समय अद्भुत होता है। आसमान इतना साफ होता है कि आप आंखों से अनगिनत खूबसूरत तारों और यहाँ तक कि आकाशगंगा के अनोखे दृश्यों का भी आनंद उठा सकते
1: क्या
0: हैं।
1: बात है।
0: इसीलिए तो यहाँ कुछ वेधशालाएं भी बनाई गई हैं। खगोल प्रेमियों के लिए तो ये जगह खास है।
1: क्या बात है। श्रोताओं, आपको एक बड़ी रोचक जानकारी दे दें कि कौमिक गांव स्पीति क्षेत्र का सबसे अधिक ऊंचाई वाला गांव माना जाता है। ये समुद्र तल से लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये दुनिया के सबसे ऊंचे मोटर सड़क से जुड़े गांवों में गिना जाता है।
0: और श्रोताओं, ये भी बता दें कि यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए नए लोगों के शरीर को अनुकूलित होने तक धीरे धीरे चलना पड़ता है।
1: जी
0: यहाँ के घर भी लद्दाख की तरह पत्थर और मिट्टी के बने होते हैं ताकि अंदर गर्मी बनी रहे।
1: और अब बात करते हैं इस क्षेत्र के स्कूलों की। इतनी ऊंचाई और कठिन मौसम के बावजूद यहाँ बच्चे स्कूल जाते हैं। गांव में सरकारी प्राथमिक स्कूल हैं। कभी कभी भारी बर्फबारी के कारण स्कूलों को कुछ समय के लिए बंद भी करना पड़ता है। यहाँ हिंदी, अंग्रेजी के अलावा बच्चे भूटी और तिब्बती भाषा भी सीखते हैं। आगे की पढ़ाई के लिए वे पास के काजा जैसे कस्बों में जाते हैं। काजा घाटी के नीचे समतल मैदान में है। बच्चे पढ़ाई के अलावा पानी लाना, भेड़ों और याक की देखभाल करना जैसे भी काम करते हैं।
0: एक और बेहद रोचक जानकारी आपको दे दें, और वो ये है कि स्पीति घाटी में एक गांव है जिसका नाम है हिक्किम। यहाँ स्थित डाकघर दुनिया के सबसे ऊंचे डाकघरों में गिना जाता है।
1: जी
0: यहाँ आज भी लोग पोस्टकार्ड और अंतर्देशीय पत्रों का इस्तेमाल करते हैं।
1: जी
0: इस डाकघर की स्थापना 5 नवंबर 1983 को हुई थी।
1: सन 2022 में इस डाकघर को फिर से बनाया गया और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इसे एक विशाल पत्र पेटी या लेटर बॉक्स का रूप दे दिया गया। श्रोताओं, सर्दियों में डाक पहुंचाना कठिन हो जाता है। यहाँ के डाक कर्मियों की हिम्मत को दाद देनी चाहिए। वो कठिन पहाड़ी रास्तों से होकर पैदल चलकर डाक पहुंचाते हैं। तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी भारत के शीत मरुस्थल लाहौल स्पीति के बारे में।
0: और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर किस गांव में पड़ता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर किस गांव में पड़ता है?
0: आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800-4400-559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो उन्हें NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर या दीक्षा पर सुन सकते हैं।
1: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं कार्यक्रम नकली हीरे।
0: कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस नाट्य प्रधान कार्यक्रम के द्वारा विशेष रूप से संदेश दिया गया है कि किसी को प्रसन्न करने के लिए उसकी झूठी प्रशंसा करने का परिणाम अंत में बुरा ही होता है।
2: नकली हीरे।

0: काननपुर के बुद्धिमान और वृद्ध राजा का एक ही बेटा था। वे दिन रात अपने बेटे के लिए चिंतित रहते थे। वे इसी चिंता में घुले जा रहे थे कि उनके बाद बेटे का क्या होगा।
1: मैं अधिक दिन जीवित नहीं रहूंगा, मुझे अपने पुत्र के लिए कोई सलाहकार ढूंढना चाहिए जो मेरे बाद उसे सही रास्ता दिखा सके।
0: सो एक सुबह उसने सब दरबारियों को दरबार में बुलवाया।
2: महाराज, महाराज, महाराज, महाराज, महाराज, महाराज, महाराज, महाराज, महाराज, महाराज, महाराज, महाराज, महाराज, महाराज, महाराज, महाराज, महाराज, महाराज, महाराज, महाराज, महाराज, महाराज, महाराज, महाराज, महाराज, महाराज, महाराज, महाराज, महाराज, महाराज, महाराज, महाराज, महाराज, महाराज, महाराज, महाराज, महाराज, महाराज, महाराज, महाराज, महाराज, महाराज, महाराज, महाराज, महाराज, महाराज, महाराज, महाराज, महाराज, महाराज, महाराज, महाराज, महाराज, महाराज, महाराज, महाराज, महाराज, महाराज, महाराज, महाराज, महाराज, महाराज, महाराज, महाराज, महाराज, महाराज, महाराज, महाराज, महाराज, महाराज, महाराज, महाराज, महाराज, महाराज, महाराज, महारा

0: शांत शांत, आप सबका स्वागत है। मैंने एक विशेष कार्य के लिए आप सबको दरबार में बुलाया है।
1: हाँ हाँ महाराज,
0: महाराज
1: बताइए,
0: हम आपकी सेवा में सदैव तत्पर।
1: हम आपकी सेवा के लिए हाजिर हैं महाराज।
0: मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कृपया करके स्पष्ट उत्तर दीजिएगा।
2: जी महाराज, पूछिए, क्या प्रश्न है आपका?
0: प्रश्न है, क्या मैं बुद्धिमान और ईमानदार राजा हूँ? मुझे सिर्फ सत्य ही जानना है।
3: निसंदेह महाराज, संसार में आप सब बुद्धिमान, सारे संसार में कोई नहीं है।
4: सब दरबारियों ने बारी बारी से यही उत्तर दिया।
0: आप सभी के उत्तर से मैं इतना प्रसन्न हुआ कि भेंट स्वरूप आप सभी को एक एक हीरा दिया जाता है।
4: हर दरबारी को राजा ने एक एक हीरा दिया।
5: जी महाराज, बहुत धन्यवाद।
6: महाराज की जय हो।
7: महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो।
0: आप सभी के उत्तर के लिए धन्यवाद।
4: सब दरबारी प्रसन्न होकर चले गए, पर एक दरबारी चुपचाप एक कोने में खड़ा रहा।
0: नवयुवक, तुमने कोई उत्तर नहीं दिया, तुम चुपचाप खड़े रहे। क्या तुम्हें मेरा प्रश्न समझ में नहीं आया?
1: महाराज, ऐसी बात नहीं है, परंतु महाराज, दूसरों ने तो आपको प्रसन्न करने वाले उत्तर दिए, पर क्षमा कीजिएगा, मेरा उत्तर वैसा नहीं है।
0: हम फिर भी आपका उत्तर सुनना चाहते हैं।
1: इसमें संदेह नहीं है महाराज, कि आप बुद्धिमान भी हैं और ईमानदार भी हैं, परंतु क्षमा करें महाराज, आपसे पहले भी श्रेष्ठ राजा हो चुके हैं, जो बुद्धिमत्ता में आपसे तो बढ़ चढ़कर थे ही, ईमानदारी में भी वे आपसे बढ़ चढ़कर थे।
0: हमें आपका उत्तर सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई। ये लो आपका इनाम, हीरा।
1: धन्यवाद महाराज।
4: अगली सुबह काननपुर के सारे दरबारी दरबार में वापस आए। उनके बीच कुछ चिंता का विषय था। वे आपस में कुछ दबी दबी आवाज में बातें करने लगे।
1: भाई क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा
3: हुआ? मुझे भी
1: नकली मिला। क्या सबको नकली मिला? तुम भी नकली?
3: नकली कैसे हो गया?
1: अरे मैंने तो कई लोगों से पता करवाया,
3: सभी
1: ने बोला कि नकली है।
8: महाराज की जय। महाराज की जय। महाराज की जय।
0: शांत, क्या समस्या है? आप सब इतने व्याकुल क्यों हैं?
1: महाराज क्षमा करें, हम सभी के मन में एक दुविधा है महाराज, यदि आप आज्ञा दें तो हम पूछ लें महाराज।
0: कहिए, मेरी आज्ञा है, आप सभी निसंकोच कहिए।
1: जी धन्यवाद महाराज, धन्यवाद महाराज। महाराज हमने इन हीरों की जांच जौहरी से करवाई थी महाराज, लेकिन पता चला कि सारे हीरे तो नकली हैं महाराज।
0: क्या? और कोई शंका?
1: जी जी नहीं महाराज, आपने हमें जो भी दिया वो तो हमारे लिए उपहार ही है, बस केवल यही प्रश्न था महाराज, आपने ऐसा हमारे साथ क्यों किया महाराज?
0: ठहरिए, मैं समझाता हूँ। आप सबने मेरे प्रश्न का झूठा उत्तर दिया, इसलिए हीरे भी आपको नकली दिए गए, पर इस नौजवान ने सीधा साधा उत्तर दिया, इसलिए इसे

0: और मेरे बाद यही मेरे बेटे का विश्वस्त सलाहकार होगा।
1: महाराज की
2: जय।
1: महाराज की
2: जय।
1: महाराज की
2: जय।
0: साथियों, अभी आपने सुना कार्यक्रम नकली हीरे। आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। जरा सोचिए, राजा ने दरबारियों को नकली हीरे क्यों दिए? सोचिए सोचिए। आप कहेंगे उन्होंने झूठी प्रशंसा की थी। जी बिल्कुल सही। साथियों, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी को खुश करने के लिए झूठी प्रशंसा हम ना करें। यदि कोई बात अच्छी है तो उसकी प्रशंसा जरूर करनी चाहिए, लेकिन बढ़ा चढ़ाकर नहीं। और हाँ, याद रखिए, किसी की प्रशंसा करने में बहुत अधिक समय नहीं लगता, लेकिन उसका प्रभाव बहुत सकारात्मक होता है।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नकली हीरे। कार्यक्रम समन्वयक प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वनि अंकन मंजू कुमारी, कलाकार चांद मोहम्मद और मोहम्मद शमीम खान, मार्गदर्शन विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन और निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नकली हीरे।
5: मैं एक नन्ही बच्ची हूँ, प्री स्कूल में जाती हूँ। अलर्ट हूँ मैं।

तो सुनिए अपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्ता पूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री

0: स्कूल, क्योंकि गुणवत्ता पूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: और इस कार्यक्रम के बाद आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पोंगल।
2: ये कार्यक्रम भारत के तमिलनाडु राज्य के प्रसिद्ध त्योहार पोंगल की रोचक जानकारी देते हुए उसके पौराणिक कारणों को भी विस्तार से बताता है और इस त्योहार के मनाए जाने की परंपराओं का बखान करता है।
1: पोंगल।
3: भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय किसान का जीवन प्रकृति से जुड़ा रहता है। वो प्रकृति के साथ ही हंसता रोता है, नाचता गाता है। बुआई, सिंचाई, निराई आदि खेती बाड़ी के सारे काम वो मौसम के अनुसार करता है। जब चारों तरफ हरियाली छा जाती है, वृक्ष लताएं फूलों से लद जाती हैं, तब मानव भी गुनगुनाने लगता है। जब खेत खलियान अनाज से भर जाते हैं, तब उसके पांव थिरक उठते हैं, वो उत्सव मनाने के लिए मचल उठता है। त्योहारों का जन्म यहीं से होता है। पोंगल नई फसल का त्योहार है। ये संक्रांति के दिन मनाया जाता है। तमिलनाडु का यह प्रमुख त्योहार है। ये जनवरी में मनाया जाता है। पोंगल में खेतों से सुनहरे रंग का नया धान कटकर किसान के घर आता है। गन्ने के खेत की फसल तैयार होती है। बागीचे में हल्दी का पौधा लहलहा उठता है। इन्हें देखकर किसान का मन नाच उठता है। उसके जीवन में मिठास आ जाती है। नए चावल का मीठा भात बनाकर सूर्य को चढ़ाया जाता है। इसी मीठे भात को पोंगल कहते हैं। इसी से त्योहार का नाम पोंगल पड़ा है। तमिलनाडु में पोंगल त्योहार पौष मास में आरंभ के चार दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल के पहले दिन लोग भोगी का त्योहार मनाते हैं। पूरे घर की सफाई की जाती है, इससे पर्यावरण स्वच्छ हो जाता है। भोगी के दिन शाम को बच्चे ढोल और बाजे बजाकर खुशियां मनाते हैं। पोंगल के दिन घर आंगन को रंगोली से सजाते हैं। नहा धोकर सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं। उस दिन सब कुछ नया होता है। आंगन में अंगीठी जलाकर नए बर्तन में पोंगल पकाया जाता है। बर्तन में हल्दी का पौधा बांध दिया जाता है। गन्ने के रस में नई फसल का चावल पकाया जाता है। जब चावल उबलकर ऊपर उठता है, तो उसमें दूध डाल देते हैं। दूध के साथ उफनता हुआ पोंगल बर्तन के ऊपर से उमड़ता है और चारों ओर रिसकर आंच में टपक पड़ता है। उस समय चारों ओर इकट्ठे लोग खुशी से नाच उठते हैं और जोश में चिल्लाते हैं, पोंगलो पोंगल, पोंगलो पोंगल। उन्हें प्रसन्नता होती है कि सूर्य और अग्नि ने पोंगल का भोग स्वीकार कर लिया है। लोग अपने आस पड़ोस में पोंगल बांटते हैं। उसके बाद मित्र और सगे संबंधी सब मिलकर बढ़िया भोजन करते हैं। पोंगल के दिन हर तमिल भाषी, चाहे वो भारत के किसी कोने में रहता हो, अपने घर पहुंचने की कोशिश करता है। विवाहित लड़कियां पोंगल मनाने अपने मायके आती हैं। तीसरे दिन माटू पोंगल मनाया जाता है। तमिल भाषा में माडू गाय बैलों को कहते हैं। माडू का अर्थ धन भी है। पुराने समय में गाय बैल ही हमारी संपत्ति थे। माटू पोंगल के दिन गाय बैलों को अच्छी तरह नहलाया जाता है। लोग उनके सींगों को रंगते हैं और उन्हें रंगीन कपड़ों से सजाते हैं। उनके गले में फूल मालाएं पहनाते हैं तथा उन्हें गुड़ और अच्छी अच्छी चीजें खिलाते हैं। शाम को मैदान में बैलों को दौड़ाया जाता है।

चौथे दिन कानुम पोंगल होता है। खाना बांधकर पूरा परिवार घर से बाहर निकल पड़ता है। जगह जगह मेले लगते हैं, लोग मेलों में घूमते हैं या आसपास के स्थान देखने के लिए चल पड़ते हैं।

0: इस तरह चारों दिन लोग अपने दैनंदिन कामों से छुट्टी लेकर इस त्योहार का आनंद लेते हैं। खेती से संबंधित यह त्योहार पूरे भारत में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। गुजरात से लेकर बंगाल तक लोग इसे संक्रांति के नाम से मानते हैं। महाराष्ट्र में ये तिल गुड़ का त्योहार है। लोग एक दूसरे को तिल गुड़ देकर कहते हैं, तिल गुड़ घ्या गोड़ बोला, तिल गुड़ घ्या गोड़ बोला, अर्थात तिल और गुड़ खाओ और मीठा बोलो। पंजाब में संक्रांति से एक दिन पहले लोहड़ी का त्योहार मनाते हैं। लोहड़ी का अर्थ है छोटी या छोटी संक्रांति। अरुणाचल प्रदेश में पानुंग का त्योहार भी इसी समय मनाया जाता है। विविधता में एकता भारत की विशेषता है। एक ही त्योहार को लोग विविध रूपों में मनाकर भारत की सांस्कृतिक एकता को मजबूत बनाते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोंगल।

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है, तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार,
2: नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: एक जमाने से कहा

0: कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। इस वक्त अपराह्न के 3 बजे हैं। हमारी पहली सभा अब यहीं संपन्न होती है। अपने संध्याकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ शाम के 5 बजे हम पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

हेलो सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और श्रोताओं को आरती श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, जब हम किसी से मिलते या बात करते हैं तो उस व्यक्ति के बारे में, उसकी सोच के बारे में पता करने के लिए एक छोटी सी मुलाकात ही काफी होती है। वो एक छोटी सी मुलाकात अक्सर ताउम्र के लिए हमें एक प्यारा सा दोस्त दे जाती है। बेपरवाह अल्हड़ सवालों और जवाबों से परे होती है ये मुलाकात। कई बार तो रोज रोज मिलने वालों से वो दिल की बात नहीं हो पाती जो एक छोटी सी मुलाकात से बने दोस्त से हो जाती है। इन छोटी छोटी मुलाकातों से ही रिश्ते उम्र दराज होते हैं। तो हाँ, मुलाकातों का सिलसिला चलते रहना चाहिए और हर मुलाकात के लम्हों की अहमियत को समझना चाहिए, क्योंकि इन छोटी छोटी मुलाकातों की यादों से पूरा जीवन खुशबू से भर जाता है। तभी तो हमें भी रहता है ना इस छोटी सी मुलाकात का इंतजार, जो हेलो सहेली के माध्यम से हमें हमारी सखियों से मिलवाती है और दे जाती है यादों में सहेजने वाले ढेर सारे खूबसूरत पल। तो खत्म हुआ इंतजार, देखते हैं कौन और कहां से है आज की हमारी पहली कॉलर।

0: हेलो
1: हेलो सहेली।
0: हेलो सहेली, नमस्कार मैम।
1: नमस्कार, कौन बोल रही हैं?
0: मैं भावना बोल रही हूँ, आदमपुर हिसार से, हरियाणा से। हाँ
1: अच्छा, हरियाणा से बोल रही हैं आप। तो बताइए, आप क्या
0: जी मैम।
1: करती हैं?
0: मैं घर पे ही अपना बुटीक है मेरा, मैं
1: ओहो,
0: सिलाई करती हूँ।
1: यानी आपका
0: हाँ
1: बढ़िया
0: जी
1: कपड़ों का है ना?
0: हाँ जी
1: तो इस समय अच्छा चल रहा है?
0: और हाँ जी
1: आप महिलाओं के कपड़े केवल बनाती हैं या सब मिक्स?
0: हाँ जी महिलाओं के बनाती हूँ मैम, बच्चों के और महिलाओं के, सारी
1: अरे वाह,
0: गारमेंट्स बनाती हूँ मैम।
1: बहुत अच्छी बात है, आप अपना खुद का काम कर रही हैं। और
0: हाँ
1: बताइए,
0: जी मैम,
1: आप आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: मैं सुनना चाहूंगी आज तेरा मेरा साथ है फिल्म का, तेरा मेरा साथ है,
1: बहुत प्यारा
0: यही
1: गाना है,
0: गाना।
1: तो चलिए सुनवाते हैं आपको ये वाला गीत।

0: इस समय अच्छा चल रहा है?
1: हाँ जी
0: आप महिलाओं के कपड़े केवल बनाती हैं या सब मिक्स?
1: हाँ जी, महिलाओं के बनाती हूँ मैम, बच्चों के और महिलाओं के, सारी
0: अरे वाह,
1: गारमेंट्स बनाती हूँ मैम।
0: बहुत अच्छी बात है, आप अपना खुद का काम कर रही हैं। और
1: हाँ
0: बताइए,
1: जी
0: आप आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैं सुनना चाहूंगी आज तेरा मेरा साथ है फिल्म का, तेरा मेरा साथ है,
0: बहुत प्यारा
1: यही
0: गाना है,
1: गाना।
0: तो चलिए सुनवाते हैं आपको ये वाला गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली मैम, नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बोल रही हैं आप और कहाँ से?
1: हम स्वाति सिंह बोल रहे हैं, मनकापुर गोंडा उत्तर प्रदेश से बात कर रहे हैं आपसे।
0: जी अच्छा, तो आप बताइए अब कि आप क्या कर रही हैं?
1: मैम हम पढ़ाई तो पूरी कर चुके हैं, आईटीआई कर रहे हैं और मैम घर का काम करते हैं और आपका प्रोग्राम सुनते हैं। रेडियो सुनने का शौक बहुत ज्यादा है।
0: अरे वाह, बहुत ही अच्छा शौक है आपका। और
1: हाँ
0: तो आप जो पढ़ाई कर रही हैं उसमें आपको अच्छा पूरा इंटरेस्ट आता है, पूरी दिलचस्पी रहती है उसमें?
1: हाँ मैम रहती है, लेकिन इस समय गर्मी ज्यादा हो रहा है मैम, तो कहीं आना जाना नहीं हो पा रहा है, बस घर पे ही अपना तैयारी कर रहे हैं।
0: तो आपको मिल जाता है समय रेडियो सुनने का?
1: मैम मिल जाता है। मैम आज बहुत दिनों से ट्राई कर रहे थे तो आज आके मेरा कॉल लग गया, मेरा इंतजार खत्म हो गया। बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके।
0: बधाई हो आपको बहुत ज्यादा। और आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए और साथ ही रेडियो भी सुनते रहिए। और आप अपने पसंद का कोई गीत बताइए जो आप सुनना चाहती हैं।
1: मैम मूवी का नाम है इज्जत और गाने की बोल है, क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फिक्र छिपी रहे।
0: अच्छा, अरे वाह, बड़ी अच्छा गाना है।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली, मैं
0: कौन बोल रहा है?
1: बरगढ़ जिला उड़ीसा से सन प्रभाकर बोल रही हूँ।
0: अरे वाह, उड़ीसा से बोल रही हैं आप। तो बताइए, आप क्या करती हैं?
1: जी मैं तो घर में हूँ, अभी तो शादी नहीं हुई और घर का काम काज करती हूँ और
0: तो
1: सभी कार्यक्रम सुनती हूँ, आकाशवाणी के सभी केंद्रों के कार्यक्रम सुनती हूँ।
0: पढ़ाई आपने करी है? पढ़ाई करती हैं
1: हाँ
0: आप?
1: पढ़ाई तो खत्म है, मेरी कब से मेरी पढ़ाई खत्म हो गई है।
0: अच्छा, तो बताइए आपने क्या किया है?
1: मैं 10वीं पास हूँ जी,
0: अच्छा
1: 10वीं पास।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: जी अभी अभी तो हमारे जो सिंगर है सुमन कल्याणपुर जी, उनका निधन हो गया
0: जी
1: है,
0: जी
1: तो
0: हाँ,
1: उनकी याद में एक गाना सुनेंगे। उनकी आवाज में तो जो भी उनके जो भी फिल्में हैं,
0: जी
1: मुझे तो याद नहीं फिल्मों के नाम, तो एक बढ़िया सा गाना उनकी याद में दे दीजिए।
0: बिल्कुल, मैं सुमन कल्याणपुर जी का ही मैं आपको एक गीत सुनवाती हूँ प्यारा।

0: अंतराल के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम हेलो सहेली में। तो देखते हैं कौन और कहां से है हमारी सखी जिनका कॉल लगा है अभी। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: आप पहले तो अपना नाम बताइए और फिर अपने शहर का नाम।
1: मैं इंदौर से ललिता मंडली।
0: अच्छा ललिता जी इंदौर से बोल रही हैं, तो बताइए आप क्या करती हैं?
1: मैं अभी हाउसवाइफ हूँ
0: जी। तो अभी इस समय गर्मियों के दिन चल रहे हैं, तो आप क्या करती हैं गर्मियों से थोड़ा सा राहत पाने के लिए?
1: गर्मियों से राहत पाने के लिए अपने पारंपरिक तरीके, नींबू शरबत।
0: बढ़िया।
1: और दिन में धूप में तो निकलना।
0: ये तो बहुत अच्छा।
1: ज्यादा जरूरत है धूप में निकलना तो फिर डॉक्टर जाना।
0: हाँ तो आपके घर में कौन कौन है?
1: मेरे परिवार में हम पति पत्नी और दो बच्चे हैं मेरे।
0: बच्चे छोटे हैं कि बड़े? बच्चे छोटे हैं आपके?
1: बड़े हो गए।
0: बड़े हैं, चलो तब सही है, परेशान नहीं करते होंगे आपको ज्यादा।
1: बड़े हो गए तो ज्यादा परेशान करते हैं।
0: अच्छा अच्छा, ऐसा है। ऐसा भी होता है कि छोटे बच्चों के पीछे पीछे भागो और बड़े बच्चों के भी पीछे पीछे भागो। जी बिल्कुल। तो आप
1: से बात करके बहुत आनंद आ रहा है मैम, आपसे पहली बार बात हो रही है मेरी।
0: अच्छा जी, तो आप बताइए कि आप जैसे कि अपने जो बच्चे हैं उनको आप जो गर्मियों के दिनों में बढ़िया बढ़िया नींबू के शरबत और बढ़िया बढ़िया चीजें बना बना के देती हैं?
1: देती हूँ, एक ऑफिस आता है तो उससे थोड़ा कम समय दे पाते हैं, सुबह 9 बजे निकल जाता है।
0: अच्छा,
1: तो रात को आता है 9 बजे। छोटा वाला रहता है तो हम दोनों माँ बेटे मजे करते हैं।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है फिर तो। क्या नहीं क्या, अच्छा टाइम अपना निकलता होगा आपका। तो आप बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैं अनिल कपूर की फिल्म है कसम, उसका शीर्षक गीत सुनना चाहती हूँ। कसम क्या होती है, कसम क्या होती है, जो तोड़ी ना जाए, जो छोड़ी ना जाए।
0: चलिए ठीक है, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: आप बताइए कौन बोल रही हैं और कौन से शहर
1: मैं
0: से?
1: रेखा वर्मा बोल रही हूँ। मैं उज्जैन से।
0: अच्छा, रेखा जी बोल रही हैं उज्जैन से। तो बताइए रेखा जी, आप क्या करती हैं?
1: मैम हाउस वाइफ हूँ।
0: अच्छा, तो आपके परिवार में कौन कौन है?
1: मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड, मेरी सासू माँ, एक लड़की है मेरी और एक बेटा है। अभी बेटे की शादी हुई है।
0: अरे
1: बहू
0: वाह,
1: भी है।
0: यानी आप भी सासू माँ बन चुकी हैं ना?
1: जी, मैम अभी 2-3 महीने हुए हैं।
0: अरे वाह, तो आप कैसी सासू माँ है, कड़क वाली कि अच्छी वाली?
1: नहीं,
0: नहीं, आप अच्छी वाली होंगी, आपकी आवाज से मुझे लग रहा है ऐसा कुछ। तो आप बताइए कि आपको क्या करना अच्छा लगता है दिन में, मतलब अपने लिए जो समय बचता है उसमें आप क्या करना पसंद करती हैं?
1: मैम हम लोगों को तो घूमना अच्छा लगता है और शाम की टाइम तो हम रोज घूमने जाते हैं। मेरे साथ वाली फ्रेंड है बराबरी की।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है।
1: हम रोज मतलब खाना खाने के बाद हम निकल जाते हैं साथ में घूमने के लिए।
0: चलिए, इतनी अच्छी बात है ना, क्योंकि अपने दोस्त का जब साथ मिल जाता है ना, तो समझिए फिर तो
1: जी
0: आप
1: मैम,
0: थोड़ा वॉक भी हो जाती है इस बहाने आपकी, और आपकी बातें भी हो जाती हैं, तो आपका जो तनाव भी
1: जी
0: थोड़ा बहुत रहता है ना, वो भी खत्म हो जाता है। तो बहुत
1: हाँ
0: बहुत ही
1: बिल्कुल
0: अच्छा आप करती हैं जो ये वॉक करती हैं, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ वॉक करती हैं।
1: जी, इसलिए मैम अच्छा लगता है उनके साथ। और अब थोड़ा टाइम और मिल जाता है, घर पे बहू आ गई तो अब टेंशन फ्री है थोड़े से। जी
0: बिल्कुल, यानी कि आप किसी सास हैं और आप भी किसी की सास
1: हाँ
0: हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मुझे राजा और रंग मूवी का सुनना है मैम। तू कितनी प्यारी है, तू कितनी भोली है। तू
0: अरे वाह, क्या प्यारी सी पसंद है आपकी। तो सुनवाते हैं आपको ये आपका पसंद का गीत।
2: कितनी अच्छी,

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: तो बताइए आपका नाम पहले और अपने शहर का नाम।
1: मैं बोल रही हूँ भगवती सोलंकी, दिल्ली से।
0: दिल्ली से बोल रही हैं आप। तो बताइए आप क्या करती हैं।
1: मैं हाउसवाइफ हूँ।
0: अच्छा, यानी आप जो चार दीवारें हैं ना उनको घर बनाती हैं।
1: हाँ जी।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आपकी
1: वो तो संभालना जरूरी है ना, घर में तो सबसे
0: बिल्कुल
1: मैंने सब बाहर ही जाएंगे तो घर को ही कौन संभालेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा ना आप चार दीवारों को घर बनाती हैं। तो आपके परिवार में कौन कौन है।
1: मेरे परिवार में है, मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है, मेरे बेटे, दो बेटे हैं, बहू है, मेरी एक पोती है 6 साल की।
0: अरे वाह, यानी आप सास भी बन चुकी हैं और दादी भी बन चुकी।
1: हाँ जी, दादी भी बन चुकी हूँ।
0: जी तो बताइए आप अपना जो समय रहता है, कोई खाली समय रहता है जो, उसमें आप अपना समय बिताने के लिए क्या करती हैं।
1: सबसे पहले तो मेरा का शौक है म्यूजिक सुनना, तो
0: बेस्ट
1: मेरा रेडियो चालू हो जाता है, रामायण से चालू होता, भूले बिस्तर संगीत सरिता, भूले बिस्तर गीत, ये सारा प्रोग्राम चलता रहता, सुन किचन में चलता रहता, मैं काम करती रहती हूँ।
0: बहुत बहुत अच्छी बात है ये। संगीत में अगर रुचि है ना आपकी तो समझिए आपका जीवन
1: हाँ,
0: बहुत बहुत बहुत शांत है, बहुत अच्छा है।
1: हाँ, और फिर गुनगुनाती भी हूँ और गाने भी सुनती हूँ। फिर मुझे घर का काम करना, साफ सफाई करना मुझे बहुत पसंद है,
0: ये अच्छी चीज है।
1: और हाँ, और दूसरा सबसे बड़ा है मुझे पौधे लगाना घर में। मैंने अपने आगे पीछे बालकनी में मैंने पेड़ ही करीब कम से कम 30-35 पेड़ लगाए हुए हैं गमलों में सब में।
0: अरे वाह,
1: सबसे ज्यादा तो मैंने गुड़हल लगाया हुआ। मेरे घर में तुलसी इतनी है कि मेरे से भी बड़ी तुलसी का पेड़ है।
0: अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। देखिए जिस तरीके से पर्यावरण दिवस भी है और आपने इतनी अच्छी
1: हाँ।
0: बात कही है कि आप पौधे लगा रही हैं, यानी कि सोचिए आप कितना अच्छा कर रही हैं।
1: मेरा पिया जो है जबलपुर का है
0: जी,
1: तो हाँ जबलपुर में है, तो जबलपुर में भी हम बचपन से इतने पौधे लगा के आए कि अब हम बाद में जाते रहे तो वहाँ पर हमें शरीफा इतना पेड़, अमरूद, शरीफा, सहजन की फलियाँ, इतने पौधे में पेड़ मतलब फल लगते रहे कि मुझे देख के खुशी होती थी। मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज अपने आसपास हरियाली बना के रखो, जो समय हमारी जीवन देते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं।
1: गाना सुनूंगी जागो साइड पान का, नाचो तू बंसी बजा। हाँ
0: जी बिल्कुल, सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

सखियों, अब कार्यक्रम हेलो सहेली में हो चला है समय एक अंतराल का, तो मिलते हैं इस अंतराल के बाद।

0: अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का प्यार भरा स्वागत करती हूँ मैं यानी कि आरती श्रीवास्तव। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, बताइए आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: मैं पूर्णिमा बोल रही हूँ
0: जी,
1: पूर्णिमा सरगम, अभी तो तेलंगाना में रह रही हूँ।
0: अच्छा,
1: गाने सुनती रहती हूँ।
0: आप बताइए क्या करती हैं आप?
1: कुछ भी नहीं, अभी तो सिर्फ मेरी बच्ची को संभालती हूँ।
0: कितना छोटा है आपका बच्चा?
1: अभी 2 साल की हुई है।
0: ओह, इतनी छोटी सी है। तब तो आपको बहुत भाग दौड़ करते रहना पड़ता होगा उसके पीछे।
1: वो ज्यादा नहीं कर पाती, पर मैं फिर भी उसके पीछे भागती हूँ।
0: जी बिल्कुल, छोटे बच्चों का तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है जी।
1: हाँ, समझदार है, ज्यादा परेशान नहीं करती,
0: यानी अच्छी बच्ची है।
1: हाँ।
0: जी तो बताइए आपको क्या करना अच्छा लगता है, अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम बचता है?
1: डांस करना अच्छा लगता है, म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है।
0: तो आप अपना डांस करती हैं या ऐसी अपनी, मतलब आप छोड़ रखा है इस समय?
1: अभी ये छोटी है इसलिए छोड़ रखा है, बाकी मैं करती ही हूँ। मैं क्लासिकल डांस टीचर भी रह चुकी हूँ।
0: अरे वाह, बहुत बहुत अच्छी बात है। तो आपने सीखा हुआ यानी कि क्लासिकल?
1: जी, मैंने कथक सीखा हुआ है, भरतनाट्यम भी सीखा हुआ है।
0: अरे अरे वाह, बहुत बहुत बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो मुझे
1: हाँ।
0: ये जो नृत्य की जो कला होती है ना, ये जो आप सीख लेते हैं तो हमको इतना एकदम तरोताजा रखती, कोई परेशानी हमें एकदम आसपास भी नहीं आती, क्योंकि हम इतने ज्यादा उसमें खो जाते हैं ना, सारी परेशानियों का हल हमें अपने संगीत में मिल जाता है। तो
1: बीमारी सही कर दे, डांस बिल्कुल, और म्यूजिक तो ऐसी चीज है।
0: जी एकदम फिट भी रहते हैं उसकी वजह से।
1: हाँ, फिट भी रहते हैं बहुत।
0: जी तो आप बताइए आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आप?
1: मैं कभी कभी मूवी का लता मंगेशकर की आवाज में मेरे घर आई एक नन्ही परी।
0: अच्छा, आपके घर एक नन्ही परी आई है। तो उसको सुनाने के लिए हम आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: जी, मैं रत्ना बोल रही हूँ,
0: हाँ
1: रत्ना सिन्हा।
0: अच्छा, रत्ना जी बोल रही हैं, कहाँ से?
1: बाराबंकी से
0: तो आप थोड़ा बताएंगे अपने बारे में, आप क्या करती हैं?
1: जी। मैं ऐसे तो हाउस वाइफ हूँ,
0: जी
1: मगर मेरा म्यूजिक के प्रति इंटरेस्ट काफी रहा है।
0: जी और वैसे तो हाउसवाइफ क्यों है यार, परी गर्व से कही हाउसवाइफ है क्योंकि हाउसवाइफ का काम बहुत ज्यादा होता है, 24 घंटे का काम होता है
1: बिल्कुल, बिना रुके बिना थके जी
0: बिल्कुल, और काम करती रहती है, और सब पूरे फैमिली, पूरा समझ लीजिए सारी फैमिली उनके ऊपर निर्भर होती है।
1: और ऐसा कि पूरी फैमिली के साथ एंजॉय करते हुए
0: बिल्कुल।
1: जो है।
0: आपके परिवार में कौन कौन है?
1: मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड, दो बेटे हैं, बहू है, पोती है छोटी
0: बहुत बढ़िया तब तो आप पोती
1: सी
0: के साथ खेलते खेलते आपका समय निकल जाता होगा अच्छे से
1: जी।
0: तो
1: बड़ी
0: बताइए
1: इज्जत।
0: जी, तो आप बताइए, आपको पेड़ पौधों का शौक है?
1: जी बहुत बहुत पेड़ पौधों का शौक है, मतलब सुबह शाम पेड़ पौधों को निहारना, देखना, पानी वानी डालते हैं
0: अच्छा, आपने लगा रखे
1: और
0: हैं?
1: जी हाँ लगा रखे हैं, और चिड़ियों के लिए दाना है, पानी है, ये सब भी
0: अरे वाह, बहुत
1: रखते हैं
0: बहुत अच्छी बात है, गर्मियों के दिन में सोचिए वो चिड़िया पक्षी उड़ रहे हैं, उनको कहाँ से
1: हाँ
0: दाना पानी के लिए आपने उनका इंतजाम किया, बहुत अच्छी बात है ये।
1: जी। चिड़ियों
0: और साथ
1: की चहचहाट सुबह सुबह बहुत अच्छी लगती है
0: वही तो, हम जैसे अगर उनको पानी देते हैं या दाना कुछ उनको खाने के लिए रखते हैं ना, तो वो भी तो बदले में हमें अपनी चहचहाट देती हैं, अपनी खुशियां देती हैं ना
1: खुश होती
0: तो
1: हैं सब।
0: बिल्कुल।

0: आती हैं, सब खेलती
1: जी,
0: हैं, जो
1: जब
0: बड़ा
1: वो
0: अच्छा
1: चहचहाती
0: लगता
1: हैं तो हमारे आंगन में एकदम खुशियां बिखर जाती हैं, है ना।
0: है। जी।
1: तो आप बताइए, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: अभिमान फिल्म का गीत है, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी।
1: बहुत अच्छा गीत है ये, और सुनवाते हैं आपको ये आपके पसंद का गीत।

0: जी, तो आप बताइए पहले तो अपना नाम और अपने शहर का नाम।
1: मेरा नाम शीला निको से है। मैं
0: तो आप कहाँ से हैं?
1: चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट वरोरा महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ।
0: अच्छा, चंद्रपुर से बात कर रही हैं आप। तो बताइए आप क्या करती हैं?
1: मैं हाउस वाइफ हूँ मैडम,
0: अच्छा,
1: घर में रहती हूँ और दृष्टिहीन हूँ मैं।
0: तो आप बताइए कि आपको क्या करना अच्छा लगता है, जो आपको
1: मुझे
0: बहुत
1: गाना सुनना अच्छा लगता है।
0: गाना सुनना अच्छा लगता है आपको, और गाना गाना अच्छा
1: जी
0: लगता है?
1: हाँ, गाना गाना भी अच्छा लगता है, गाना सुनना भी अच्छा लगता है।
0: तो बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आज?
1: मुझे जाग्वर फिल्म का वो गाना सुनना है, तुझको ना देखूं तो दिल घबराता है।
0: तुझको ना देखूं तो दिल घबराता है, तो आपको सुनवाते हैं जानवर फिल्म का ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, तो बताइए आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं।
1: मैं उड़ीसा गंजाम जिला से बोल रही हूँ।
0: जी, आप अपना नाम बताइए।
1: ममता दास मेरा नाम।
0: अच्छा, तो आप क्या करती हैं ममता जी?
1: मैं हाउस वाइफ हूँ।
0: अच्छा, तो और आपके परिवार में कौन कौन है?
1: घर में मैं और मेरा हस्बैंड और मेरी दो बेटियां हैं।
0: अरे वाह, दो बेटी हैं आपकी, तो बड़ी है कि छोटी है?
1: हाँ, बड़ी हो गई है, अभी पढ़ाई कर रहे हैं नर्सिंग की, बीएससी
0: अरे वाह,
1: नर्सिंग की।
0: बहुत अच्छी बात है। यानी सेवा वाली वो नौकरी कर रही है, वो पढ़ाई कर रही है जिससे कि वो सबकी सेवा कर सके, है ना? जी, तो बताइए आपको क्या करना अच्छा लगता है जब आपका खाली समय होता है तो?
1: मुझे सिलाई आती है तो मैं कभी खाली नहीं रहती, काम खत्म, घर की काम खत्म होने के बाद सिलाई कर लेती
0: बहुत
1: हूँ।
0: अच्छी बात है ये, आप अपना ये अपना जो मनपसंद काम है वो आप करती हैं, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ना हमें, हम सभी को कोई ना कोई शौक होता है, कोई ना कोई हॉबी होती है, लेकिन क्या ना हम उसको
1: हाँ
0: पूरा नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम सोचते हैं अरे घर के काम है, ये सब कर लें फिर समय कहाँ मिलता है। लेकिन आपने उस चीज़ को अच्छे से किया है, तो आप क्या क्या चीज़ें सिल
1: बहुत
0: लेती हैं?
1: खुशी हो रही है कि आज सखी सहेली पर मेरी फोन लगी। तो जून 5 में मेरी छोटी बेटी की बर्थडे है, जो जून 25 में मेरी बड़ी बेटी की बर्थडे है, तो
0: अरे वाह,
1: मुझे
0: जून में ही है दोनों बेटियों का बर्थडे।
1: हाँ, और मेरी बहन की बेटी के जून 4 में है,
0: अच्छा,
1: तो कुछ हैप्पी बर्थडे की गीत सुनाई देंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हमारी तरफ से भी उनको बहुत बहुत बर्थडे की, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं, वो खूब आगे बढ़ें और आपका नाम
1: हाँ
0: रोशन करें। जी,
1: तो
0: तो आपने बताया कि आप सिलाई कर लेती हैं, तो आप क्या क्या सिलती हैं?
1: सलवार ब्लाउज सब सिलाई कर देती
0: अच्छा,
1: हूँ।
0: सारी चीज़ें आप सिल लेती हैं। तो आपको बाहर के
1: हाँ,
0: सिले हुए कपड़े खरीदने अच्छे लगते हैं, बाहर से शॉपिंग करती हैं, या अपने घर में आपको बनाना अच्छा लगता है?
1: मुझे बनाना बहुत अच्छा
0: तो ये
1: लगता
0: तो बहुत अच्छी बात है, तो बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: है। जो सुजाता फिल्म का गीत है ना,
0: सुजाता का कौन सा?
1: जियो 1000 साल की बात।
0: अच्छा ठीक है, तो चलिए सुनवाते हैं आपको पसंद का ये गीत।

0: आज के हेलो सहेली कार्यक्रम का समय जैसे पंख लगाकर तेजी से निकल गया। आपकी इतनी प्यारी प्यारी बातों और सुरीले गीतों की पसंद ने तो हमें बांध ही लिया और पता भी नहीं चला कि कार्यक्रम अपनी समाप्ति के मोड़ पर आ गया। तो आज की हमारी मुलाकात बस इतनी। चलते चलते आपको कुछ जरूरी जानकारी दे देते हैं। आपकी कॉल्स की रिकॉर्डिंग प्रत्येक मंगलवार सुबह 11 बजे से 12 बजे तक की जाती है और आप हेलो सहेली कार्यक्रम में इन नंबर्स पर कॉल कर सकती हैं, जो हैं 4002-4662 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। नंबर फिर से एक बार 4002-4662 और एसटीडी कोड है 022। अब आप दूसरा नंबर भी नोट कर लीजिए, जो है 2867-0288 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। फोन नंबर एक बार फिर से नोट कर लीजिए 2867-0288 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। तो इन नंबर्स पर कॉल लगाने के लिए कीजिए बस अगले मंगलवार तक का इंतजार। और हाँ, एक बात और याद दिला दें, हेलो सहेली कार्यक्रम हर शुक्रवार को 3 बजे से 4 बजे तक प्रसारित होता है, तो आपसे आग्रह है कि सुनना भूलिएगा नहीं। और हमारी जिन भी सखियों की कॉल आज नहीं लग पाई वो बिल्कुल भी निराश ना हो, आप अगले मंगलवार को एक बार फिर से प्रयास कीजिएगा। और ध्यान रहे, लगातार किए जाने वाले प्रयास कभी न कभी तो कामयाब होते ही हैं। और जिन सखियों का प्रयास आज सफल हो गया था उनसे भी हमारा प्यार भरा आग्रह है कि आप अगले 2 महीने तक कॉल नहीं लगाइए और अपनी सखियों को भी अवसर दीजिए अपनी बात कहने का। तो आपको बता दें कि आज का हेलो सहेली का सफर तय किया आपने अपनी सखी आरती श्रीवास्तव के साथ। इस सफर में हमें सहयोग मिला रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक का और संपादन में हमारी सहयोगी बनी नम्रता टिकोड़े और साथ ही विविध भारती की ओर से हेलो सहेली की प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक। तो अब आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूं मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज।

0: एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
0: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें, तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज सुनिए लक्ष्मी श्रीवास्तव की लिखी कहानी नजरिया, वाचन स्वर नेहा शर्मा का। आप आ गए? मुझे तो पता ही नहीं चला। भावना ने रसोई घर से निकलते हुए संदीप से कहा। अभी आया हूँ बस, माँ ने दरवाजा खोला। पता है तुम्हें, घंटी बजाने ही वाला था कि माँ ने दरवाजा खोल दिया, संदीप ने कहा। हाँ, खाना खिला दिया उन्हें, कह रही थी कि आप आओगे तो साथ में बैठकर खाएंगे, पर मैंने आपका ही नाम लेकर कह दिया कि उन्होंने कहा है कि माँ को जल्दी खाना खिला दिया करो, माँ के लिए लेट खाना खाना ठीक नहीं। मैंने खाना खाकर घूमने का और कह दिया, इसीलिए गई हैं, शायद थोड़ा नाराज होकर। तुमने अच्छा किया भावना, ऐसी नाराजगी सर आंखों पर। शुगर में जल्दी खाना घूमना फिरना जरूरी है और माँ इस मामले में बेहद लापरवाह है। तुमसे नाराज होती हैं तो मैं ही कह दिया करूंगा। नाराजगी में क्या कहकर गई हैं पता है? कह रही थी जो हुक्म, अब तो जैसा आप कहेंगी वैसा ही करना पड़ेगा, भावना ने हंसते हुए कहा और फिर नाटकीय अंदाज में कहने लगी, सोचो जरा क्या क्या सुनना पड़ता है हमें। खैर, कैसा रहा आज का दिन? भावना ने संदीप को पानी देते हुए पूछा। रोज की तरह ही था, बहरहाल मेरा एक सरप्राइज फेल हो गया। सोचा था इस बार तुम्हारा बर्थडे धूमधाम से मनाएंगे, शादी को 2 साल हो गए पर तुम्हें कोई सरप्राइज ही नहीं दे पाया। एक पेमेंट मिलने की उम्मीद थी पर वो अब अगले महीने के लिए टल गई, और अगले ही हफ्ते तो तुम्हारा बर्थडे है। पता नहीं क्यों जो सोचता हूँ हो ही नहीं पाता, सैलरी में तो घर का खर्च ही मुश्किल से निकल पाता है और तुम्हें ज्यादा खुशी नहीं दे पा रहा, क्या करूं? संदीप ने गहरी सांस ली। अरे ऐसा क्यों कहते हो आप? आप इतना सोचते हो वही काफी है, मुझे तो याद भी नहीं था कि मेरा जन्मदिन आ रहा है। आपको तो याद भी था, कई सारे पतियों को तो अपनी पत्नी के जन्मदिन तक याद नहीं रहते। याद है वो दीपेश जी, अपनी पत्नी से ही पूछ बैठे तुम्हारा जन्मदिन कब पड़ता है, भावना हंसकर कहने लगी। बर्थडे फिर मन जाएगा, आपका साथ है तो सब बढ़िया है।

सब बढ़िया तो है भावना, लेकिन इस मन का क्या करें? तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारा अगला बर्थडे बेस्ट होगा। मम्मी ने बताया था तुम्हें चंदेरी साड़ी लेने की बहुत इच्छा है। देखता हूँ बजट में बिठाते हैं, बर्थडे में ना सही बाद में ही सही, समझो वही तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा रहा। क्या कहा? भावना ने आश्चर्य से कहा, मम्मी जी ने बताया कि मुझे चंदेरी साड़ी लेनी है। आपको पता है मैंने जिक्र किया नहीं और मम्मी ने पहले ही कह दिया कि दीदी के लिए चंदेरी साड़ी लेनी है सबसे पहले। मम्मी जी के लिए तो हर चीज पहले उनकी बेटी के लिए आएगी फिर बहू के लिए। बहू दिन भर उनका ध्यान रखे पर उनका मन तो अपनी बेटी में ही लगा रहता है। और तो और आजकल तो उनकी एक नई सहेली बन गई है, पड़ोस में नई किराएदार आई है ना मुक्ता, उससे आजकल मम्मी जी की खूब पट रही है। दो दिन से लगातार आ रही है और जब आती है तो मम्मी जी अपने कमरे के गेट भी बंद कर लेती हैं। कल मैं चाय लेकर पहुंची तो जाने क्या बात कर रही थी, मुझे देखकर बिल्कुल चुप हो गई, जैसे मेरी बुराई कर रही हूँ, और मैं पहुंच गई। इतने में दरवाजे की घंटी बजी। भावना अब छोड़ो ये बात, लगता है माँ आ गई, मैं दरवाजा खोलता हूँ तुम खाना लगाओ। लो मैं तो टहल कर आ भी गई और यहाँ खाना भी नहीं लगा मेज पर, और कोई हमसे कहता है कि खाना जल्दी खाया करो आप, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। बेटा मैं बूढ़ी हूँ तो क्या हुआ, अच्छे स्वास्थ्य की जरूरत तो तुम दोनों को भी होनी चाहिए, माँ ने थोड़ा डांटते हुए कहा। हाँ माँ आप सही कह रही हो, आगे से ध्यान रखेंगे, संदीप ने बात को संभालते हुए कहा और भावना से चुप रहने का इशारा किया। भावना को मम्मी जी की ये बातें ताने जैसी चुभ गई और उसके मन का रेडियो

0: ये गीत गाने लगा।
1: सासु जी तो

संदीप को पूरा एहसास था कि ज्वालामुखी फटने ही वाला है। वो तैयार था। देखा आपने क्या गलत कहा था मैंने? उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए ही तो कहा था ना। फिर भी कितना सुना दिया मुझे। इतना ध्यान रखती हूँ फिर भी कोई कदर नहीं मेरी। अरे वो भी तो हमारे स्वास्थ्य के लिए कह रही थी, और तुमसे तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो तो मुझे कह रही थी भावना, संदीप ने बचाव में कहा। हाँ हाँ मैं सब समझती हूँ, वो अक्सर ऐसा ही करती हैं। कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, मेरी कमियां ही बताती रहती हैं, और दीदी की हर जगह तारीफ। मुझे तो लगता है मुक्ता से भी मेरी बुराई ही करती होंगी। भावना ऐसा क्यों सोचती हो? नजरिया बदलो अपना। नजरिया बदलने से कई बार पूरा दृष्टिकोण ही बदल जाता है। तुम्हें क्यों लगता है कि माँ तुम्हारी बुराई ही करती हैं? तुम माँ को लेकर अपने पूर्वाग्रहों से बाहर तो निकलो, तुम्हें बेहतर लगेगा। घर में थोड़ी बहुत बातें तो होती ही रहती हैं, अब इसमें इतना बुरा मानने वाली बात क्या है? माँ भी तो तुम्हारा ध्यान रखती हैं, बस उनके तरीके थोड़ा अलग हैं। अब सोचो तुम्हारी मम्मी भी तो तुमसे कितना प्यार करती हैं, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि वो अपनी बहुओं से प्यार नहीं करती। तुम परीक्षा की तैयारी कर सको इसलिए तो माँ तुम्हारा काम में हाथ भी बटा देती हैं, और इस पर थोड़ा बहुत डांट भी देती हैं तो टाल दिया करो, संदीप ने समझाते हुए कहा। मुझे पता था आप यही कहोगे, हमेशा की तरह। आजकल तो मम्मी जी अपनी सहेली के साथ व्यस्त रहती हैं, तो पूरा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। पढ़ाई कैसे हो? तो पढ़ाई होगी भी कैसे, पूरा ध्यान तो तुम्हारा माँ पर ही लगा रहता है। हाँ मुझे जो लगा कह दिया, भावना गुस्से में बोली। अच्छा अच्छा तुम नाराज मत हो मेरी प्रिये, तुम गलत सोचती हो। सही सोच रखो, जब तुम्हारी मम्मी घर पर कहती हैं कि पहले मेरी बेटी के लिए ये चीज आएगी, तब तो तुम खुश होती हो, और माँ वो बात कहें तो बुरी लगती हैं। मेरी मम्मी की बात तो आप ही ना करें, वो ऐसी नहीं है। वो तो मेरी भाभी का बहुत ध्यान रखती हैं, पलकों पर बिठाती हैं उन्हें। ऐसा तुम्हें लगता है, थोड़ी बहुत बातें तो उनकी भी होती ही होंगी। छोड़िए इस बात को, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती, ये तो मन की बात है। प्यार तो दिल तक पहुंच ही जाता है, अगर उनके मन में मेरे लिए स्नेह होगा तो पहुंचेगा। भावना आज तुम्हें गुस्सा आ रहा है, लेकिन एक दिन जरूर तुम्हें एहसास होगा कि मैं सही कह रहा था। बस समय रहते तुम्हें एहसास हो जाए।

अगले दिन भावना ने अपने मूड को ठीक किया। नया दिन, नई शुरुआत। मम्मी जी को चाय नाश्ता दिया। संदीप नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल चुका था। सब्जी अक्सर मम्मी जी ही बनाया करती थी, रसोई में भावना का पूरा साथ देती, लेकिन आज सुबह से ही उन्होंने मना कर दिया था। भावना, जो मन हो वो सब्जी बना लेना, मैं नहीं बना रही। और नाश्ता करके अपने कमरे में चली गई। और तो और, आज तो पूजा भी उन्होंने जल्दी जल्दी कर ली थी। थोड़ी ही देर में दरवाजे पर दस्तक सुनाई पड़ी। मम्मी जी अपने कमरे से तेजी से आई, जैसे वो इस आने वाले का इंतजार ही कर रही थी। दरवाजा खोला, भावना ने देखा मुक्ता। लो, आज तो ये सुबह से ही आ गई। दोनों अंदर कमरे में गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। भावना का सिर चकरा गया। ऐसी भी क्या बात, मम्मी जी का पूजा पाठ में भी मन नहीं लग रहा, इतनी गपशप की लालसा। हे राम, ये मम्मी जी को जाने क्या होता जा रहा है। उस दिन शाम की चाय पीकर ही मुक्ता अपने घर गई। देर शाम जब संदीप घर आया तो समझ गया कि

आज भी भावना का मूड कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है। जैसे ही उन्हें एकांत मिला, उसने भावना से पूछ लिया, अब आज क्या हो गया? आज तो मुक्ता सुबह से ही घर आ गई थी, शायद मम्मी जी ने ही बुलाया था, और शाम की चाय पीकर ही घर गई। आज भी मम्मी जी ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया था। दोपहर के समय तो खाना खाने के बाद मैं और मम्मी जी रोज रेडियो पर अपना पसंदीदा कार्यक्रम सुनते हैं। तुम्हें पता है, मम्मी जी का साथ देते देते मुझे भी रेडियो सुनने की आदत हो गई है। रेडियो सुनते सुनते मेरी पढ़ाई भी अच्छी हो जाती है। पर आज तो वो सखी सहेली सुनने भी नहीं आई। मैंने उन्हें बुलाया, फिर भी नहीं आई। कहा रात में सुन लूंगी या फिर कल सुनेंगे। तुम मुझे पहले बताओ, तुम्हें क्या बुरा लग रहा है, मुक्ता का आना या माँ का तुम्हारे साथ समय नहीं बिताना या सखी सहेली उनके साथ नहीं सुन पाना? संदीप ने शरारत भरी मुस्कुराहट से पूछा। सब कुछ, मम्मी जी ने ऐसा अब तक कुछ नहीं किया। हम एक दूसरे पर कितना ही नाराज हों, पर हमें एक दूसरे की आदत हो गई है। तुम्हें कहीं मुक्ता से जलन तो नहीं हो रही है? संदीप ने चुटकी ली। मेरी जीवन संगिनी, ओ मेरी अर्धांगिनी, अपने दिल को बड़ा करो, संदीप ने नाटकीय अंदाज में कहा। और माँ से नहीं, मम्मी जी से कहो, जाइए मम्मी जी, जी लीजिए अपनी जिंदगी। और फिर थोड़ा संजीदा होकर कहने लगा, वैसे माँ के प्रति तुम्हारा ये स्नेह देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपको क्या लगता है, मैं कोई उनके दुश्मन थोड़े ही हूँ? आखिर उन्होंने मुझे आपको जो दिया है। वाकई में? संदीप ने प्यार भरे अंदाज में कहा और दोनों खिलखिला पड़े।

अगले दिन रोज की ही तरह संदीप ऑफिस के लिए निकल गया। मम्मी जी कुछ शांत सी थीं, अपने रोजमर्रा के कामों में लगी हुई थीं। भावना को उनकी शांति चुभ रही थी। वो कुछ ना कुछ कोई ना कोई बात निकलवाती, पर मम्मी जी हाँ हूँ सा छोटा सा जवाब देकर चुप हो जाती। फिर वही शांति। दोपहर के बाद मम्मी जी के फोन की घंटी बजी और वो फोन लेकर अंदर चली गई। जब बाहर आई तो भावना ने कौतूहल से पूछा, क्या दीदी का फोन था? पर मम्मी जी ने कोई जवाब ही नहीं दिया। भावना को बड़ा बुरा लगा, ये मेरे साथ ऐसा क्यों व्यवहार कर रही हैं? मैंने ऐसा क्या किया है? खैर अब मैं भी इन पर ध्यान नहीं

दूंगी। अपना काम कर दिया, बाकी उन्हें जो करना है करें। मैं तो मन लगाकर पढ़ाई करूं जिससे मेरी सरकारी नौकरी लग जाए, फिर इन्हें मेरी कदर होगी। और भावना ने ये सोचकर अपने सारे काम निपटाकर पढ़ाई करने बैठ गई। अगले कुछ दिन घर का माहौल ऐसा ही रहा। दिन गुजरे और वो खास दिन आ गया। आज भावना का जन्मदिन है। माँ ने सुबह सुबह भावना के बेडरूम का गेट खटखटाया। भावना जाओ दरवाजा खोलो, लगता है माँ आई है तुम्हें विश करने। इतने सुबह कौन विश करता है, बर्थडे के दिन भी चैन से सो नहीं सकते, भावना ने खींचते हुए कहा। संदीप ने नींद में ही कहा, तुम्हें पता है ना माँ हमें यूं ही सुबह सुबह चाय पिलाकर विश करती हैं। देखना तुम्हारे लिए स्पेशल वाली चाय भी लाई होंगी। मैंने कहा तो था तुमसे माँ हम में फर्क नहीं करती। ठीक है मम्मी जी के श्रवण कुमार, खोलती हूँ दरवाजा, भावना ने उठकर दरवाजा खोला। अरे मम्मी जी आप इतनी सुबह, हैप्पी बर्थडे बेटा, हमेशा खुश रहो। मैंने सोचा रोज तुम चाय पिलाती हो तो आज तुम्हारे बर्थडे के दिन मैं चाय पिला दूं तुम्हें। ये लो गर्मा गर्म चाय, संजू के लिए नहीं बनाई, सिर्फ तुम्हारे लिए ही बनाई है। भावना ने मुस्कुराकर चाय की प्याली अपने हाथ में लेकर टेबल पर रख दी और मम्मी जी ने भावना को प्यार से गले लगा लिया। फिर उन्हें भावना थोड़ी असहज लगी तो वो कहने लगी, अरे बेटा माफ करना, तुम्हें विश करने की उत्सुकता में मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मैंने तुम्हें बहुत जल्दी जगा दिया। ठीक है तुम आराम करो। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मैं तो उठ ही गई थी, आशीर्वाद दीजिए। और भावना ने ये कहकर उनके पैर छू लिए। मम्मी जी ने आशीर्वाद दिया।

माँ मेरे स्पेशल वाली चाय कहाँ है? बस भावना को पिला दी, संदीप ने माँ को छेड़ते हुए कहा। वो तुम्हारे जन्मदिन पर मिलेगी, माँ ने हंसते हुए जवाब दिया।

इतने में भावना चाय और नाश्ता लेकर आ गई। मम्मी जी, वाकई आपकी स्पेशल वाली चाय का कोई जवाब ही नहीं। और संदीप को देखकर बोली, लीजिए आप ये चाय पीजिए। पारिवारिक खुशनुमा वातावरण में सबने मिलकर चाय नाश्ता किया। भावना आज खुश थी, एक तो जन्मदिन की खुशी और उस पर मम्मी जी का प्यार भरा बर्ताव जिसकी उसे हमेशा से चाह थी। मन ही मन सोच रही थी, बस आज दिन भर मम्मी जी ऐसी ही प्रेम वर्षा करती रहें और वो मुक्ता ना आए, बस मन गया मेरा जन्मदिन। इससे ज्यादा की मुझे उम्मीद भी नहीं है, यही बहुत है। संदीप को छुट्टी नहीं मिल पाई थी, सो वो ऑफिस के लिए चला गया। इधर भावना अपने कामों में लग गई, पर मम्मी जी का ध्यान दरवाजे की घंटी पर ही लगा था। और दोपहर ढलते दरवाजे की घंटी बजी। भावना कुछ काम कर रही थी, सो उसने मम्मी जी से कहा, मम्मी जी कोई है दरवाजे पर, क्या आप देख लेंगी? लेकिन मम्मी जी जानबूझकर अपने कमरे में चली गई, जैसे कुछ सुना ही ना हो। अब भावना को गुस्सा आना लाजमी था। मन ही मन बुदबुदाई, काम कर रही हूँ पर नहीं कि दरवाजा भी मैं ही खोलूं, बाकी सब तो बहुत बिजी हैं। उसने दरवाजा खोला, उसके चेहरे का गुस्सा मुस्कुराहट में तब्दील हो चुका था। एक फूलों का गुलदस्ता और एक पार्सल, दोनों साथ में। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मम्मी जी दूर से उसे ताक रही थी। भावना बेहद खुश थी, खुशी खुशी मम्मी जी को बताया, मम्मी जी देखिए इन्होंने तो इतना बढ़िया सरप्राइज दिया है, सुंदर फूलों का गुलदस्ता और ये गिफ्ट पार्सल, शायद इसीलिए आज ऑफिस चले गए हैं कि ये सरप्राइज दे सकें। बढ़िया है बेटा, गिफ्ट तो देखो क्या है। हाँ मम्मी जी। और उसने गिफ्ट को खोला और वो लगभग उछल पड़ी, चंदेरी की साड़ी। मम्मी जी याद है आपको, हम उस दिन देख रहे थे तो यही साड़ी मैंने ऑनलाइन पसंद की थी, इन्हें कैसे पता चला? उफ, मुझे ये साड़ी इतनी पसंद आई थी और उन्होंने पता नहीं कैसे पर मुझे मेरे बर्थडे पर ही ये गिफ्ट कर दी। मैं तो आज बहुत खुश हूँ मम्मी जी। कितनी बातें बना रहे थे कि इस महीने नहीं हो पाएगा, बजट नहीं है, और देखिए। माँ भी उसकी खुशी देखकर खुश हो रही थी। भावना साड़ी लपेट कर नाच ही रही थी और उसके मन के रेडियो पर एक बार फिर से गीत बज रहा था। वो गीत था ये।

भावना बेसब्री से संदीप के आने का इंतजार कर रही थी। उसने वही चंदेरी की साड़ी पहन भी ली थी, उसे मैचिंग ब्लाउज भी मिल ही गया था। संदीप को आने में थोड़ी देर ही हो रही थी और घंटी बजी। भावना दौड़ी दरवाजा खोलने के लिए। संदीप अपने ही बचाव में कहने लगा, अरे भावना, वो तुम्हारे लिए केक लेने लगा तो थोड़ी देर हो गई। भावना मुस्कुराकर देख रही थी। भावना, तुम्हारी साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है, कब खरीदी थी? अब आप ज्यादा मत बनो, आपने ही तो आज कमाल कर दिया। मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन बर्थडे है, फूलों का गुलदस्ता, चंदेरी की मेरी पसंदीदा साड़ी, और आप कहते थे कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं ला पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहा। संदीप हैरान था, कुछ कहने ही वाला था कि दरवाजे पर घंटी बजी। भावना ने दरवाजा खोला, सामने मुक्ता थी। मुक्ता को देखकर यूं तो उसे खुशी नहीं होती थी, पर आज तो वो यूं ही बहुत खुश थी। हैप्पी बर्थडे भाभी, कैसी लगी साड़ी? आंटी ने खूब मेहनत करवाई, इतनी शॉपिंग साइट्स देखी तब जाकर ये साड़ी मिली। आंटी को आपको यही गिफ्ट करनी थी। भाभी, बहुत लकी हो आप, आंटी को आपकी पसंद ना इतनी पता है, मैं तो हैरान ही हो गई। वैसे साड़ी आपको पसंद तो आई ना? मम्मी जी की ओर देखकर मुक्ता कहने लगी, आंटी देखिए, रंग तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा ऑर्डर किया था। भाभी, वैसे गुलदस्ता कैसा लगा? वो मेरा आइडिया था, बस मैंने उसमें पीले फूल भी जोड़ने के लिए कहा था। खैर आंटी जी, अब तो आप खुश है ना? भाभी, आप जो एग्जाम दे रही हो उसमें अव्वल आओ, आंटी को तो आप पर इतना कॉन्फिडेंस है, वो कह रही थी आप अगले साल सरकारी अफसर बन जाओगी। कह रही थी मेरी भावना तो ऑनलाइन का काम चुटकियों में कर लेती है, पर उसके जन्मदिन पर सरप्राइज देना था इसलिए मुझसे हाथ मिलाना पड़ा। इतने में मुक्ता के फोन की घंटी बजने लगी और वो बाहर चली गई। मम्मी जी ने हंसते हुए कहा, कितना बोलती है ये लड़की, बस एक बार शुरू हो जाए। लेकिन अच्छी है, उसी से तो ऑर्डर करवाया, मुझे क्या आता है। भावना, अब तुम मुझे सिखा देना। साड़ी पसंद आई? वही वाली है ना जो तुमने पसंद की थी? भावना अवाक होकर मम्मी जी को देख रही थी। मम्मी जी, ये सरप्राइज आपका था, तो आपने बताया क्यों नहीं? और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो दौड़कर मम्मी जी से

पड़ गई। उसे बीते दिनों की सारी बातें अब एक अलग नजरिए से दिख रही थी। क्या फर्क पड़ता है बेटा, संजू ने दिया या मैंने, बात तो तुम्हारे चेहरे की खुशी से है। तुम्हारी खुशी कम तो नहीं हो गई ना कि सरप्राइज मैंने दिया है, मम्मी जी ने हंसते हुए कहा। अरे नहीं माँ, मेरी खुशी तो कई गुना बढ़ गई। माँ आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, इसीलिए आपकी मुक्ता से सीक्रेट मीटिंग्स चल रही थी और ये मैं समझ ही नहीं पाई। फिर संदीप को देखकर कहने लगी, माँ ने मेरे लिए सब किया। और फिर कसकर मम्मी जी से लिपट गई। संदीप की भी आंखें भर आईं। माँ ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और कहने लगी, बेटा तुम्हारी खुशी में ही तो मेरी खुशी है। माँ आज तक आपने मुझे तो सरप्राइज नहीं दिया, संदीप ने छेड़ते हुए कहा। फिर भावुक होकर कहने लगा, पर माँ ये साड़ी तो बहुत महंगी है, इतने पैसे? अरे तुम जो मुझे पैसे देते हो वो ही पड़े थे, मेरा अपना क्या खर्च है, एक प्रीति है एक भावना है, और मैं, मुझे तो आप भूल ही जाओ, बस ये दोनों बेटियां ही हैं आपकी। अरे मेरे बेटे, अब प्रीति के लिए चंदेरी साड़ी लेने की जिम्मेदारी तुम्हारी, उसे भी तो दिलानी है ना। भावना ने शरारत भरी नजरों से संदीप को देखा और सब खिलखिला पड़े। मुक्ता भी आ गई और फिर भावना ने केक काटा और सबने गीत गाया।

मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 5 बजने को हैं। आरंभ होती है हमारी आज की दूसरी सभा। इस सभा में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवा वाणी।

0: हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: नमस्कार, आप सभी को युवा वाणी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। तो आइए इस कार्यक्रम में हम सुनते हैं आज मेरी पसंद जिसकी मेजबानी कर रही हैं सिमरन।
4: युवा है तो नई बातें होंगी, नए दिल और नए सपने होंगे। नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी श्रोताओं का हमारे रेडियो शो मेरी पसंद में। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त सिमरन और आज हम बात करेंगे युवा शक्ति के बारे में। 80-90 के दशक से ही हमारे हिंदी सिनेमा जगत में युवाओं को खास महत्व दिया गया है। जो जीता वही सिकंदर, रंग दे बसंती, कुछ कुछ होता है जैसी तमाम फिल्मों के जरिए यह देखा जा सकता है। सुनते हैं हमारा पहला गाना फिल्म दिल चाहता है से।

0: होता है।
1: दोस्तों, युवाओं का दिल कितना जोशीला होता है, यह गाना हमें याद दिलाता है। युवाओं की ऊर्जा और जुनून हमेशा प्रेरित करती है। युवा शक्ति हमारे देश के भविष्य का मूल भाग है। उनमें उत्कृष्ट प्रकार की ऊर्जा, जिज्ञासा और संवाद कौशल होते हैं, जो नए और इनोवेटिव विचारों का सृजनन कर सकते हैं। सुनते हैं हमारा अगला गाना, के एवं सलीम सुलेमान की आवाज़ में, फिल्म इकबाल से।

0: अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। जी हाँ दोस्तों, युवा शक्ति के साथ कुछ भी मुश्किल नहीं है। युवाओं के बिना कोई भी समाज अधूरा होता है। उनके समर्पण के बिना कोई भी समाज विकास नहीं कर सकता। आजकल के युवा न केवल अपनी व्यक्तिगत उत्कृष्टता में माहिर है, बल्कि वे सामाजिक परिवर्तन में भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। युवा शक्ति आधुनिक भारत की ऊर्जा है, जो नए सपनों को हकीकत बनाने का संकल्प रखती है। हमारा अगला गाना कैलाश खेर की आवाज में, फिल्म चांदनी चौक 2, चाइना से।
1: हाँ।

युवाओं के नेतृत्व में हमने कई महत्वपूर्ण बदलाव देखे हैं। वे तकनीक योग्यता, साहस और सोच की ताकत से समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं। दोस्तों, आप भी युवा शक्ति का हिस्सा हैं। आपकी सोच और कार्रवाई से हम सभी को एक बेहतर भारत की ओर बढ़ने का मौका मिलता है। सुनिए शंकर एहसान लॉय और शंकर महादेवन की आवाज में जोश भरा यह गाना।

युवाओं के सपनों का कोई अंत नहीं होता और इसलिए हम युवा शक्ति का स्वागत करते हैं जो हमें नए भारत की दिशा में आगे बढ़ने का माध्यम प्रदान करती है। पेश है हमारा आज का आखिरी गाना फिल्म मैरीकॉम से जिद्दी दिल।

0: आखिर में हम अपने युवा दोस्तों से एक संदेश देना चाहेंगे। आप हमारे देश के भविष्य हैं। अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करें और समाज के लिए एक बेहतर बदलाव लाने में योगदान करें। आप सभी दोस्तों का मुझे सुनने के लिए दिल से शुक्रिया। वक्त हो चला है आप सभी को बाय कहने का। तब तक सुनते रहें, सपने देखें और खुश रहें। आप अपना फीडबैक हमें भेज सकते हैं। हमारा पता है feedback@patna@gmail.com।
1: अभी आप सुन रहे थे वह श्रोताओं का कार्यक्रम है युवा वाणी।

ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आइए सुनते हैं भोजपुरी कार्यक्रम आरती।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: आरती सुनने वाला हमार सबन सुनिहार लोगिन के एक बार फिर उसे सांझ के यही बेरा में राउर विनीता के प्रेम भरा नमस्कार। देखी हरमिसे नियन हम आज हो आयल बनी रुआ खातिर नीमन नीमन जानकारी भरल बात लेके आ साथ ही हम आज दिन शुक्रवार है तो आज शुक्रवार के दिन सुनाई ले रुआ सभी के फिल्म संगीत तो रुआ सभी कहूँ जाए मत जरूर सुनम रुकल रहम आ साथे साथे सुनम एगो वार्ता भीम सिंह जी से पेड़ लगाई पर्यावरण बचाई। तो चली अपने कार्यक्रम के हम आगे बढ़ाई और रउआ सबके जानकारी भरल बात बताई आज की तारीख के। आज की तारीख तो रउ सभी के पते बा कि आज 5 जून आज हुए के दिन हमने के पूरा विश्व में विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनावल जा रहा बा। आज भोरे पहर जब दुआरी पर से अखबार उठवनी हो तो ओकर पहल के पन्ना पर एह दिवस के चर्चा देखनी है। खूबे हरियरी रहे हो पन्ना पर देखिए कि मन हरिया गई। सोचे के बात बा कि जब असल जिंदगी में वैसने हरियाली बनल रहो तो कतना निक लागी। आज के दिन के हमनी के ई याद करे खातिर मनावल जा रहल बा कि ई धरती ई हवा ई पानी हमनी के कोनो पुरखौती जायदाद ना है बलुक ये प्रकृति के देल हुआ मानत है जौना के हमने सभन के आपन लैकन आपन भविष्य खातिर संहार के राखे के जरूरत बा। आई हमने सभी के जिम्मेदारी है हर बरिस एह दिवस के कौनो न कौनो विषय पर मनावल जाला। वही तरह अबकियो बरिस एकर एगो विषय बा आ उ प्रकृति से प्रेरित जलवायु खातिर हमने के भविष्य खातिर एकर मतलब रहो सभी शायद समझत हो कब। एकर मतलब ई भइल कि अगर हमने के अपन भविष्य बचावे के बा तो प्रकृति के नियम के समझे पड़ी। हमरा आजो याद पड़ेला गांव के द्वारा पके उ नीम आ आम के पेड़ जेकरा नीचे चारों बगली से चबूतरा बनावल रहे आ सांझ का बेरा ओह के छाँव के नीचे आ दोपहरियो में कभी कबहूँ तो छाँव के नीचे होकर चाचा बाबा सभन लोगिन जुट जात रहन आ अपन थकान त मिटावत रहन दुनिया जहान के बातों बतियावत रहन। गोरई चिड़ई के आंगन में फुदकत रहत ओकरे चहचहाट से आँख खुलत रहे लेकिन आज स्थिति ई बा कि ईंटा पत्थर गिट्टी के मकान में हमने उस छाँव खातिर तरस कैल बनी जाए। पूर्वा हवा अब ऐसन सुघर गमक ना देवे गर्मी के पारा ऐसन बढ़ता कि हर गर्मी के मौसम में आदमी हलकान हो जाता रे। ऐसे हमने सभन खातिर आज के दिन खाली एगो दिवस के रूप में मनावे के ना बल्कि जिम्मेदारी निभावे के दिन है। ऐसे रउओ सब अपन जिम्मेदारी के समझी ओकरा के समझत ए पर्यावरण के रक्षा में आजुए से जुटे के कोशिश करी। आ हम रउआ सभे के एह नीक काम करे खातिर आपन कोशिश करी कि राउड मन मन सावन होत रहो आ ओ खातिर सुनवाई शुक्रवार के विशेष दिन पर फिल्म संगीत। तो सुनी सभे आयल बसंत बहार से एह संगीत के मन्नाडे जी के आवाज में।

तोहरे नैना में खोई गई ले नैना हमार। कतना नीमन संगीत रहल हा, बहुत निक लागल। ऐसने निक संगीत हम फिर से रुआ सबन के सुनवाएं। लेकिन ए संगीत से पहले जो हम बात कहत रही वही पर एगो और बात कहल चाहम कि जाने के तो हमने सबन जाना था नहीं कि जल ही जीवन बा। भोजपुरी में कहल जाला कि बिन पानी सब सुन। एह जीवन के बचावलो हमनिये के हाथ में बा। हर बात खातिर सरकार से उम्मीद कैल चाहे उनका कोसल, ये हमने इनके काम नहीं खे। बलुक हर केहू के व्यक्तिगत रूप में आज आपन जिम्मेदारी उठावे पड़ी। पानी के बर्बादी रोकल घर ही से शुरू करे पड़ी। बाल बच्चन के सिखावे पड़ी कि ए अनमोल धन के कैसे बचावे के चाहिए। हमने इनके अपन प्रकृति के पूजा करे वाला लोग हैं जा। गंगा सरयू नदी के माई कह के पूजिला, और उहे में आज कितना तरह के गंदगी भी फेंक दिल जाता। प्लास्टिक के थैली से हमने इनके उहे गंगा माई गंदा तो हो ले जाता रही, साथे साथे सुखात भी जाता रही। पर्यावरण के उथल पुथल से सभी केहू हलकान हो रहा बा। गाछ वृक्ष के कटाई बढ़त चल जाता। काहे काहे कि हमने फैशन के महात्म के आगे एह सभन के महात्म भोराइल चल जाता नहीं। बात तनी करवा लागी लेकिन यह बात हम रोवा सभन के करवा लागे खाती एकदम नहीं की कह। रोवा सभन हमारे सुननिहार हैं जा। हम रोवा सभे के बात के बस साझा करता नहीं, ए मन के दुख के रोवा सभे जोड़े साझा करता नहीं। रोवा सभे के कोशिश करता नहीं कि रोवा सभे समझत नहीं तो एकरा के अपन जिंदगी में शामिल करी। यह बात के खाली समझे से हमने कुछ नहीं की कर सकत। गाछ वृक्ष के कटाई के रोकल हमने खातिर जरूरी बा। कोशिश करे के जरूरत बा कि हाँ कौना तरह से हमने अपन पर्यावरण के बचाई, हमने ओकरा के संरक्षित करी, ओकर रक्षा करी, कैसे अपन आसपास में हरियरी

0: फैलाई। अब तो बहुत जगह कम भ गइल बा, लोग कम से कम जगह में अपन जीवन के गुजर कर रहल बारे। वही में किस कौनो तरह से शहर वाला जिंदगी बा, वही तरह से चलता। बहुत ज्यादा जमीन केहू भी नहीं खे, लेकिन तबहियों हरियाली लावे खातिर छत पर नीचे रहुआ जहाँ रह तनी ओइजा अपन जगह में चाहे अपन बालकनी में छोट छोट पेड़ पौधा लगाई, मगर तो उसे हरियरी भी रही, सुंदर भी लागी। आ जब हवा बही तो ओकर शुद्ध हवा भी रहुआ मिली भेटाई। आ साथे साथे अगर गांव के जमीन बा तो ओहसे बढ़िया और का हो, ओहसे अच्छा तो और कुछ हो ही नहीं कह सकत कि रुआ बड़ बड़ पेड़ भी लगा सकत नहीं। सोची जब जेठ के तपत दोपहरिया में कंठ सुखात रहेला तो ओ घड़ी कौनो सोना चांदी काम आई नानो, ओह घड़ी तो पानी के घूंट अमृत समान लगेला। वही तरह गाछ बिरिछ हमनी के धरती के फेफड़ा है। पेड़ बा तबे बदरा बा, आ बदरा बा तो बरखा बा, आ बरखा बा तबे नु पानी बा। तो ऐसे हमने सभन के एक क्रिया खाए के चाहे कि पर्यावरण के सुधार खातिर अबहियों से चेतम जा। कौनो शुभ काम होखे तो पेड़ जरूर लगाइम अपना हाथे। लइकन फैकन के जन्मदिन आवेला, हतना हतना पैसा खर्चा करके हमने इनके जन्मदिन मनाई ला जा, लोगन के बुलाई ला, खियाई ला, पियाई ला। लेकिन ए सभन के साथे अगर अपन लइकन के हाथ से ओकरा के शिक्षा दी, ज्ञान दी कि बेटा आज के दिन जैसे तहार जन्म भइल वैसे ही तू एगो पौधा लगाव कि उहो वैसे ही तहारे नियन बढ़े, हरियाए, आगे बढ़े, फलाए, तबे नु लइकन सभी समझी हैं सर कि हाँ ये कतना नीक बात बा। हमने इनके हरियरी लावे के चाहिए अपन पर्यावरण के बचावे खातिर। गाछ बाची, पानी बाची, तबे नु हमने इनके जिंदगी बाचल रहे। यही से पर्यावरण के बचावे खातिर पेड़ पौधा लगावत रही सभी। आ चली अब यही से जुड़ल हमरुआ सभी के एगो वार्ता भी सुनवाई भीम सिंह जी से, जेकर विषय बा पेड़ लगाई पर्यावरण बचाई। तो सुनी सबे वार्ता के, आ वार्ता के बाद हम फिर से रुआ सबन जुड़े ऐसने नीक बात बतियाए।
1: आज सौंसे देश बिगड़ल पर्यावरण आ पेड़न के घटला के परिणाम भोग रहल बा। आज न केहू के साफ हवा मिल रहल बा, न पिए के साफ पानी, जौना के चलते तरह तरह के ढेर परेशानी लोग झेल रहल बा। ढेर लोग के तो इहो पता नहीं खे कि ई परेशानी या दिक्कत के का कारण बा। बाकी ई देखल जाता कि पहले जितना पेड़ रहे आ जंगल झाड़ रहे सब उतना अब देखे के नइखे मिलत। हमनी के जितने विकास हो रहल बा जंगल कम हो रहल बा। जंगल के पेड़ काट काट के शहर बसावल जाता, उद्योग धंधा लगावे खातिर ढेर जंगल उजाड़ दिहल गईल, लाखों करोड़ पेड़न के काट के हमनी तेजी से विकास कर रहल बानी जा। विकास तो होता, बाकी दूसरे ओरी हमनी पर्यावरण के एकरा से खतरा बढ़ल जाता। जंगल खत्म भइला आ पेड़ ना रहला के चलते हमनी के समय से ना वर्षा के पानी मिल पावत बा, ना साफ सुथरा मौसम मिल रहल बा। जहाँ गर्मी या बरसात के समय में परिवर्तन भी होखे लागल बा, जौना से हमनी के जीवन ढेरे परेशानी में पड़ल जाता। पेड़न के कम होखला से सूरज के तीखी किरण सीधे जमीन पर पड़ रहल बा, जौना से छोटे छोटे वनस्पति पौधा तेज गर्मी से झुलस रहल बाना। धरती के जीव जंतु तेज धूप से नष्ट हो रहल बाना, जौना से पर्यावरण तेजी से बिगड़ रहल बा। मौसम में बदलाव के चलते पेड़ पौधा में फल भी कम आ रहल बा। ई सब के कारण पेड़ के कम भइला के बतावल जा रहल बा। पर्यावरण बिगड़ला से लगभग 100 प्रकार के पेड़ विलुप्त हो गइल बाना, जौना से हमनी के औषधि मिलत रहे। तरह तरह के साधारण या खतरनाक बीमारी के बिना पैसा के इलाज हो जात रहे। पेड़ के कम भइला से हमनी के ढेरो बीमारी के शिकार भी हो रहल बानी जा। पर्यावरण के संतुलन बिगड़ला से हमनी के स्वास्थ्य भी प्रभावित हो रहल बा। जब साफ हवा हमनी के ना मिली, साफ पानी हमनी के ना मिली, तो साफ वातावरण भी हमनी के नइखे नसीब हो पावत। साफ हवा पेड़न से ही होला, पीपल, आम, बरगद, कटहल, परास या नीम के पेड़ से ऑक्सीजन मिलेला। ई पेड़ ऑक्सीजन देलन, एह लोग के ऑक्सीजन के कारण।

कारखाना भी कहल जाला। जब ई पेड़ कम हो गइलन तो हवा में ऑक्सीजन के मात्रा भी कम हो रहल बा आ कार्बन डाइऑक्साइड के मात्रा बढ़ रहल बा, जवना से रोग व्याध भी हमनी के चारी ओरे घेरले बान। सड़क पर दौड़त लाखों गाड़ियन से जवन धुआं निकलता ओकरा से हवा दूषित हो रहल बा। ओकरा के रोके खातिर पेड़ लगावल जाई तो ई बहुत जरूरी बा। आदमी के जीवन बचावल बहुत मुश्किल हो गइल बा, ऐसे कि हमनी के समाज में हमनी के अगल बगल में पेड़न के संख्या रोज घटल जाता। वृक्षारोपण कार्यक्रम चला के केंद्र सरकार हमनी के बचावे खातिर बहुत कार्यक्रम चला रहल बा। लगभग पिछले 20 बरस से पर्यावरण दिवस मनावल जा रहल बा, जवना के शुरुआत 5 जून 1972 से सरकार पर्यावरण दिवस मना के शुरू कैले बा, जवना से हमनी के बहुत ही पेड़ लगावे के जागरूकता मिल रहल बा। पूरे देश में आज जंगल लगभग 10 से 15% रह गइल बा, जबकि जमीन के 30% भाग पर जंगल रहे के चाही। ऐसे साफ हो गइल बा कि जवन मौसम में बदलाव हो रहल बा उ पेड़ पौधा के घटला से ही हो रहल बा। आज से 55-56 बरिस पहले उत्तराखंड में पेड़न के काटला के विरोध में हमार महिला लोग चिपको आंदोलन चलौले रही, जवना के मकसद रहे कि कौनो कीमत पर पेड़ ना काटे दिहल जाई। यह आंदोलन में भाग लेवे वाली महिला लोग हजारों हजार के संख्या में जाके पेड़न से चिपक जात रही ताकि कोई पेड़ ना काट सके। एकरा से सरकार भी सकता में आ गई रहे, एकर ऐसन प्रभाव पड़ल कि लाखों करोड़ों पेड़ कटला से बच गई ला। हमनी के भी पेड़ बचावे खातिर हरदम यह कुर्बानी देवे खातिर तैयार रहे के चाही, काहे कि पेड़ हमनी के जीवन दाता बा। एकरे से ऑक्सीजन हमनी के प्राण वायु मिल रहल बा, ओकर ई कारखाना कहल जाला। इतने नाही, पेड़ हमनी के समय से वर्षा भी उपलब्ध करावे में मदद करेला। ई हमनी के मुफ्त में छाया, शुद्ध हवा, तेज गर्मी से रक्षा भी करेलन। इतने ना, जब तेज बारिश से जमीन के मिट्टी में कटाव होखे लागेला तो ई उनके रोके में भी मदद करेलन। जितने अधिका पेड़ रही हैं हमनी के मिट्टी के कटाव कम हुई। आजकल देखल जाता कि नदी नाला के रास्ता एहर ओहर थोड़ी पानी बरसला पर बदल जाता, ओकर कारण बा कि मिट्टी के कटाव पेड़ ना रहला से तेजी से हो रहल बा और नदी नाला के रास्ता भी बदल रहल बा। पेड़ से हमनी के और बहुते कुछ आसानी से मिल जाला। पेड़ से हमनी के तरह तरह के कीमती लकड़ी मिलेला, जौना से पलंग, कुर्सी, बेंच, टेबल आ बढ़िया फर्नीचर तैयार होला। दर्जनों ऐसन पेड़ बाला जेकरा से हमनी के तरह तरह के फल प्राप्त होला। आम, अमरूद, कटहल, आंवला, बेल के अलावा भी लाभदायक फल हमनी के पेड़ से प्राप्त होला। बाकी चिंता के ई बात बा कि ये सब के लगावे खातिर हमनी के जगह नहीं खे मिलत आ जगह के अभाव में हमनी के पेड़ नहीं जा लगा पावत। कृषि वैज्ञानिक बतौले बाना कि जंगल आ पेड़ जितने रही धरती के उर्वरा शक्ति उतने अधिकार रही। पेड़ के पतई जमीन पर गिर के जब वर्षा के पानी के साथे मिट्टी में दब जालन या मिल जालन तो वो जैविक खाद के बनावे में बहुत सहायक होलन। ओकरा से उर्वरा शक्ति बढ़ेला, उसे उपज में भी बढ़ोतरी होला। ई कहल जाओ कि हमनी के अनाज उत्पादन में भी पेड़ पौधा लगावल आ पेड़ के रहल बहुत सहायक होला। हमनी के हर खाली जगहन में पेड़ लगावे के चाही। पेड़ या जंगल कम भइला के चलते आजकल जंगली जानवर गांव देहात के ओर तेजी से आ रहल बानन। रोजे एगो न एगो ई खबर सुने के या पढ़े के मिल जाला कि तेंदुआ, बाघ, लकड़बाघा, यहाँ तक कि गीदड़ भी गांव में आ जातरन, जौना से आदमी या पशु के जीवन के खतरा बढ़ जाता। एकर कारण भी पेड़ या जंगल में कमीये बतावल जा रहल बा। हमनी किसान भाई लोग से निहोरा करतानी जा कि अपना खेत के पराली, चाहे वो गेहूं के होके चाहे धान के होके, ओकरा के कतही जलावे के कोशिश
ना कई जाओ, काहे से कि

0: थाली जलवला पर आग के जौन लवर उठेला ओकरा चपेट में आके खेत के अगल बगल में पेड़ पौधा जौन लगल बनन उ या तो जल जालन या नष्ट हो जालन झुलस जालन। तने नाही सौंसे सिवान के हरा भरा हरियाली खत्म हो जाला पराली जलवला से। जौन गर्मी वायुमंडल में जाला तो हवा गर्म हो जाला जौना से वायुमंडल में तापमान के वृद्धि हो जाला। जवन डंठल जलेला ओकरा से जवन धुआं या धूल निकलेला उ हवा के इतना दूषित कर देला कि हमनी के सांसों लिहल मुश्किल हो जाला। सरकार किसानन से आग्रह कैले बा कि वो आपन फसल के अवशेष यानी पराली के कौनो भी कीमत पर न जलावा, ओकरा के खेत में जुताई करके पानी भर दा जौना से उ धान गेहूँ के जलल डंठल खेत में सड़ के उर्वरक में बदल जाई जौना से उपज में बढ़ोतरी हो सकेला। अब सरकार के यह कदम के हमनी के स्वागत करे के चाही या माने के चाही, एकरा से ढेर लाभ मिल सकेला आ पेड़ पौधा भी बच सकेला। बिहार सरकार एगो जल जीवन हरियाली योजना चला रहल बिया जौना से पेड़ पौधा के हरियाली या लोगन के जीवन में खुशहाली आ सकेला। हमनी के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने माँ के नाम पर एक पेड़ लगावे के योजना चलौले बानी, एकरा के भी सफल बनावे खातिर हमनी के माँ के नाम पर एगो पेड़ जरूर लगावे के चाही। ऐसे लाखों करोड़ों पेड़ तो लगिए जई हाँ, हमनी के जौन जंगल कम हो रहल बा या पेड़ के जौन कमी बा ओकर भी पूर्ति हो जाई। दूसर हमनी के अपना बेटा बेटी के नाम पर भी पेड़ लगावे के चाही। एगो ऐसे प्रभावित हो के कवि भोजपुरी में अपना एक बच्चा के भावना के लिखले बाना, अपना पेड़ कटाई पापा पर्यावरण बचाई पापा सबका के बतलाई पापा आव मिलजुल पेड़ लगाई पापा आई। हमनी के भी यह कविता से सीख लेके पेड़ लगावे के संकल्प लिही जा। सबका से निहोरा बा कि ये साल हमने नया नया पेड़ लगा के पर्यावरण के बचाई जा। तो आई हमनी के पेड़ लगावे के संकल्प लिहल जाओ।
1: आई हमनिन के पेड़ लगावे के संकल्प लिहल जाओ। बहुते नीक वार्ता रहल हा भीम सिंह जी के। विषय रहे पेड़ लगाई पर्यावरण बचाई, तो सबसे पहले तो एहनीक वार्ता खातिर इनका धन्यवाद बा। साथे साथे एगो औरी बात कहल चाहतनी हम अपन सभन सुनिहार लोगिन से कि पर्यावरण के संरक्षित राखे के साथे साथे ऊर्जा के भी बचावल उतने जरूरी बा जिंदगी में। देखिए आजो हमरा याद बा वो जमाना जब लालटेन और ढिबरी के अंजोर में हमनी के पढ़ाई या खाना पीना होखत रहे। आज सरकार के कृपा से गावे गावे दुआरे दुआर बिजली पहुँच गई बा, ई तो बहुते नीक बात बा। बाकी सुविधा मिलला के मतलब ई एकदम ना हो कि हमने एकर दुरुपयोग करी जाए, एकरा के बर्बाद करी जाए। कितना घर में देखे के भेटा जला कि कमरा में केहू हो के या चाहे ना पंखा नाचत रही, बिजली जलल रही, टीवी चलले लइकन छोड़ दी हैं सब। लोग के तो अब औरी सुविधा भेटा गई बा कि बिजली के बिल भरे में भी कमतई भ गई बा। काहे कि 125 यूनिट बिजली तो मंगनिये में भेटा जाता, लेकिन देखी ये बात खाली पैसा के नहीं खे। ये बिजली हमने के इतना आसानी से नहीं खे भेटा, ये कोयला से पानी से बहुते जतन से हमनी तक पहुँचाता। एकरा बचावे खातिर हमनी के अपना तरफ से प्रयास करे के जरूरत बा। आ एह खातिर छोट छोट कदम भी बहुते बड़हन मदद के रूप में साबित हो। अब रहा सवाल कि वो छोट छोट कदम का बा, तो छोट छोट कदम हमनी के घर ही से शुरू होला। जैसे घर से बाहर हुआ जाता नहीं तो पंखा चाहे बत्ती बा ओकर जौन स्विच बा ओकरा के बुता दही। आ इ खाली रहुए ना आपन घर के जे छोट लइकन बारे से जौन अभी तनिका खेले कूदे में ज़्यादा रहले से ओकरा तनी भोरा जाले से उ अपन खेले के खाए के फेरा में फट से घर में से बहरी निकल जाइए। ओकरो के ई बुद्धि दीही कि बबुआ जब घर से बहरी निकल रूम से बहरी निकल तो कौनो तरह के अगर ऊर्जा वाला काम होखता टीवी चलता पंखा चलता लाइट जलता ओ बिजली।

0: पति के स्विच जोन बा ओकरा के बुता के बाहरे निकल। पियरका बॉल के जगह पे अभी उजरका लाइट जोन आइल बा बॉल एलईडी वाला ओकरा के लगाई तनिका कम ओकरा से बिजली बिल खर्चा होला। आ दिन के बेर जब सूरज भगवान निकल रहलन तो उनकर उजियारे के भरपूर फायदा उठाए। मोबाइल बा आ साथे आते देख तनी घरे घरे चर चर गो पच पच गो मोबाइल रहता। तब मोबाइल के बिना मतलब के चार्ज में लागल मत छोड़ी। जब पूरा तरह से चार्ज हो जाए तो ओकरा के निकाल दी ना। तो उहो से बिना मतलब के ओकर स्विच अगर जलावल छोड़ देम सभे तो उहो से तनिका तनिका करके बिजली बिल छूटेला। आ सबसे नीक बात अगर हम रउआ सभे से कहीं तो अगर रउआ सभे के घर के छत बा आ रउआ सभे हो सके तो सौर ऊर्जा के पैनल अपन छत पर लगवाएं। काहे कि आज अगर हमने इनके ऊर्जा ना बचाएं तो हमने के आवे वाला पीढ़ी के फेरू से उहे अन्हरिया जुग के सामना करे पड़ सकेला जो उनकी हमने कबहू ना चाह बाकी ना। तो ऐसे हम कहतनी रउआ सभे से कि ऊर्जा के संरक्षित करे के हमने के जिम्मेदारी के पूरा करे पड़ी अपन लैकन के सिखावे पड़ी। आ देखी हम अपन भोजपुरिया जनजीवन से जुड़ल अगर शब्द के बात करी तो हम अपन एह बातचीत में रुआ से एगो शब्द कहले रही ढेबरी। अभी ढेबरी पहले हमने इनके गांव देहात में कहल जात रहे शीशा के दिया बनावल जात रहे। कौनो तरह के दर दवाई के बड़का शीशी खाली होकत रहे तो उहे शीशा में जब खाली हो जात रहे तो ओकरा के धो पोछ के आजी लोग का करत रही कि सुखा उखा के रख देत रहे धूपा में। आ जब घामा में सुखा जात रहे तो ओकर जौन ढक्कन रहत रहे ओकरा में कांटी उंटी से कुछ से एगो छोटहन छेद कर देत रही। आ सूती कपड़ा के बाती बना के ओहमे लगा देवल जात रहे पिरो देवल जात रहे। आ ओकर बाती के छोटहन सिरा ऊपर रहत रहे आ बाकी लमहर सिरा जौन रहत रहे उ शीशी में चल जात रहे। आ शीशी में ओ घड़ी किरासन तेल के जुग रहे तो किरासन तेल डलात रहे। आ किरासने तेल में उ दिया सांझ खानी बर जात रहे आ बड़ी अंजोर करत रहे। तो अब तो ढिबरी लैकन कहाँ देखल है वहीं से लेकिन तैयो अपन लैकन के ऐसा ऐसा छोट छोट शब्द के जरूर सुनाई बताई ताकि हमने इनके भोजपुरिया जनजीवन से जुड़ल वैसा शब्द जौन बा वो आजो जिंदा रहे हमने इनके लैकन के मन में। आ देखी आ यही के साथे साथे जब बात इतना निमन निमन होखत रहे नो तो बहुत जरूरी बा कि रउआ सभी के मन मनसाउन खातिर हम नीक एगो और फिल्म संगीत सुना दी बिना देर कैले। तो सुनी सभे यह संगीत के
1: का हो नन्दी।

बसंत भौजाई के ही नोक जोक आ बहुत ही नीक आयल बसंत बिहार फिल्म से गीता दत्त जी के आवाज में रहल संगीत। आ यही के साथे साथे हमार रउआ सभे से विदाई लेवे के बेरा भ गइल, तेह मंगल कामना के जोरे कि हमार सबन सुनिहार लोगिन आपन आपन घर परिवार में हरियाइल रहस। अब हमार मने राउर विनीता के निहोरा बा कि हमरा के जाय देवल जाओ। प्रणाम।

अभी आप सुन रहे थे भोजपुरी कार्यक्रम आरती। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आइए आपको इस सभा में आगे प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी दे दें। छह बजकर 5 मिनट पर आप सुनेंगे भोजपुरी बुलेटिन। 6:10 पर आप सुनेंगे फिल्म संगी। 6:30 पर आप सुनेंगे ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सुनेंगे चर्चा, विश्व पर्यावरण दिवस, सुनेंगे वार्ता, वायु प्रदूषण एवं बचाव। वार्ताकार होंगे योगेंद्र सिंह गंभीर। साथ ही आनंद ले सकेंगे पारंपरिक लोकगीतों का। कलाकार होंगे वास। 7 बजे का वक्त होगा किसान भाइयों के कार्यक्रम खेती गृहस्थी का। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे चर्चा, कृषि रसायन एवं प्रदूषण, सुनेंगे वार्ता, भूमिगत कीटों का नियंत्रण। वार्ताकार होंगे डॉक्टर जितेंद्र कुमार और सुनेंगे लोकगीत वासिनी चौधरी के स्वर। 7:52 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे गीत, कलाकार होंगे तान्या सौम्य दीप चक्रवर्ती। 8 बजे आप सुनेंगे सरकार के 12 साल पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का थीम होगा महिला सशक्तिकरण। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित। 8:35 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी @90। विषय होगा विज्ञान का प्रचार प्रसार और आकाशवाणी। प्रस्तुति होगी श्री रजत कुमार की। 9:30 पर आप सुनेंगे साहित्यिक पत्रिका पर आधारित कार्यक्रम शब्द शिल्प। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे वार्ता, ग्रीष्म ऋतु का साहित्यिक चित्रण। वार्ताकार होंगे डॉक्टर इति कुमारी। सुनेंगे कहानी गर्मी जून में नहीं जुनून में है। कहानीकार होंगे धीरेन्द्र छतरवाला। सुनेंगे काव्य पाठ, कवि होंगे अभय कुमार पाठक। स्वर सहयोग सुप्रभात राय। प्रस्तुति अतुल कुमार। प्रदर्शन आकाशवाणी भागलपुर। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत थीम पर आधारित कार्यक्रम आज की रात। 10:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संग। 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। श्रोताओं, ये थी सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, वक्त हो चला है अगले कार्यक्रम का। ये सुनते हैं भोजपुरी बुलेटिन।

प्रणाम, ये आकाशवाणी पटना है। अब रउआ संजय सिंह से समाचार सुनी। न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय आज पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद के शपथ लिहली। पटना स्थित बिहार लोक भवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन उनका के पद और गोपनीयता के शपथ दिलवैले। न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू के जगह लिहले बाड़ी जे काल सेवानिवृत्त भइले रहले। न्यायमूर्ति राय एकरा से पहले सिक्किम उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश रहली। वहां के पटना हाई कोर्ट के दूसरी महिला आ 48वां मुख्य न्यायाधीश बनल बाड़ी। हमार संवाददाता बतौले कि शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री

0: न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश रहली। वहां के पटना हाईकोर्ट के दूसरी महिला आ 48वां मुख्य न्यायाधीश बनल बाड़ी। हमार संवाददाता बतौले कि शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री श्रवण कुमार, दिलीप कुमार जायसवाल, अशोक चौधरी आ राम कृपाल यादव समेत राज्य मंत्रिमंडल के कई गो सदस्य उपस्थित रहले। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कहले बाणे कि अगिला 2 साल में 50 लाख घरन पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगावल जाय। आज पटना में पर्यावरण दिवस के मौका पर एगो कार्यक्रम के संबोधित करत श्री चौधरी कहले कि एह संबंध में केंद्र सरकार के साथे जल्दीए एगो समझौता ज्ञापन पर दस्तखत कल जाय। वहां के कहनी कि 125 यूनिट बिजली से बेसी सौर ऊर्जा उत्पादन भइला पर सरकार के ओरी से उपभोक्ता सबके भुगतान कल जाय। बक्सर के इडाढ़ी रेलवे गुमटी पर नव निर्मित रोड ओवर ब्रिज टूट गइल बा। हमार संवाददाता बतौले कि 26 करोड़ 40 लाख रुपया के लागत से बनल ईआरओबी के उद्घाटन कुछ दिन पहले भइल रहे। आरओबी के पावर संख्या 5 पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गइल बा। एकरा बाद प्रशासन पुल पर आवागमन बंद कर देले बा। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। एकर उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगन के जागरूक कइल आ सामूहिक भागीदारी के बढ़ावा देवल बा। ई अवसर पर पर्यावरण बचावे के संदेशा के साथे पूरा राज्य में कई गो कार्यक्रम आयोजित कइल गइल। राजधानी पटना के जेपी गंगा पथ पर आयोजित मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पौधा लगा के 1 लाख पेड़ लगावे के काम के शुभारंभ कइले। एह मौका पर श्री चौधरी लोगन से ज्यादे पौधा लगा के हरियाली बढ़ावे के अपील कइले बाणे। मुजफ्फरपुर के एगो निजी अस्पताल में आग लगला से 6 गो लोगन के भइल मौत के मामला में पुलिस 3 लोगन के गिरफ्तार कइले बिया। सिटी एसपी मोहिबुल्लाह अंसारी बतौले कि आईसीयू में तैनात चिकित्सक डॉक्टर पंकज कुमार, एडमिन मैनेजर राजकुमार और मेंटेनेंस मैनेजर अजीत कुमार के गिरफ्तारी भइल बा। उ बतौले कि एह मामला में अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी के आवेदन पर ब्रह्मपुरा थाना में शिकायत दर्ज कइल गइल बा। एह मामला में अस्पताल के निदेशक के भूमिका के भी जांच कइल जा रहल बा। एने ई अग्निकांड मामला के लेके राष्ट्रीय राज्य मानवाधिकार आयोग में याचिका दायर कइल गइल बा। याचिकाकर्ता वकील एसके झा सेवानिवृत्त न्यायाधीश के देखरेख में उच्च स्तरीय जांच करावे के मांग कइले बाणे। पूरा प्रदेश कड़ाके के गर्मी के चपेट में बा। कई जगहन के तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार चल गइल बा। पिछला 24 घंटा के दौरान 41.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथे बक्सर राज्य के सबसे गर्म जगह रहल। राजधानी पटना के अधिकतम तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड कइल गइल। मौसम के अनुमान में कहल गइल बा कि अगला 2 से 3 दिन के दौरान तापमान में कोनो खास बदलाव के संभावना नइखे। वही जे अगला 24 घंटा में राज्य के कुछ हिस्सा में हल्का बरखा हो सकेला। ए दौरान उत्तर पश्चिम और उत्तर मध्य भाग में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से धूल भरर आंधी चले के भी चेतावनी जारी कइल गइल बा। आज संपूर्ण क्रांति दिवस हवे। आजो के दिन लोकनायक जयप्रकाश नारायण तत्कालीन कांग्रेस सरकार के खिलाफ संपूर्ण क्रांति के नारा देले रहले। मुख्य राजकीय समारोह पटना के जेपी गोलंबर पर कइल गइल, जहां मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आ उप मुख्यमंत्री विजय कुमारी चौधरी समेत राज्य मंत्रिमंडल के कई गो सदस्य जेपी के मूर्ति पर माल्यार्पण क के उनका के श्रद्धांजलि दिहलस लोग। एकरे साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार के ई अंक समाप्त भइल।
1: अभी आप सुन रहे थे भोजपुरी बुलेटिन। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं 22 डेज फिल्म का ये गीत अंकित तिवारी और अमृता तलुकदर की आवाज में। शब्द हैं सागर लाहौरी के और संगीत परिवेश सिंह का।

श्रोताओं, आइए सुनते हैं अमित त्रिवेदी की आवाज में अंधाधुन फिल्म का ये गीत। गीत लिखा है जयदीप साहनी ने और इसे संगीत दिया है अमित त्रिवेदी ने।

अमित त्रिवेदी की आवाज़ में गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, थोड़ी देर में हम सुनते हैं संस्कृत समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका साधना शर्मा। आदौ मुख्याः वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य गुजरात राज्ये 18,800 कोटि रूप्यकाधिकमूल्यानां मार्ग विद्युतः तथा औद्योगिक विकास परियोजनानां शुभारम्भं कृतवान्। केन्द्र सर्वकारेण विदेशी संस्थागत निवेशकेभ्यः करेषु महत् शैथिल्यं प्रदत्तम्। भारतीय रिजर्व बैंकेन स्वस्य नवीन मौद्रिक नीति समीक्षा

0: आकाशवाणीतः प्रसार्यते। समम् एव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः अद्य त्रिपुरा राज्यस्य लंकामुरा सीम्नि सीमसुरक्षाबलस्य सैन्यबलं संबोधयन् व्यापिकां सीमसुरक्षां प्रति दृष्टिकोणं प्रस्तुतवान्। सीमसुरक्षायाः महत्वं प्रतिपादयन् गृहमंत्री उक्तवान् यत् प्रशासनं त्रिपुरा पश्चिम बंगाल बिहार च इत्येतेषु सीमवर्तिषु क्षेत्रेषु अवैध जनसांख्यिकीय परिवर्तनानां निरोधाय दृढसंकल्पितम् अस्ति। श्रीशाहः सीमप्रबन्धनस्य सुदृढीकरणाय स्थानीय नागरिक प्रशासनेन सह उन्नत प्रौद्योगिक्याः एकीकरणं कर्तुं स्मार्ट बॉर्डर रणनीतिम् इति उद्घाटितवान्।
1: जनसांख्यिकी का परिवर्तन चाहे त्रिपुरा हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे बिहार हो, जनसांख्यिकी का परिवर्तन हम सीमा के छिद्रों के माध्यम से नहीं होने देंगे। ये हमारा अटल विश्वास है और अटल संकल्प भी है। ये जनसांख्यिकी के परिवर्तन को रोकने के लिए बाड़ लगाई गई है।
0: अद्य विश्व पर्यावरण दिवस समग्रे विश्व आमान्यते। पृथिव्यां जीवनस्य संरक्षणाय पर्यावरण जागरूकतायाश्च संवर्धनार्थं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रमस्य अन्तर्गतं अयं दिवसः प्रतिवर्षं आयोज्यते। प्रशासनेन दिल्ल्यां 18 नमो ऑक्सीजन पार्क इति उद्यानानि उद्घाटितानि। अस्मिन् अवसरे उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन्, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाहः, रक्षामंत्री राजनाथ सिंहश्च देशवासिभ्यः शुभासंसाः प्रदत्तवन्तः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् मातुः नाम्ना एकः वृक्षः इति अभियानं वनक्षेत्रवृत्तौ महत्वपूर्णं योगदानं दत्तवत्। तेन उक्तं यत् अयं दिवसः पर्यावरण संरक्षण सतत विकासम च प्रति अस्माकं प्रतिबद्धतायाः प्रतीकः अस्ति। सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगनः अद्य नवदिल्ली नगरस्य ऑल इंडिया रेडियो परिसरे एक पेड़ मां के नाम अभियानस्य भागरूपेण एकं वृक्षं रोपितवान्। आकाशवाण्या सह संभाषमाणः डॉक्टर मुरुगनः नागरिकेभ्यः आह्वानं कृतवान् यत् ते पर्यावरणस्य रक्षणस्य प्रतिज्ञां कुर्वन्तु। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन उक्तं यत् आगामिनोः द्वित्री दिवसयोः मध्ये मध्य अरब सागरस्य केषुचित् अधिकेषु भागेषु समग्रेपि गोवा प्रदेशे, महाराष्ट्रस्य, आन्ध्रप्रदेशस्य, कर्णाटकस्य च केषुचित् भागेषु, तमिलनाडु राज्यस्य अवशिष्टेषु भागेषु तथा पूर्वोत्तर राज्यानां केषुचित् भागेषु दक्षिण पश्चिम प्रावृतः आगमनाय परिस्थितयः अनुकूलाः सन्ति। पुरुषाणां आ 18 वयस्यः एशिया कप हॉकी प्रतियोगितायाः उपांत्य स्पर्धायां भारतेन पाकिस्तान दलं 5-3 अंक अंतरालेन पराजितम्। जापान इदं अपरतः महिलानां अंडर 18 एशिया कप प्रतियोगितायाः उपांत्य स्पर्धायां चीन देशेन भारतीय दलं पराजितम् इति वार्ताः।
2: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आइए सुनते हैं किसान भाइयों का ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल और खेती गृहस्थी।

0: नमस्कार मीनू बहन।
1: नमस्कार प्रिया बहन। तो बताएं, आज तो राउर चेहरा पर बड़ा ताजगी बा, लहरल गर्मी में बुझात
0: इसलिए
1: बाटे।
0: इसलिए इसलिए क्योंकि मैं अपनी सेहत पे पूरा ध्यान दे रही हूँ और अभी जैसा मौसम है उसके अनुसार अपने खान पान पे भी मन तो बहुत करता है तला भुना ये सब खाने को, लेकिन उसको मैं कंट्रोल करती हूँ और मैं वही खाना
1: मतलब
0: खाती हूँ।
1: मौसम के अनुसार वह ढल जाइला,
0: हाँ
1: यही अनुसार रहिला तो चेहरा पर ताजगी भी आवेला। और देखी, मौसम के अनुसार अगर ढलना बा और अपन पर्यावरण के रक्षा करना बा, तो एकरे पर हम एगो बात कहे के चाहतनी कि धरती बा हमनी के शान, एकर रक्षा हमनी सभन के अभिमान। मतलब कि आज के दिन खास बा, काहे कि आज विश्व पर्यावरण दिवस बा।
0: बिल्कुल,
1: जे
0: आज पूरा विश्व मना रहा है विश्व पर्यावरण दिवस।
1: हाँ,
0: कोई भी दिवस मनाने के पीछे के कारण ही यही होता है कि लोगों में कहीं ना कहीं उसे अनदेखी करना
1: हाँ,
0: और अनदेखी करने की वजह से उसका दुष्प्रभाव हम लोगों को देखने को मिलता है। और पर्यावरण को लेकर के बात करें तो ये तो हम सभी झेल रहे हैं। अब ये गर्मी जो है, जिस तरीके की गर्मी,
1: हाँ
0: उसमें बहुत ज़रूरी हो तभी हम बाहर निकलते हैं। तो पहले भी गर्मी होती थी, पहले भी बारिश होती थी, पहले भी ठंड पड़ती थी, लेकिन अभी जो इस तरीके से परिवर्तन देखने को मिल रहा है वो बहुत ही, कहते हैं ना कि आने वाले समय में असहनीय होगा।
1: देखिए, आज के दिन लोग के पर्यावरण संरक्षण के खातिर जागरूक करे और पृथ्वी के सुरक्षित रखे के खातिर प्रेरित करे के उद्देश्य से मनावल जात बा। ई दिवस पर्यावरण दिवस के मनावे के खातिर 150 देश शामिल होत बा। और 1972 में यूएन, यूनाइटेड नेशन, पर्यावरण से जुड़ल समस्या पे चर्चा के खातिर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कैले रहन। एकरा बाद 5 जून के विश्व पर्यावरण दिवस मनावे के निर्णय भेल। आ फिर पहला 1973 में ई दिवस के मनावल गेल।
0: बिल्कुल, 1973 से लगातार इस दिवस
1: हाँ
0: को मनाया जा रहा है। मतलब अगर इसकी बात करें पर्यावरण की, तो ये जो पर्यावरण असंतुलन है वो
1: हाँ
0: न जाने वर्षों वर्षों कितने दशकों से
1: हाँ मना रहा
0: इसे मनाने के पीछे का कारण ये है कि लोगों को जागरूक करना,
1: जागरूक करे
0: और
1: खातिर।
0: अभी तक हम शायद जागरूक ना हो करके हम कुछ और ही कर रहे हैं।
1: आ देखिए, ई बरस 2026 के विश्व पर्यावरण दिवस के थीम बाटे जलवायु कार्रवाई। 2026 के विश्व पर्यावरण दिवस जलवायु परिवर्तन पे केंद्रित बा। एकर यही संदेश बा कि बढ़त तापमान, बाढ़, सुखाड़, जंगल में आग और ग्लेशियर के लगातार जे पिघलत बाटे, अब समय आ गेल बा कि जलवायु परिवर्तन के गंभीर समस्या से निपटे खातिर कुछ खास और कुछ ठोस कदम के उठाना बहुत ज्यादा
0: वही
1: जरूरी
0: मैं
1: हो
0: कह रही
1: गेल
0: हूँ,
1: बा।
0: इतने दशकों से जो ये बात की जा रही है, ये विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है, मतलब हमारी धरती कितनी आहत हुई है इस बात से कि हम जो सुख सुविधा इस प्रकृति ने हमें दिया है, हम
1: हाँ
0: उसमें भी अपने अनुसार वो सुख सुविधा ढूंढ रहे हैं। और उस सुख सुविधा को पाने के लिए जो पेड़ का कटना, जंगलों का कटना जो शुरू हो चला है, और उसके साथ ही साथ
1: आई
0: जो
1: अंधाधुंध
0: नदियां हैं,
1: कटाई हो रहल
0: जो
1: बाटे,
0: नदियां हैं उस वो हमारे शहरों से, हमारे गांवों से दूर
1: बहुत
0: होती जा
1: दूर
0: रही है।
1: होते जात बा।
0: एक जो पहले की परंपरा थी कि हर गांव में कुआं हुआ करता था, तो आज आज अगर हम बहुत सारी जगहों पर जाकर के देखें तो
1: तभी
0: वहां
1: सब कुआं हुआ देखे
0: है,
1: के तब मिलते नहीं खे, अब
0: अगर
1: हर
0: है भी
1: जगह।
0: तो पानी नहीं है।
1: हाँ
0: तो ये जो संकट है पूरा मिला जुला करके कहें तो ये असंतुलन इसलिए है क्योंकि हमारी चाहत कृत्रिम चीजों पर ज्यादा चली गई, जबकि प्रकृति ने हमें बड़ा खूबसूरत
1: हाँ
0: ये सृष्टि दिया है।
1: आ देखिए, आज पर्यावरण के रक्षा खातिर हमनी सभन ढेर से ढेर मनी पेड़ पौधा लगाई। प्लास्टिक के तो कम से कम उपयोग करी। प्लास्टिक के भी इतना उपयोग हो रहल बा जेकरा से पर्यावरण दूषित होता। पानी के भी बचत करी, पानी के भी
0: बहुत जरूरी है।
1: इतना मतलब ओकर का कहीं कि बर्बादी हो रहल बा, तो पानी की बर्बादी पर थोड़ा रोक लगाई। घर में भी बानी तो पानी के बचत करी, बाहर भी बचत करी, ऐसा ना कि कहीं भी बानी तो पानी की बर्बादी
0: और
1: करत
0: कोई भी
1: नहीं।
0: चीज बचत तब हो सकती है
1: हाँ
0: या ये कारगर तब हो सकता है जब अपने घर

0: परिवार में बच्चों से ही इसकी शुरुआत की जाए, बच्चे बड़े बूढ़े इस चीज
1: हाँ
0: को माने, और तभी जो बच्चे हमारे कल के भविष्य हैं
1: हाँ
0: तो वो चीजों को और बेहतर बना सकते
1: अब आज
0: हैं।
1: पूरा पानी बहाइए दम ताकि पीढ़ी के काम मिली। अब बर्तन मांजे समय पानी एकदम नल खोल के छोड़ देते नहीं, चाहे ब्रश करते नहीं हो या पानी के बहाव करते नहीं, या शौचालय में ही बहुत लोग नल खोल के छोड़ देवेला। तो ई सब पर ध्यान देना बा, पानी के बचत करना बा, बिजली के भी बचत करना बा, सार्वजनिक परिवहन के उपयोग करी। अब व्यक्ति व्यक्ति आदमी गाड़ी लेके बाहर निकली तो ओकरो से प्रदूषण हो रहल बा। कचरा के भी इधर उधर ना फेंकी, ओकर सही जगह पर फेंकी, कचरा वाला भी आवेला। गीला सूखा कचरा जहाँ भी रखना बा जरूर रखी, और हर एक तरफ स्वच्छता बनवले रखी। और एगो खास बात कि स्वच्छता के प्रति सबसे पहले जागरूक रही। पर्यावरण खाली प्रकृति के विषय नहीं, बल्कि हमनी के जीवन स्वास्थ्य और भविष्य के आधार है। अगर आज हमनी सब पर्यावरण के रक्षा ना करम तो आवे वाला पीढ़ी के हरा भरा और सुरक्षित संसार कैसे भेटाई, कैसे
0: सही बात है
1: मिली।
0: कि अगर अगर पर्यावरण को संतुलित रखना है और इस दिवस को हमें कारगर बनाना है, सफल बनाना है, तो आवश्यक है कि वो सारी बातें जो हम अनदेखी किए जा रहे हैं उसे अब भी समय है कि अनदेखी ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं। साथ ही साथ जो जिस तरीके का वातावरण बना हुआ है कि कहीं भी आने जाने पर जो एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अगर इस्तेमाल करें, बनस्पत कि अपने सबके पास अगर गाड़ियां हैं चाहे नहीं भी हैं,
1: हाँ
0: तो अब बहुत सारे ऐसे देशों में है कि वहां पर साइकिल पर ही लोग अपना आते जाते हैं और वहां की खूबसूरती, वहां की प्रकृति, वहां की हवा इतनी शुद्ध है। तो हम भी अपने इस पूरे कहते हैं कि उसे उतना ही खूबसूरत बना सकते
1: हाँ
0: हैं।
1: और देखिए विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम सब मिलके संकल्प लिही कि आपन धरती के खूबे निमन बनावे में पूरा पूरा सहयोग करम। तो पेड़ लगाई, जीवन बचाई और पर्यावरण के स्वच्छ बनाई।
0: बिल्कुल, तो अब विश्व पर्यावरण दिवस को बिल्कुल सार्थक करना है, इसे सफल बनाना है, और ये हमारा दायित्व बनता है। और साथ ही साथ हमारा दायित्व ये भी बनता है
1: गीत
0: कि
1: गवनई
0: अपने कार्यक्रम
1: होके के
0: में हम
1: चाहिए।
0: लोकगीतों की झड़ियाँ ज़रूर लेकर के आते हैं आप श्रोताओं के लिए। तो आज सबसे पहले सुनते हैं ये लोक भजन।
1: हाँ वासनी चौधरी से।

0: वासनी चौधरी की सुमधुर आवाज़ में हमने सुना ये लोक भजन, और बहुत ही प्यारा ये लोक भजन उन्होंने सुनाया, और भी इनसे ज़रूर हम सुनेंगे। और आज बात कर रहे हैं विश्व पर्यावरण दिवस की, पूरा विश्व इसे मना रहा है, तो पर्यावरण में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं उनसे उससे जुड़ी हुई,
1: हाँ हाँ
0: जिसकी जानकारी अगर हो तो हम उसे
1: वार्ता के जरिए श्रोता तक पहुंचा सकेला।
0: हाँ बिल्कुल।
1: हाँ
0: तो
1: चलिए एगो वार्ता हमने के सुन लेवल जाओ। वायु प्रदूषण एवं बचाओ, वार्ताकार बड़न धीरेन्द्र सिंह गंभीर।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। इस 21वीं शताब्दी में सारी दुनिया में वायु प्रदूषण से हाहाकार मचा हुआ है। संपूर्ण मानव जाति इस समस्या से त्रस्त है, यह चिंतन का महत्वपूर्ण विषय है। मैं आपसे इस अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार साझा करना चाहता हूँ। वायु हमारे जीवन का आधार है। बिना भोजन के मनुष्य कुछ दिन रह सकता है, लेकिन बिना वायु के जीवन की कल्पना करना निरर्थक है। दुर्भाग्यवश आज वही वायु हमारे लिए खतरा बनती जा रही है। आज के समय में वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन चुका है। हमारे देश के और बिहार के भी कई एक शहर इस समस्या की चपेट में आ चुके हैं। सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में वैश्विक स्तर पर शीर्ष 100 शहरों में भारत के सबसे ज्यादा 39 शहर हैं, जबकि चीन के 30 शहर इस सूची में हैं। 100 में 69 सर्वाधिक प्रदूषित शहर केवल भारत और चीन में हैं। अतः वायु प्रदूषण का स्पष्ट मुख्य कारण आबादी का सैलाब, जनसंख्या का बढ़ना है। ये दोनों ही देश भारत और चीन विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश हैं। अतः मैं आपको प्रारंभ में ही स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि वायु प्रदूषण का मुख्य कारण बढ़ती जनसंख्या है, और इसे बचाव का मुख्य रास्ता भी जनसंख्या नियंत्रण है। वैसे पाकिस्तान के 7 शहर, बांग्लादेश के 5 और नेपाल के 2 शहर इन 100 सर्वाधिक शहरों की सूची में शामिल है। अर्थात भारतीय उपमहाद्वीप और चीन को मिलाकर ही विश्व के सर्वाधिक 100 प्रदूषित शहरों में कुल 83 शहर हो जाते हैं। बाकी बचे मात्र 17 सर्वाधिक प्रदूषित शहर सारे विश्व भर से आते हैं। अतः वायु प्रदूषण की समस्या मूलतः भारतीय उपमहाद्वीप और चीन की है। उदाहरण के लिए दिल्ली शहर और उसके आसपास में वायु गुणवत्ता सूचकांक

से हम एक यूआई कहते हैं, कभी कभी बढ़कर 500 तक पहुंच गया, जिससे प्रदूषण की गंभीर चुनौती उजागर हुई। आप लोगों को ज्ञात होगा कि दिल्ली में देश की बहुत बड़ी आबादी रहती है। बढ़ती आबादी के अलावा वायु प्रदूषण के मुख्य कारण बढ़ते हुए वाहन, औद्योगिक धुआं, पेड़ों, जंगलों की कटाई, निर्माण कार्यों के कारण उठने वाली धूल और गांवों में फसल अवशेषों का तथा शहरों में कूड़े कचरे को जलाया जाना है। हमने विकास तो किया है, लेकिन प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखने में कहीं न कहीं हम चूक गए हैं। यही असंतुलन हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण पर भारी पड़ रहा है। वायु प्रदूषण, हानिकारक गैसों, धूल और धुएं के कारण हवा की गुणवत्ता में गिरावट है, जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा है। यह फेफड़े की बीमारियों, कैंसर और प्रतिवर्ष लगभग 70 लाख मौतों का सारे विश्व में कारण बनता है। प्रदूषित हवा में सांस लेने के कारण विभिन्न बीमारियों से दुनिया की एक बड़ी आबादी ग्रसित हो रही है, जिसमें सांस लेने में कठिनाई, अस्थमा और हृदय संबंधी समस्याएं शामिल हैं। वायु प्रदूषण मनुष्यों को ही नहीं, बल्कि पशु पक्षियों और वनस्पतियों को भी प्रभावित करता है, कर रहा है। आंकड़े हमें यह भी बताते हैं कि वायु प्रदूषण के कारण हर साल भारतवर्ष में लगभग 13 लाख मौतें होती हैं। प्रदूषण के कारण वनस्पतियों और जीव जंतुओं की संख्या में भारी कमी ने वातावरण में असंतुलन पैदा कर दिया है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, भारत जैसे देश में जिस गति से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, वह बढ़ते वायु प्रदूषण का एक सबसे बड़ा संकेतक है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग होना है। पहले यह समस्या शहरों तक ही सीमित थी, लेकिन अब यह समस्या गांव देहात तक बढ़ रही है। बढ़ती आबादी के कारण औद्योगिकरण में भी भारी बढ़ोतरी हुई है। लोगों को रोजगार मुहैया कराने की वजह से उद्योगों से निकलने वाली जहरीली हवा और धुएं ने संपूर्ण वायुमंडल को दूषित कर दिया है। यह ज्यादातर विकासशील देशों की समस्या है। बढ़ते उद्योग के कारण आज भारत के कई शहर जोखिम निशान के ऊपर हैं। उन शहरों में सांस लेना दुर्लभ हो गया है। बढ़ती आबादी के कारण संचार के विभिन्न संसाधनों में वृद्धि हो रही है। इन साधनों में हो रही बेतहाशा वृद्धि से इंजनों, बसों, वायुयानों, स्कूटरों आदि की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। ये सभी वाहन अपने धुएं से वायुमंडल में लगातार असंतुलन पैदा करने का कार्य कर रहे हैं। पेड़ पौधे, वृक्ष वायुमंडल के प्रदूषण को निरंतर कम करने का कार्य करते हैं। पौधे हमारे लिए हानिकारक गैस कार्बन डाइऑक्साइड को अपने भोजन के लिए ग्रहण करके जीवन दायिनी गैस ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, परंतु वनों की अंधाधुंध कटाई के कारण वायु प्रदूषण दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। परमाणु युद्ध की आशंकाएं भी ईरान अमेरिका युद्ध के कारण दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। यह प्रदूषण को फैलाने वाला सबसे विराट हथियार साबित होगा। दुनिया का एक चौथाई हिस्सा तो परमाणु युद्ध से बर्बाद होगा और बाकी बची सारी दुनिया वायु प्रदूषण के भारी चपेट में आ जाएगी। पृथ्वी के लिए यह सबसे बड़ी विडंबना होगी, त्रासदी होगी। वायु प्रदूषण से बचने के लिए वनों की हो रही अंधाधुंध कटाई पर भी रोक लगानी होगी। इस कार्य में सरकारों के साथ साथ स्वयंसेवी संस्थाओं तथा देश और राज्य के नागरिकों को आगे आना होगा। शहरीकरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए गांवों व कस्बों में ही रोजगार व कुटीर उद्योगों तथा अन्य सुविधाओं को उपलब्ध कराना चाहिए। कारखानों को शहरी क्षेत्र से दूर स्थापित करना चाहिए। साथ ही ऐसी तकनीक उपयोग में लानी चाहिए जिससे धुएं का अधिकतर भाग अवशोषित हो और अवशिष्ट पदार्थ एवं गैसें अधिक मात्रा में वायु में न मिल पाए। जनसंख्या वृद्धि को रोकने की हर संभव कोशिश होनी चाहिए। केंद्र एवं राज्य सरकारों को चाहिए कि जनसंख्या नियंत्रण पर कानून लाया जाए, यह अत्यधिक आवश्यक है। जनसंख्या नियंत्रण पर जगह जगह सेमिनार एवं जनसंख्या नियंत्रण हेतु अभियान चलाया जाना चाहिए। वाहनों में ईंधन से निकलने वाले धुएं को ऐसे समायोजित करना होगा जिससे कि कम से कम धुआं बाहर निकले। खुले में शौच करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। यह वायु की गुणवत्ता पर बहुत बुरा असर डालता है।
सौर ऊर्जा की तकनीक को

0: विकसित एवं प्रोत्साहित कर इसे और ज्यादा उन्नत एवं सुलभ बनाना चाहिए। शहरों नगरों में अवशिष्ट पदार्थों के निष्कासन हेतु सीवरेज को सभी जगह बढ़ावा देना चाहिए। गांवों घरों में तथा शहरों में भी पेड़ पौधे लगाने के अभियान को व्यापकता प्रदान करनी चाहिए, यह बहुत आवश्यक है। वायु प्रदूषण से बचाव कार्यक्रम को पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर बच्चों में इसके प्रति चेतना एवं जागृति फैलाई जानी चाहिए। इसकी जानकारी व इससे होने वाली हानियों के प्रति मानव समाज को सचेत करने हेतु प्रचार माध्यम जैसे रेडियो, दूरदर्शन एवं पत्र पत्रिकाओं, समाचार पत्रों इत्यादि के माध्यम से प्रचार प्रसार करना चाहिए। जो कार्य आज हम आकाशवाणी पटना के द्वारा कर रहे हैं, हमें सबसे ज्यादा चिंता बिहार की करनी चाहिए, क्योंकि विश्व के 20 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर और गया का नाम आता है। यहाँ की वायु गुणवत्ता सूचकांक कभी कभी 400 के अंक को भी पार कर जाती है, जो भारी चिंता का विषय है। सर्दियों के दिनों में ऐसी स्थिति को विशेष कर देखने का मौका मिलता है, जो बहुत दुखद है। अगर दूषित हवा के संपर्क में आने से आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो इससे बचाव के लिए आप भाप ले सकते हैं। भाप लेने से फेफड़ों में जमा कफ बाहर निकलता है और फेफड़ों में होने वाली जकड़न से राहत मिलती है। आंख में जलन होने पर अपनी उंगलियों पर थोड़ा सा घी लें और इसे अपनी पलकों पर काजल की तरह लगाएं। वायु प्रदूषण की वजह से आंखों के अलावा नाक में भी जलन होने लगती है या नाक बंद होने लगती है। ऐसी स्थिति में घर से बाहर निकलते समय मास्क का उपयोग अवश्य करें और सबसे जरूरी और आवश्यक है, हर गांव, हर टोले, हर गली, हर मोहल्ले में वायु प्रदूषण के विरुद्ध व्यापक अभियान जन समझदारी और जन जन की साझेदारी से चलाया जाए।
1: अभी हम लोगों ने बहुत ही उपयोगी वार्ता सुनी, वायु प्रदूषण एवं बचाव। वार्ताकार थे योगेंद्र सिंह गंभीर।
2: बहुत फरिया के बतेलन कि वायु प्रदूषण से कैसे बचाव हो सकेला, एकरा खाती का उपाय करे के चाहिए।
1: और जरूरी भी है कि इन सारी बातों पे अगर हम ध्यान दें तो वायु प्रदूषण से हम बच सकते हैं, साथ ही साथ हमारे खेत खलिहान भी बच सकते हैं।
2: खेत खलिहान का इंसान पर भी तो कितना प्रभाव पड़ेगा
1: तो
2: वायु प्रदूषण से।
1: अभी कैंसर की समस्या के बारे में बताया कि इतने ज्यादा जो केसेस आ रहे हैं, ये बहुत बड़ा कारण है। तो
2: चाहे आंख में जलन होला वायु प्रदूषण से, चाहे
1: सांस लेवे जो
2: बीमारी व अस्थमा हो गए, चाहे इस तरह के गंभीर बीमारी वायु प्रदूषण से हो रहल बाटे, तो एकरा से बचाव खाती जे तरीका से योगेंद्र सिंह गंभीर बतेलन, तो एकरा खाती इनका तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अब का विचार वा प्रिया,
1: विचार
2: फिर
1: तो
2: से गीत सुने के?
1: हाँ, क्योंकि हमारे श्रोता इसका इंतजार करते हैं कि हम लोकगीत जरूर सुनवाए।
2: हाँ, तो चली देर नहीं करे के

0: अभी हम लोगों ने वासनी चौधरी की आवाज में ये सुना, प्यारा सा लोकगीत। लोकगीतों की जहाँ तक बात करें, इसकी मिठास, इसकी जो खुशबू है ना, वो बचपन से
1: हाँ,
0: हम जैसे कहते हैं, इस
1: सुनते
0: खुशबू
1: आवतनी।
0: में रहे हैं, क्योंकि हमारी दादी नानी, हमारी माए, वो हमेशा किसी भी ऐसे प्रयोजन हुआ तो उसमें लोकगीत जरूर
1: आ
0: गाती।
1: देखिए, शादी ब्याह में जैसे झूमर हो गई या परिछावन गीत हो गई, हल्दी गीत हो गई, मतलब गीत के तो बात करी तो हर तरीके के गीत बा जेकरा सुन के मन बहुत खुश हो जाला।
0: मन तो खुश होता है, लेकिन अब चूंकि हमने बहुत सारी बातचीत की, हमने गाने भी सुनवाए, कुछ जरूरी वार्ता भी अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने सुनवाया, और जानकारी होनी चाहिए और देने की भी कोशिश करते हैं अपने कार्यक्रम के माध्यम से, अपने बातचीत के क्रम से।
1: हाँ,
0: लेकिन अब चौपाल की घड़ी यही समाप्त हो रही है, थोड़ी देर बाद हम बात करेंगे खेती गृहस्थी की।
2: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

तो देखी, हमनी के तो देश कृषि प्रधान देश बाटे और जेकरा में 70% लोग खेती बारी ही करके आपन जीवन जी रहल बाड़े। और खेती बारी में ढेर मनी प्रकार के काम काज होखेला, तो किसान भाई कृषि उत्पादन के बढ़ावे के

0: खातिर ढेर मनी प्रकार के रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, खरपतवार नाशक और भी प्रकार के कृषि रसायन के उपयोग करेलन। इस सब के उपयोग से फसल के उपज में बढ़ोतरी भी होखेला और कीट रोग से बचाव भी होखेला।
1: वो तो होता ही है, लेकिन इसके साथ ही साथ जो इसके दुष्प्रभाव है,
0: हाँ
1: जैसे कहते हैं कृषि रसायन में रासायनिक पदार्थ होते हैं जो फसलों की पैदावार और उन्हें कीट से तो बचाते हैं, उपयोगी भी हैं,
0: हाँ
1: लेकिन रसायन और वायु प्रदूषण दोनों का आपस में गहरा संबंध है।
0: हाँ
1: अभी जैसे आज पर्यावरण की हम बात कर रहे थे, विश्व पर्यावरण दिवस की बात कर रहे थे, तो ये भी पर्यावरण से
0: से
1: ही तो
0: ही
1: जुड़ा
0: जुड़ल
1: हुआ है।
0: बाटे, एकदम
1: अब
0: सही कहत
1: खेतों
0: नहीं।
1: में नाइट्रोजन युक्त रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करने से वायुमंडल में अमोनिया गैस छोड़ती है, वो जो हवा की गुणवत्ता को खराब करती है।
0: हाँ
1: खेतों में छिड़काव किए गए कीटनाशक और शाकनाशी भाप बनकर हवा में मिल जाते हैं और हवा को जहरीला बनाते हैं। तो इस तरीके से जब हम रसायनों का इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे पर्यावरण को दूषित भी करते हैं वायु के माध्यम से।
0: आज जब देखी खेत में ढेर में प्रकार में यूरिया या नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के प्रयोग कैल जाला, तो ओकरा से अमोनिया गैस निकली। ये गैस वातावरण में जाके वायु प्रदूषण के कारण बनेला। और वहीं बात करी ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन के, तो देखी नाइट्रोजन उर्वरक के ढेर उपयोग से नाइट्रस ऑक्साइड गैस निकलेला। ये एगो शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है जे कि वैश्विक तापमान के बढ़ावेला और जलवायु परिवर्तन में योगदान देवेला।
1: ये तो है ही, साथ ही साथ खेतों में जुताई, ट्रैक्टर और हार्वेस्ट का चलना और उसके साथ ही फसलों के अवशेष जलाने से हवा में हानिकारक बारीक कण और धुआं फैलते हैं। बहुत बार क्या होता है कि खेतों का जो अवशेष होता है उसे
0: हाँ
1: पनाली है जिसे हम जला देते हैं, और उससे
0: पराली।
1: पराली जिससे जिसे बहुत ही नुकसान होता है, इस पे प्रतिबंध भी लगाया जाता है कि आप पराली ना जलाएं। तो बहुत तरीके से ये जब हवा में फैलता है तो न जाने, आजकल हम जो सुनते हैं कि इतने अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग थे बावजूद उसकी जो तबीयत खराब होती है, स्वास्थ्य
0: हाँ
1: संबंधित जो समस्याएं उत्पन्न होती है, ये बहुत बड़ा कारण है।
0: देखिए अभी प्रिय बहन रवा जैसन कहनी कि फसल पर छिड़के वाला कीटनाशक और खरपतवार नाशक हवा के माध्यम से आसपास के क्षेत्र में फैल जाला। एकरा से वायु प्रदूषण होखेला और मनुष्य पशु पक्षी के स्वास्थ्य पे बुरा असर और एकर दुष्प्रभाव भी पड़ेला। और ढेर बार ऐसा भइल बा जैसन कि रवा कहनी कि फसल कटला के बाद जे अवशेष बच जाला, जेकरा लोग जला के किसान भाई जेकरा पराली कहल जाला, ओकरा से तो बहुत ज़्यादा प्रदूषण होला। और मानव स्वास्थ्य के एकरा से परेशानी जैसे कि सांस लेवे में तकलीफ, अस्थमा और फेफड़ा की बीमारी, आँख में जलन, सिर दर्द, एलर्जी, हृदय रोग के खतरा बढ़ जाला। तो हम यही कहें कि संतुलित रसायन के उपयोग करके स्वच्छ हवा और स्वस्थ जीवन के निर्माण करें।
1: तो मैं भी ये कहना चाहूंगी कि तो कृषि इन हानिकारक प्रभाव को कम करने के लिए जितना हो सके जैविक खेती बहुत अच्छा है, और इसे ही आप करने की कोशिश कीजिए जिससे कि वो अच्छा हो। वही अगर बात करें कि कीटनाशक
0: हाँ
1: वो हमारे शरीर के लिए कितना खतरनाक है, जिसे जानना जरूरी है।
0: हाँ मतलब कि
1: कीटनाशक मनुष्य के शरीर में मुंह, त्वचा तथा श्वास के माध्यम से प्रवेश करते हैं, जो उचित सावधानी न करने जाने पर उपयोगिताकर्ता एवं वातावरण के लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं। अतः इनके व्यवहार में विशेष सावधानियां अपनानी चाहिए। कीटनाशकों का क्रय हमेशा पंजीकृत विक्रेताओं से ही करें। विक्रेताओं द्वारा कीटनाशकों का विक्रय 80 वर्ष से कम,
0: 18 वर्ष से कम
1: 18
0: आयु
1: वर्ष
0: वाले।
1: से, कभी कभी होता है कि जो हम
0: हाँ
1: कहना चाहते हैं कुछ और ही कहते हैं ना,
0: हाँ
1: 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, संदिग्ध व्यक्ति या मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति को नहीं करना चाहिए।
0: हाँ
1: वहीं कीटनाशकों को मूल पैकिंग में ही
0: भंडारित
1: भंडारित
0: करे
1: करें।
0: के चाहिए।
1: विषैले कीटनाशक पदार्थों को बच्चों एवं पालतू पशुओं की पहुंच से दूर रखना चाहिए। वहीं कीटनाशकों के प्रयोग से पूर्व प्रयोग विधि की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें तथा

0: लेवल एवं लिफेट में दिए गए निर्देशों का पालन करें, कीटनाशकों का घोल बनाने हेतु घरेलू बर्तनों को प्रयोग में नहीं लाना चाहिए।
1: मतलब जो जो प्रयोग हो रहल बाटे एकरा में तो ओकरा फिर घरेलू उपयोग में नहीं खिलाना, ऐसा ना कि ओकरे में हम कीटनाशक घोल लेनी और ओकरा में फिर हम ले जाके रसोईया में भी ले के चल गेनी।
0: और अगर ऐसा हुआ कि हाँ। जो

0: साबुन के प्रयोग करी या पानी से निमन से धो लीही, नहा लीही साबुन लगा के, आँख के छुई ना, काहे कि आँख के छूला पर भी परेशानी हो सकेला, आँखों के भी निमन से धोई। अगर कीटनाशक के कारण सांस लेवे में परेशानी हो तो तुरंत खुला हवा में चल जाएं, एकदम मतलब जहाँ के वातावरण निमन रहे और कीटनाशक निगल गइल बानी अगर कोनो तरीका से, तो ऐसन करी कि अगर ऐसन कुछ बात हो जाता, एकरा से कोई प्रभावित हो जाता व्यक्ति, तो एगो गिलास में पानी में 2 चम्मच नमक मिला के उल्टी करावे के प्रयास करी।
1: ताकि जो भी कीटनाशक जो
0: हाँ,
1: अंदर
0: जे
1: चला
0: अंदर
1: गया
0: चल
1: वो
0: गिल
1: बाहर
0: बा वो
1: निकल जाए,
0: निकल जाए, तो ये सब उपाय कर सकीला एकरा से।
1: फायदा होगा। और
0: हाँ
1: ये बहुत ही सावधानी भरी मतलब बहुत ही सावधानी के साथ ये कार्य करना चाहिए। और इसके साथ ही साथ आपके मनोरंजन का भी हम ख्याल रखते हैं,
0: हाँ हाँ
1: क्योंकि कहते हैं ना कि जब बहुत ज़्यादा सावधानी और बहुत ही जब जानकारी होती है तो मन को थोड़ा हल्का करने के लिए।
0: गीत संगीत भी होए के चाहिए,
1: हाँ
0: रावर इशारा तो गीत संगीत के तरफ ही बाटे। तो चली फिर से हमनी के वासनी चौधरी से सुनतनी ई लोकगीत।

0: बहुत ही प्यारा है ये, हमने गीत सुना वासिनी
1: वासिनी
0: चौधरी से।
1: चौधरी
0: समय
1: से।
0: रहा तो इनसे और भी सुनेंगे। और बात कर रहे थे हम रसायन की,
1: हाँ
0: तो कुछ और भी बातें हम जानते हैं अपने वार्ता के माध्यम से। वार्ता है भूमिगत कीटों का नियंत्रण। वार्ताकार है डॉक्टर जितेंद्र कुमार।
2: सबसे पहले भूमिगत कीट क्या है? भूमिगत कीट वे कीट हैं जो मिट्टी में रहते हैं और पौधों की जड़ों, तनों या अन्य भूमिगत भागों को नुकसान पहुंचाते हैं। अब भूमिगत कीट कौन-कौन हैं एवं इसका नियंत्रण कैसे करते हैं, हम उस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम प्रमुख भूमिगत कीट का नाम लेना चाहेंगे, जो इस प्रकार है। सफ़ेद लट, जिसे अंग्रेजी में व्हाइट ग्रब कहते हैं। दीमक, जिसे अंग्रेजी में टर्माइट कहते हैं। जड़ की सुंडी, जिसे अंग्रेजी में रूट मैगोट कहते हैं। और कजरा कीट, जिसे अंग्रेजी में कटवर्म कहते हैं। अन्य भी भूमिगत कीट हैं जो नवजात अंकुरों एवं जड़ों को खाकर पौधों को हानि पहुंचाते हैं। किसान भाई, अब हम इन प्रमुख भूमिगत कीटों की पहचान कैसे करेंगे? पहली कीट सफ़ेद लट, जिसे व्हाइट ग्रब कहते हैं। ये छोटे मलाईदार सफ़ेद रंग के और अंग्रेजी के सी आकार के लार्वा होते हैं, जो फसल या पौधों की जड़ों को खाते हैं और फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे प्रति एकड़ उत्पादन कम प्राप्त होता है। सफ़ेद लट का जीवन चक्र 4 अवस्था में पूरा होता है, जिसमें लार्वा अवस्था सबसे खतरनाक होता है। किसान भाई, अब हम इन प्रमुख भूमिगत कीटों जैसे सफ़ेद लट का प्रबंधन कैसे करेंगे? किसान भाई, अब हम इन प्रमुख भूमिगत कीटों का प्रबंधन कल्चरल प्रैक्टिस, जैविक खाद का या फिर हम लोग रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग कर कर सकते हैं। रासायनिक कीटनाशकों में फिफ्रोनिल 0.6 GR 4 किलोग्राम प्रति एकड़ बालू में मिलाकर उपयोग करने से इन कीटों का नियंत्रण पा सकते हैं। दूसरी दवा क्लोरेंट्रानिलीप्रोल 4% GR 4 किलोग्राम प्रति एकड़ बालू में मिलाकर उपयोग करने से इन कीटों का नियंत्रण पा सकते हैं। तीसरी दवा इमिडा क्लोरोपिट 40% प्लस फिप्रोनिल 40% WG 100 ग्राम प्रति एकड़ अनुसार पौधों में ड्रेंचिंग कर नियंत्रण पा सकते हैं। अगर हम लोग समन्वित कीट प्रबंधन की बात करें, तो मिट्टी में सुधार करके, फसल चक्र का उपयोग करके और जैविक नियंत्रण को शामिल करके सफ़ेद लिट को नियंत्रण कर सकते हैं। दूसरी प्रमुख कीट है दीमक, जिसे व्हाइट टर्माइट कहते हैं। ये दीमक हल्के पीले या भूरे रंग के कोमल कीट होते हैं, जो लकड़ी को खाते हैं और पौधों की जड़ को नुकसान पहुंचाते हैं। दीमकों का मुख्य भोजन सेल्यूलोज होता है, जो लकड़ी, घास पत्तियां, शाकाहारी घास पत्तियों को खाकर ये अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। दूसरी प्रमुख कीट है दीमक, जिसे टर्माइट कहते हैं। ये दीमक हल्के पीले या भूरे रंग के कोमल कीट होते हैं, जो लकड़ी को खाते हैं और पौधों की जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। दीमक का मुख्य भोजन सेल्यूलोज होता है, जो लकड़ी, घास पत्तियां, शाकाहारी जानवरों की खाद और अन्य वनस्पतिक मूल की सामग्रियों में पाया जाता है। दीमक कीट का जीवन चक्र 3 मुख्य चरणों में विभाजित होता है, अंडा, नवजात और वयस्क। दीमक अपनी कॉलोनी में विभिन्न भूमिकाओं के साथ रहते हैं, जैसे श्रमिक, सैनिक और प्रजनन करने वाले दीमक। दीमक के जीवन चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है झुंड, जो नई कॉलोनियों की स्थापना के लिए प्रजनन करते हैं। श्रमिक, ये दीमक मुख्य रूप से कॉलोनी की देखभाल करते हैं, जैसे कि भोजन इकट्ठा करना, घोंसला बनाना और अन्य दीमक की देखभाल करना। सैनिक, ये दीमक कीट कॉलोनी की रक्षा करते हैं, आमतौर पर उनके बड़े जबड़े और मजबूत शरीर के साथ। प्रजनन करने वाले ये दीमक नए घोंसले और कॉलोनियों की स्थापना के लिए प्रजनन करते हैं और इन्हें झुंड के रूप में जाना जाता है। प्रजनन करने वाले दीमक, जिन्हें झुंड भी कहा जाता है, वे पंख वाले होते हैं और वे प्रजनन के लिए बाहर निकल जाते हैं। झुंड यौन क्रिया करते हैं और यौन क्रिया के बाद अपने पंखों को गिरा देते हैं और एक नई कॉलोनी की स्थापना करते हैं। यह प्रक्रिया दीमक के जीवन को चक्र को जारी रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसान भाई, अब हम इन प्रमुख भूमिगत कीटों जैसे

दीमक का प्रबंधन कैसे करेंगे? खरीफ फसल में दीमक की रोकथाम के लिए 4 लीटर क्लोरोपाइरीफॉस 20 EC सिंचाई के साथ प्रति हेक्टेयर किसान भाइयों को देना चाहिए। फलों के वृक्षों के मुख्य तनों के पास जमीन में रिंग बनाकर 20 से 50 ग्राम क्विनोलफॉस 1.5% मिलाकर उपयोग करने से दीमक पर नियंत्रण पाया जा सकता है। फिप्रोनिल 0.3 GR का 6 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ बालू में मिलाकर उपयोग करने से इन कीटों का नियंत्रण पा सकते हैं। अगर आप घरेलू नुस्खा अपनाना चाहते हैं तो आप बोरेक्स के रूप में जाना जाने वाला बोरिक एसिड का छिड़काव दीमक को बाधित करता है। यही नहीं, पेट्रोलियम जेली या एलोवेरा और पानी में घोला हुआ सिरका या नीम के रस में मिलाया गया सिरका दीमक मारने का सबसे शक्तिशाली घरेलू नुस्खा हो सकता है, जिसके इस्तेमाल कर हमारे किसान भाई दीमक पर नियंत्रण पा सकते हैं। तीसरी प्रमुख कीट है जर्की सूडी, जिसे रूट मैगोट कहते हैं। ये रूट मैगोट एक प्रकार का छोटा भूरा या सफेद रंग का कीड़ा होता है। यह कीड़े पौधे की जड़ों में रहते हैं और उन्हें खाते हैं। वे सामान्यतः नम मिट्टी में रहते हैं और ठंडी जलवायु में अधिक सक्रिय होते हैं। युवा पौधों को रूट मैगोट से अधिक खतरा होता है। ये कीड़े सब्जियों, फूलों और फलों के पौधों की जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। इन कीटों के अधिक आक्रमण से पौधों पर विभिन्न तरह के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जैसे कि पौधों की जड़ों में छोटे छेद या छेद जैसे संरचनाएं दिखाई देने लगते हैं। जड़ें भूरी या सड़ने लगती हैं, पत्तियों का रंग पीला या भूरा होने लगता है, जड़ के आसपास सफेद या भूरे रंग के मैगोट दिखाई देने लगते हैं, जिससे पौधों का विकास रुक जाता है और पैदावार कम हो जाती है। किसान भाई, अब हम इन प्रमुख भूमिगत कीटों जैसे जड़ की सुंडी का प्रबंधन कैसे करेंगे? जड़ की सुंडी कीट नियंत्रण के लिए आप जैविक कीटनाशक जैसे कि बिबेरिया बेसियाना, जो कि एक कवकनाशी है, जिसका 4 से 5 ग्राम प्रति लीटर पानी का घोल बनाकर उपयोग कर सकते हैं। अगर आप घरेलू नुस्खा अपनाना चाहते हैं तो आप हरी मिर्च और लहसुन की चटनी बनाकर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं, या नीम आधारित उत्पादों का उपयोग कर सकते हैं। किसान भाई, बेहतर होगा कि आप बीजों को खेत में बोने से पहले थायोमेथैक्सम 1 ग्राम पर किलोग्राम बीज से बीजोपचार कर बीज बोना शुरू करें। और अंत में आप कीटनाशक जैसे कि एस्पिनोसेड 45% SG प्रति 1 मिलीलीटर पर लीटर पानी और क्लोरोफारीपॉस 20 EC 1.5 से 2.5 ml पर लीटर पानी में घोल बनाकर यदि उपयोग करते हैं तो इन कीटों के प्रकोप से आप बच सकते हैं। चौथी प्रमुख कीट है कजरा कीट, जिसे कटवर्म कहते हैं। इन कीटों का पिल्लू लंबा काला भूरा रंग का होता है, जो देखने में मुलायम और चिकना होता है। मादा कीट मिट्टी या पौधों के निचली पत्तियों पर समूह में अंडा देती है। अंडों से निकलने के बाद पिल्लू 3 से 4 दिनों तक साथ रहते हैं और बाद में भोजन की तलाश में बिखर जाते हैं। पिल्लू नए अंकुरण कर बीज को क्षतिग्रस्त करते हैं एवं नवाकुरित पौधों को जमीन की सतह से काटकर गिरा देते हैं। दिन में पिल्लू मिट्टी में छिप जाते हैं और शाम होते ही बाहर निकलकर पौधे को काटना शुरू कर देते हैं। इसलिए इन कीटों को रात्रिचर कीट कहते हैं। किसान भाई, अब हम इन प्रमुख भूमिगत कीटों जैसे कजरा कीट का प्रबंधन कैसे करेंगे? कजरा कीट के उपचार के लिए घरेलू उपचार में यह सलाह दी जाती है कि सुबह के समय में जगह जगह पुआल का ढेर लगाकर रखें। धूप निकलते ही सभी कजरा कीट पुआल के अंदर चली जाती है। इस स्थिति में किसान भाई पुआल में आग लगाकर कीट को नष्ट कर सकते हैं और कजरा कीट पर नियंत्रण पा सकते हैं। कजरा पिल्लू से बचाव को लेकर सावधानी के साथ खेतों में कीटनाशक का उपयोग करना चाहिए। फिप्रोनिल, जिसका ट्रेड नेम रिजेंट, व क्लोरोपाइरीफॉस, जिसका नामक कीटनाशक दवा कारगर साबित हो सकती है। इसके अतिरिक्त कारटाप हाइड्रोक्लोराइड 4G दानेदार 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से भुरकाव कर सकते हैं, जिसका असर 2 से 3 दिनों में फसल पर दिखने लगता है। पहले किसान भाई यह देखें कि कीड़ा पौधों के किस भाग को क्षति पहुंचा रहा है। अगर कीड़ा तना के अंदर घुसकर तथा तना काट रहा है तो फिप्रोनिल नामक दवा 4 से 5 दाना फसल के गड्ढे में, मतलब ऊपरी हिस्सों में दे दें, जिससे कीड़े मरेंगे और फसल में भी सुधार होगा। अगर कीड़ा तने के साथ पत्ती को भी हानि पहुंचा रहा है तो फिप्रोनिल के अलावा
क्लोरपाइरीफॉस 1 लीटर पानी में 4 ml दवा डालकर खेतों में छिड़काव करने से इन गोटियों की संख्या में कमी देख सकते हैं। इतना ही नहीं, पौधों की स्वस्थ देखभाल के लिए पौधों को पर्याप्त मात्रा में पानी, धूप और पोषक तत्व समय से देना चाहिए। मिट्टी की देखभाल के लिए मिट्टी को अच्छी तरह से तैयार करना चाहिए और उसमें पर्याप्त मात्रा में कार्बनिक पदार्थ मिलाना चाहिए।

0: खेतों में अगर पानी लगा हो तो उसकी निकासी की व्यवस्था करनी चाहिए। किसान भाई को कीट प्रतिरोधी किस्मों का चयन भी करना चाहिए। इतना ही नहीं, कीटों का नियमित रूप से निरीक्षण भी करना चाहिए। पौधों के आसपास जमे खरपतवार की सफाई कर देनी चाहिए, जिससे कि पौधों और खरपतवार के बीच पोषक तत्व के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं के बराबर हो। अगर किसान भाई इन सभी बातों पर ध्यान रखकर समेकित कीट प्रबंधन करते हैं तो कीड़ों के प्रकोप से तो बचेंगे ही, साथ में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन भी प्राप्त कर सकते हैं।
1: तो अभी हमने की सुनत रही वार्ता। वार्ता के विषय रहे भूमिगत कीटों का नियंत्रण, और वार्ताकार हन डॉक्टर जितेंद्र कुमार। तो बहुत फरिया फरिया के बतैलन, तिंकरा बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चलते चलते प्रिया बहन फिर से एगो और गीत हमने के सुन लेवल।
2: हाँ, चलिए सुनते हैं वासिनी चौधरी की आवाज में ये प्यारा सा लोकगीत।

0: वासिनी चौधरी से अभी हमने के बहुत निमन गीत सुननी और आज इनका से
1: बहुत बहुत धन्यवाद
0: करते सब गीत ला इनका धन्यवाद हाँ। देना बा
1: और अब समय हो चला है चौपाल की घड़ी यही समाप्त करने की, कल आना है तो आज जाना होगा। नमस्कार मीनू बहन।
0: नमस्कार प्रिया बहन।

अभी आप सुन रहे थे किसान भाइयों का ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल और खेती गृहस्थी। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, कुछ ही पल में हम सुनते हैं प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के,
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: सावधान, क्या आप जानते हैं आपके द्वारा पॉलिथीन में फेंका गया खाद्य पदार्थ पशुओं की जान ले सकता है। पॉलिथीन में लिपटा बचा हुआ खाद्य पदार्थ पशुओं का साइलेंट किलर बनता जा रहा है। खाद्य पदार्थों के साथ ये पॉलिथीन उनके पेट में जमा होकर पाचन तंत्र को बंद कर देता है, जिससे उनकी मौत तक हो सकती है। पॉलिथीन के कैरी बैग पर लगाए गए प्रतिबंध का पालन करें, उसे खुले में न फेंकें, बचे हुए खाद्य पदार्थों का सही निपटान करें, पॉलिथीन मुक्त समाज बनाएं, पशुधन बचाएं।
5: डेयरी एवं पशु संसाधन विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: इधर आइए, इधर।
1: इधर?
0: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
2: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
1: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
2: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
1: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
2: शुभ वाणी,
1: लाभ वाणी,
0: आकाशवाणी।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। भाजपा और जदयू ने बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की। भाजपा ने भोजपुरी फिल्म अभिनेता पवन सिंह और जदयू ने स्वास्थ्य मंत्री निशांत को बनाया उम्मीदवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर भाजपा ने आज से राज्यव्यापी विकास, विश्वास और जन कल्याण पखवाड़े की शुरुआत की। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु पर 7 जून से शुरू होगा वाहनों का परिचालन। अधिकतम 10 टन भार वाले वाहनों को ही आवागमन की मिलेगी अनुमति। और मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में अगलगी की घटना के मामले में पुलिस ने एक डॉक्टर समेत 3 कर्मियों को किया गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। एनडीए के घटक दलों भाजपा और जनता दल यूनाइटेड ने बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
4: भाजपा ने भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता और गायक पवन सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं पार्टी ने संजय मयूख, अनिल कुमार ठाकुर और शीला पंडित को

0: उम्मीदवार बनाया है। इधर जदयू ने पटना से स्वास्थ्य मंत्री निशांत, मधुबनी से भारती मेहता और पश्चिम चंपारण से शिवरानी देवी प्रजापति को द्विवार्षिक चुनाव के तहत उम्मीदवार बनाया गया है। जबकि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे से रिक्त हुई एक सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए शेखपुरा से ललन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया गया है। गौरतलब है कि विधान परिषद की 9 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव जबकि एक सीट पर उपचुनाव हो रहा है। एनडीए ने आज 8 सीटों पर उम्मीदवारों की सूची जारी की है। शेष 2 सीटों पर जल्द ही उम्मीदवारों के नामों की घोषणा होने की संभावना है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश भाजपा की ओर से आज से राज्यव्यापी विकास, विश्वास और जन कल्याण पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने बताया कि इस दौरान सरकार की उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभियान के तहत सभी जिलों में मीडिया संवाद, प्रदर्शनी, योग शिविर और जन कल्याण शिविर का आयोजन होगा।
2: भारतीय जनता पार्टी द्वारा 5 जून से 21 जून तक पूरे देश एवं बिहार में 12 साल बेमिसाल विश्वास, विकास और जन कल्याण अभियान चलाया जाए। इस अभियान के माध्यम से केंद्र सरकार की उपलब्धियां, जन कल्याणकारी योजनाएं एवं विकसित भारत के संकल्प को जन जन तक पहुंचाने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने लिया है।
1: भागलपुर के विक्रमशिला सेतु पर 7 जून से वाहनों का परिचालन शुरू हो जाएगा। जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी ने बताया कि अभी केवल एक लेन पर अधिकतम 10 टन भार वाले वाहनों को ही वन वे ट्रैफिक के तहत परिचालन की अनुमति दी गई है। उन्होंने बताया कि पेली ब्रिज पर वाहनों के परिचालन का ट्रायल रन पूरी तरह सफल रहा।
3: 7 जून के करीब 11 बजे से स्कूल को हम लोग शुरू करेंगे। पुल का एक लेन यानी लगभग 5 मीटर चौड़ा लेन हमारा चालू होगा, जिसमें कि छोटी गाड़ियों का परिचालन को हम लोग शुरू करेंगे और परिचालन में लगभग 10 टन तक की जो गाड़ियां होंगी, उन गाड़ियों 10 टन तक जो परिवहन होगा उसको हम लोग अलाउ करेंगे।
1: बक्सर के इटाढ़ी रेलवे कुमटी पर नवनिर्मित रोड ओवरब्रिज क्षतिग्रस्त हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि 26 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से निर्मित इस आरओबी का उद्घाटन कुछ दिन पहले हुआ था। आरओबी का पाया संख्या 5 पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। इसके बाद प्रशासन ने पुल पर आवागमन बंद कर दिया है। मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में अगलगी की घटना में 6 लोगों की हुई मौत के मामले में पुलिस ने अस्पताल के 3 कर्मियों को गिरफ्तार किया है। CTSP मोहिबुल्ला अंसारी ने बताया कि ICU में तैनात चिकित्सक डॉक्टर पंकज कुमार, एडमिन मैनेजर राजकुमार और मेंटेनेंस मैनेजर अजीत कुमार की गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने बताया कि इस मामले में अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी के आवेदन पर ब्रह्मपुरा थाने में शिकायत दर्ज की गई है।
4: 4 जून 2026 को करीब 4 बजे सुबह में प्रसाद हॉस्पिटल के ICU वार्ड में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। अभी तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। वो जो 3 लोग हैं वो एक मेंटेनेंस हेड वहाँ के, एक एडमिन हेड और वहाँ जो ICU में जिन डॉक्टर की ड्यूटी थी उस समय वो वहाँ पे नहीं उपलब्ध थे और उनकी, इन 3 लोगों की उस समय इमीडिएट लापरवाही के वजह से जो है कुछ लोगों की मृत्यु हुई है।
1: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि अगले 2 वर्षों में 50 लाख घरों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। आज पटना में पर्यावरण दिवस पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि इस संबंध में केंद्र सरकार के साथ जल्द ही एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होगा। उन्होंने कहा कि 125 यूनिट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन की स्थिति में सरकार की ओर से उपभोक्ताओं को भुगतान किया जाएगा।
5: अगले 2 वर्षों में 50 लाख घरों तक हम सोलर युक्त बिजली पहुंचाए और 125 यूनिट जैसे पार कीजिएगा, 125 यूनिट से ज्यादा आपके घरों पर सोलर युक्त बिजली जब उत्पादन होगा आपके अकाउंट में हम पैसा आपको तुरंत वापस करना शुरू कर देंगे। ये कमाने का भी जरिया हमारे लोगों के लिए हो जाएगा।
1: प्रदेश में आज से शारदीय खरीफ महाअभियान की शुरुआत हुई। इस अवसर पर पटना में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए कृषि

0: मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राज्य सरकार खेत बचाओ अभियान चलाकर मिट्टी की उर्वरता और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है। कृषि मंत्री ने अगले महीने से किसान जन कल्याण संवाद और किसान डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू करने की घोषणा की। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने गैर मजरुआ आम श्रेणी की सभी सरकारी जमीनों तथा जमाबंदी रद्दीकरण के मामलों को रोक सूची में शामिल करने का निर्देश दिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भोजपुर, मधेपुरा और अरवल जिलों के राजस्व कार्यों की समीक्षा के दौरान उन्होंने सरकारी भूमि की खरीद बिक्री रोकने के लिए इसकी सूची निबंधन विभाग को भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
2: एक जमाने से कहा

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: एक जमाने से कहानी है सुना।
2: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय ने आज पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली। पटना स्थित बिहार लोक भवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
3: मैं मीनाक्षी मदन राय, जो पटना उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगी।
2: न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय ने न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू का स्थान लिया है, जो कल सेवानिवृत्त हो गए थे। न्यायमूर्ति राय इससे पहले सिक्किम उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश थीं। वे पटना हाई कोर्ट की दूसरी महिला और 48वीं मुख्य न्यायाधीश बनी हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री श्रवण कुमार, दिलीप कुमार जायसवाल, अशोक चौधरी और रामकृपाल यादव सहित राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्य उपस्थित थे। पूरा प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में है। कई स्थानों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान 41.9 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ कैमूर का पपुआ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 38.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 2-3 दिनों के दौरान तापमान में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है।
4: 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिम एवं उत्तर मध्य भाग के कुछ स्थानों पर, जबकि शेष भाग के एक या दो स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है, तथा राज्य के उत्तर पश्चिम एवं उत्तर मध्य भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर पूर्व, दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
2: आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति आम लोगों को जागरूक करने और प्रकृति के संरक्षण में सामूहिक भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है। एक रिपोर्ट।
5: बदलते मौसम, बढ़ता तापमान, घटते जल स्रोत और प्रदूषण की समस्या आज पूरी दुनिया के सामने गंभीर

0: चुनौती बनकर खड़ी है। ऐसे समय में पर्यावरण संरक्षण केवल एक अभियान नहीं बल्कि हमारी आवश्यकता बन गया है। विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण संरक्षण के संदेश के साथ राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। राजधानी पटना के जेपी गंगापथ पर आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पौधारोपण कर 1,00,000 पेड़ लगाने के अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री चौधरी ने लोगों से अधिक पौधारोपण कर हरियाली बढ़ाने की अपील की।
1: विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मैं जरूर आपको शुभकामना देता हूँ और आज तो एक अभियान भी हम शुरू कर रहे हैं। इस इलाके में लगभग जितना की चिड़ियाखाना में पेड़ नहीं है उससे अधिक सिर्फ इस जेपी गंगा पथ पर 1,00,000 पेड़ लगाने का अभियान आज हम लोग शुरू करने के काम कर रहे हैं।
0: गया में आयोजित कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने कहा कि आज का दिन हमें पर्यावरण के प्रति हमारे उत्तरदायित्व का बोध कराता है।
2: आज का दिन हमें प्रकृति और पर्यावरण के प्रति अपने दायित्वों का स्मरण कराने का अवसर प्रदान करता है। पर्यावरण केवल हमारे चारों ओर का वातावरण नहीं है बल्कि हमारे जीवन स्वास्थ्य भविष्य का आधार है। उसके संरक्षण के बिना मानव सभ्यता का सतत विकास संभव नहीं है।
0: इधर जिला मुख्यालयों में भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। विभिन्न सरकारी संस्थानों में पौधारोपण किया गया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत भी लोगों ने पौधे लगाए और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
3: आज संपूर्ण क्रांति दिवस है। आज ही के दिन लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। इस अवसर पर मुख्य राजकीय समारोह पटना के जेपी कोलंबर पर आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी समेत राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्यों ने जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। अररिया जिले के पलासी थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर एक व्यक्ति को लगभग 5 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। शेखपुरा में पुलिस ने 2 कार से भारी मात्रा में शराब के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया। मुंगेर जिले के जमालपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत फरीदपुर गांव से पुलिस ने एक घर से भारी मात्रा में शराब के साथ पति पत्नी को गिरफ्तार किया। कैमूर के प्रभारी मंत्री संजय सिंह की अध्यक्षता में आज भभुआ में संभावित बाढ़, सुखाड़ और भीषण गर्मी से निपटने को लेकर विभागवार की गई तैयारियों और कार्य योजना की समीक्षा की गई। राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान के तहत आज शिवहर और शेखपुरा जिले के अलग अलग गांव में किसान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारत ने अंडर 18 एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता के बालक वर्ग में पाकिस्तान को 5-3 से पराजित कर फाइनल में जगह बना ली है। भारत की इस जीत में गोलकीपर सावन कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सावन कुमार पटना के आर.के. राय अकादमी में हॉकी का प्रशिक्षण लेते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा और जदयू ने बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की। भाजपा ने भोजपुरी फिल्म अभिनेता पवन सिंह और जदयू ने स्वास्थ्य मंत्री निशांत को बनाया उम्मीदवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर भाजपा ने आज से राज्यव्यापी विकास, विश्वास और जन कल्याण पखवाड़े की शुरुआत की। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु पर 7 जून से शुरू होगा वाहनों का परिचालन। अधिकतम 10 टन भार वाले वाहनों को ही आवागमन की मिलेगी अनुमति। और मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में अगलगी की घटना के मामले में पुलिस ने एक डॉक्टर समेत 3 कर्मियों को किया गिरफ्तार। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है शिवहर जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता हरिकांत सिंह।
1: शिवहर जिले में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। जिले के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। बढ़ती गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। विभिन्न स्थानों पर शीतल पेयजल की व्यवस्था की गई है ताकि आम राहगीरों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। जिला प्रशासन की ओर से लोगों को अनावश्यक रूप से दोपहर के समय बाहर न निकलने की सलाह दी जा रही है। लू और डिहाइड्रेशन जैसी गंभीर समस्याओं से बचाव के प्रति जागरूक करने के लिए प्रशासन की ओर से अभियान भी चलाया जा रहा है। जनता की समस्याओं के त्वरित निष्पादन के लिए राज्य सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा प्रत्येक माह के पहले और तीसरे मंगलवार को पंचायत स्तर पर सहयोग शिविर का आयोजन किए जा रहे हैं। 2 जून को जिले के 13 पंचायतों में सहयोग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 908 आवेदन प्राप्त हुए। इसमें से 779 आवेदनों का निष्पादन मौके पर किया गया। तनियानी प्रखंड के बिलहिया तथा डुमरी कटसरी प्रखंड के नया गांव पंचायत में आयोजित सहयोग शिविर में राज्य के ग्रामीण विकास और सूचना जनसंपर्क मंत्री श्रवण कुमार शामिल हुए। इस दौरान श्री कुमार ने लोगों की समस्याओं को सुनी और उसके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। शिविर में सांसद लवली आनंद, बेलसंड के विधायक अमित कुमार रानू तथा जिला प्रशासन के अधिकारी भी उपस्थित रहे। मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि सहयोग शिविर का मुख्य उद्देश्य जनता की शिकायतों को सुनना और संबंधित विभागों के अधिकारियों के माध्यम से उसका त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है।
2: तो ये सहयोग कार्यक्रम यहाँ के लोगों के लिए, अब ऑफिस नहीं जाना पड़े, ब्लॉक नहीं जाना पड़े, वो जिला नहीं जाना पड़े, उनकी समस्या की यही सुनवाई करके यहाँ से होने वाला है तो यही निष्पादन, यहाँ से नहीं होने वाला है तो जिन अधिकारियों संबंधित है उनको आवेदन यहाँ से भेजा जाएगा और उनको
1: इधर जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक जिला मुख्यालय स्थित समाहरणालय के सभागार में हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रभारी मंत्री श्रवण कुमार ने की। बैठक में जिले में संचालित विकास योजनाओं की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान मंत्री ने लंबित योजनाओं को शीघ्र पूरा करने तथा संभावित बाढ़ और सूखे की स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा खेत बचाओ अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत शिवहर जिले के पंचायतों में किसान जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। किसानों को कृषि भूमि के संरक्षण, मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने तथा बंजर होती जमीन को पुनः खेती योग्य बनाने के संबंध में जागरूक किया जा रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक और कृषि विभाग के अधिकारी शिविरों में किसानों को आवश्यक जानकारी प्रदान कर रहे हैं। भारत माला परियोजना चरण 2 के अंतर्गत प्रस्तावित सिल्लीगुड़ी गोरखपुर एक्सप्रेसवे निर्माण हेतु शिवहर जिले में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। जिला पदाधिकारी के निर्देश पर गठित 5 सदस्यीय समिति ने अधिग्रहण की जाने वाली भूमि के किस्म और प्रकृति निर्धारण करने के लिए मौजा मधुबनी उर्फ परदेसिया और ताजपुर का स्थलीय निरीक्षण किया। यह निरीक्षण एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए प्राप्त खेसरा सूची के आधार पर भूमि की वास्तविक प्रकृति, उपयोग और वर्गीकरण के निर्धारण के उद्देश्य से किया गया। समिति ने संबंधित क्षेत्रों का भ्रमण कर मौके पर ही जांच की। यह 5 सदस्यीय समिति 3 जून से 9 जून तक शिवहर जिले के 12 मौजा का दौरा करेगी। इस दौरान एक्सप्रेसवे के निर्धारित संरेखण के अनुरूप अधिग्रहण की जाने वाली भूमि की प्रकृति और भौतिक सत्यापन तथा निर्धारण किया जाएगा। समाज कल्याण मंत्री डॉ. श्वेता गुप्ता ने जिले के विभिन्न उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में स्थापित स्मार्ट क्लास का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि स्मार्ट क्लास के संचालन से विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण और बेहतर शिक्षा प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। मंत्री ने कहा कि समाज कल्याण विभाग की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए हर स्तर पर सतत प्रयास किए जाएंगे। शिवहर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में बीते दिनों व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें आपसी सहमति के आधार पर 287 मुकादमों का निष्पादन किया गया तथा 48,27,000 रुपए की राजस्व वसूली हुई। राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक कुमार तथा जिला अधिकारी प्रतिभा रानी सहित अन्य अधिकारियों ने किया। कार्यक्रम का संचालन जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव

0: चीफ सह न्यायिक अधिकारी ललन कुमार रजक ने किया। लोक अदालत में सुनवाई के लिए विभिन्न श्रेणियों के 11,000 से अधिक मामलों को चिन्हित कर पक्षकारों को नोटिस भेजे गए थे। इसमें से सुनवाई के बाद आपसी समझौते के आधार पर 287 मामलों का निष्पादन किया गया।
1: अभी आप सुन रहे थे शिवहर जिले की हलचल, इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता हरिकांत सिंह।
2: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आइए सुनते हैं सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में लीजिए प्रस्तुत है गीत। कलाकार हैं तान्या श्याम दीप चक्रवर्ती।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत कार्यक्रम में गीत कलाकार थे तान्या श्याम्यदेव चक्रवर्ती। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं आइए सुनते हैं विशेष कार्यक्रम सरकार के 12 साल।

0: ग्रोथ फंड और एक टॉपअप फंड फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस के नाम से कुछ और प्रयास किए हैं, तो एक्सेस आज के समय में आसान हो गया है एंटरप्राइजेस के लिए। जो सबसे बड़ी चुनौती गिनी जाती थी, वो उसका एक समाधान निकला है इन इंटरवेंशन के माध्यम से।
1: अगर हम समाधान की बात करें तो ये भी देखा गया है कि जो इक्विटी पार्टिसिपेशन आईपीओ के थ्रू भी हो पा रहा है, और यू हैव द निफ्टी वेयर यू हैव एंटरप्रेन्योर्स, दोस स्टार्टअप वेंचर्स आर एबल टू एक्सेस इक्विटी फाइनेंस फ्रॉम द मार्केट इटसेल्फ। Along with that, banking

श्रोताओं आइए सुनते हैं आकाशवाणी एट द रेट 90 इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं विज्ञान संचार में आकाशवाणी की भूमिका।

0: नमस्कार।
1: आज के अंक में हम चर्चा करेंगे आकाशवाणी के 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा, विज्ञान और तकनीक के प्रचार प्रसार में आकाशवाणी की भूमिका पर। आज आकाशवाणी अपने गौरवशाली 90 वर्षों की यात्रा पूरी कर चुकी है। इन 9 दशकों में आकाशवाणी ने केवल समाचार और मनोरंजन ही नहीं बल्कि विज्ञान और तकनीक के जन जागरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत होती है वर्ष 1927 से, किंतु वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना की गई। बाद में 1957 में इसे आकाशवाणी नाम मिला। स्वतंत्रता के समय देश में केवल 6 रेडियो स्टेशन थे और इनकी पहुंच लगभग 11% आबादी तक थी। आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। वर्तमान में आकाशवाणी के 470 से भी अधिक केंद्र कार्यरत हैं, जो देश के लगभग 92% भौगोलिक सीमा और 99% जनसंख्या तक पहुंच रखते हैं। यह दुनिया के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्कों में से एक है। यह आंकड़ा केवल प्रसारण क्षमता का संकेत नहीं देता बल्कि यह दर्शाता है कि आकाशवाणी ने भारत के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक

0: विज्ञान और तकनीक की जानकारी पहुंचाने में कितनी प्रभावी भूमिका निभाई है। आज FM, डिजिटल रेडियो और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के माध्यम से विज्ञान आधारित कार्यक्रम नई पीढ़ी तक पहुंच रहे हैं। आकाशवाणी के 90 वर्ष केवल प्रसारण की यात्रा नहीं बल्कि ज्ञान, शिक्षा और वैज्ञानिक चेतना के प्रसार की गौरव गाथा है। स्वतंत्रता के बाद देश खाद्यान्न संकट से जूझ रहा था। कम उत्पादन, पारंपरिक खेती और वैज्ञानिक जानकारी के अभाव के कारण किसान आर्थिक कठिनाइयों में थे। ऐसे समय में आकाशवाणी किसानों का सबसे बड़ा वैज्ञानिक मार्गदर्शक बनकर सामने आया। COVID-19 महामारी के दौरान सोशल मीडिया पर अफवाहें तेजी से फैल रही थीं। वहीं लोग वैक्सीन से डर भी रहे थे, कहीं घरेलू उपचारों को वैज्ञानिक सत्य मान लिया गया था। ऐसे समय में आकाशवाणी ने डॉक्टरों, वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के माध्यम से प्रामाणिक जानकारियां प्रसारित की। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां इंटरनेट की पहुंच सीमित थी, वहां रेडियो सबसे विश्वसनीय माध्यम बना। बाढ़, चक्रवात, भूकंप, सूखा और समुद्री तूफान जैसे आपदाएं हर वर्ष लाखों लोगों को प्रभावित करती हैं। ओडिशा चक्रवात, बिहार बाढ़, असम की बाढ़ और सुनामी जैसी आपदाओं के दौरान रेडियो जीवन रक्षक माध्यम के रूप में सामने आया। इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में आकाशवाणी ने स्वयं को तकनीकी रूप से आधुनिक भी बनाया है। विज्ञान एवं तकनीक के प्रचार प्रसार में आकाशवाणी की भूमिका के बारे में आइए जानते हैं ICMR के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर VK श्रीवास्तव से।
1: 1990-92 के बीच में ICMR ने आकाशवाणी के साथ मिलकर के एक रेडियो डेट प्रोग्राम किया। डेट मतलब ड्रग, अल्कोहल, टोबैको, एजुकेशन। ये ऑल इंडिया रेडियो के 84 स्टेशन से ब्रॉडकास्ट हुआ प्रोग्राम, 30 एपिसोड का, 16 लैंग्वेजेस में। तो ये प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल रहा। सबसे ज्यादा इसका फायदा ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ। इसका इवेल्युएशन हम सिर्फ दो जगह कर पाए, कर्नाटक और गोवा के ग्रामीण क्षेत्रों में। उससे पता चलता था 4-6% लोगों में, कहीं 4%, कहीं 6% लोगों ने इस प्रोग्राम को सुनने के बाद में इन बुरी आदतों से छुटकारा पाया। एक सबसे और अच्छी बात थी, ये अपने से छोटे बच्चों को सिखाते थे, उनकी जो उनमें बुराइयां थी उनके बचाते बताते थे, उनको शिक्षित करते थे। एक तो ये दो तरह फायदा हुआ इस प्रोग्राम से, तो हम तो चाहते हैं इस तरह के प्रोग्राम और होते रहने चाहिए। अच्छा, उसके बाद सन 86 के आसपास भारतवर्ष में HIV का दौर शुरू हुआ। सन 88 में फिर मैंने HIV पर एक नेशनल फीचर, आधे घंटे का फीचर किया। उसमें हिंदुस्तान भर में जा जाकर जो उस समय के अपने एक्सपर्ट थे, मुंबई में डॉक्टर गिलाडा थे, तो चेन्नई में डॉक्टर सोलोमन थे, और यहाँ के उनकी पेशेंट्स के इंटरव्यू किए, यहाँ होम्योपैथिक एक्सपर्ट्स, आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स, एलोपैथिक एक्सपर्ट्स, WHO, इन सबके से इंटरव्यू करके इनकी रिकॉर्डिंग करके 30 मिनट का प्रोग्राम एक फीचर किया।
0: विज्ञान जगत में किए गए अपने योगदान को याद करते हुए आकाशवाणी में कार्यरत पूर्व ADG मनोज पटारिया ने अपने अनुभव इस तरह साझा किए।
2: मैंने नाटक भी लिखे विज्ञान पर, जो वहाँ से ब्रॉडकास्ट हुए। समय नाम का नाटक था जो टाइम मशीन के ऊपर था, एक प्रदूषण के ऊपर था, जिसमें ये था कि किस प्रकार से प्रदूषण आने वाले समय में मुश्किलात पैदा कर सकता है।
3: श्रोताओं, अब हम बात कर रहे हैं कि विज्ञान संचार में आकाशवाणी की क्या भूमिका है। स्वतंत्र भारत में विज्ञान और तकनीक की जानकारी सीमित थी। आकाशवाणी ने इसे जनसुलभ बनाने का बेड़ा उठाया। विज्ञान जगत, युववाणी, तकनीकी परामर्श, स्वास्थ्य चर्चा, इन कार्यक्रमों में रोजमर्रा के विज्ञान और तकनीक की जानकारी, युवाओं के लिए विज्ञान और शिक्षा, घरेलू और औद्योगिक तकनीक पर जानकारी, साथ ही साथ स्वास्थ्य और पोषण संबंधी कार्यक्रम भी प्रसारित किए जाते हैं।
4: आकाशवाणी ने किसानों के लिए वैज्ञानिक खेती के कार्यक्रम प्रसारित किए, जिनमें से महत्वपूर्ण पहलों में उन्नत बीज और उर्वरक की जानकारी दी गई, सिंचाई और जल प्रबंधन तकनीक भी बताए गए एवं कीटनाशक और रोग नियंत्रण के उपाय भी बताए जाते हैं। हरित क्रांति के दौरान लगभग 60% किसान रेडियो पर निर्भर थे, जिसके कारण पंजाब और हरियाणा में गेहूं और धान का उत्पादन बढ़ा।
3: आकाशवाणी पटना से प्रसारित चौपाल कार्यक्रम भी काफी प्रचलित रहा है, और सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कह सकते हैं वो रहे हैं इनके दो मुख्य पात्र, मुखिया और बहन जी। श्रोताओं, अब अगर बात करें स्वास्थ्य विज्ञान और जागरूकता की, तो आकाशवाणी का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। स्वास्थ्य क्षेत्र में आकाशवाणी ने ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में टीकाकरण, स्वच्छता और पोषण की जागरूकता काफी ज्यादा बढ़ाई है। पोलियो उन्मूलन से

0: कर मातृ और बाल स्वास्थ्य शिक्षा की बात कर ले या फिर एड्स और क्षय रोग जैसी बीमारियों के बारे में जागरूकता फैलाने की बात करें, ये कुछ प्रमुख स्वास्थ्य अभियान रहे हैं जिनसे जुड़ी जागरूकता आकाशवाणी द्वारा फैलाई गई है। और कहीं ना कहीं आकाशवाणी की इन्हीं कोशिशों के कारण 1995 से 2005 में महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य कार्यक्रमों से टीकाकरण दर में 25% की वृद्धि हुई। और श्रोताओं, आकाशवाणी का जन जागरूकता बढ़ाने का प्रयास यही नहीं रुका, बल्कि आज भी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 के रिपोर्ट्स की जानकारी भी रेडियो अब भी घर घर तक पहुंचा रहा है।
1: आकाशवाणी ने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को जनता तक पहुंचाने में विशेष योगदान दिया। कुछ प्रमुख मिशन आर्यभट्ट और रोहिणी, भारत के पहले उपग्रह के बारे में चंद्रयान और मंगलयान की सफलता के बारे में जन जन को बताने में सबसे बड़ा योगदान आकाशवाणी का रहा। चंद्रयान 3 के सफल प्रक्षेपण पर लाइव साक्षात्कार और विशेष चर्चाएं भी आकाशवाणी से प्रसारित हुए।
0: और आकाशवाणी का ये सिलसिला यहीं तक नहीं थमा श्रोताओं, कोविड-19 महामारी में भी आकाशवाणी ने वैज्ञानिक और प्रमाणिक जानकारी जन जन तक पहुंचाई। श्रोताओं, कुछ मुख्य पहलों की बात करें तो वैक्सीन के महत्व पर साक्षात्कार और लाइव कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे थे। मास्क पहनने की जानकारी या फिर सामाजिक दूरी और हाथ धोने की जानकारी, ये भी पल आकाशवाणी द्वारा दी जा रही थी। साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में अफवाहें रोकने के लिए स्थानीय भाषाओं में भी प्रसारण किए जा रहे थे।
1: आकाशवाणी ने प्राकृतिक आपदाओं के दौरान तत्काल सूचना और चेतावनी उपलब्ध कराई। उड़ीसा के चक्रवात, बिहार और असम की बाढ़, सुनामी और भूकंप जैसे उदाहरण देखे जा सकते हैं।
0: आकाशवाणी ने महिला और बाल शिक्षा पर विशेष कार्यक्रम भी प्रसारित किए हैं और अब भी करता आ रहा है। युवा वर्ग में ज्ञान और तकनीक के प्रति उत्साह जगाने वाले कार्यक्रम भी यहां से प्रसारित किए जाते हैं।
1: आकाशवाणी के 90 वर्ष भारत में वैज्ञानिक चेतना और तकनीकी विकास की ऐतिहासिक यात्रा का प्रतीक है। रेडियो ने विज्ञान को सरल बनाया, किसानों को आधुनिक तकनीक सिखाई, अंतरिक्ष विज्ञान को लोकप्रिय बनाया, स्वास्थ्य जागरूकता फैलाई, परमाणु परीक्षणों और वैज्ञानिक उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया। रेडियो ने भारत को केवल सूचना ही नहीं दी, बल्कि वैज्ञानिक सोच और राष्ट्रीय आत्मविश्वास भी दिया।
0: आज जब दुनिया कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल तकनीक की ओर बढ़ रही है, तब भी रेडियो अपनी सरलता, सुलभता और विश्वसनीयता के कारण प्रासंगिक बना हुआ है। वास्तव में आकाशवाणी की 90 वर्षों की यात्रा ये सिद्ध करती है कि विज्ञान और तकनीक का वास्तविक उद्देश्य भी।
2: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी @90। इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे विज्ञान संचार में
3: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया, कहा भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर, गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंचा और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर-18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमण में 9,270 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री इस समय एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं।
4: मैं देशवासियों को आर्थिक क्षेत्र की इस नई ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं देश को फिर आश्वस्त करता हूं कि देश दुनिया भर में चल रहे इन संकटों का सामना करते हुए रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के रास्ते पर ऐसे ही

गति से आगे बढ़ता ही रहेगा, ये मेरी देशवासियों को गारंटी है। साथियों, आज हमारे लिए

0: विकास का मॉडल सस्टेनेबल हो।
1: गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
0: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है, इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात में है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। ये भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं।
0: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है, ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने सदैव अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकारकर विकास को प्राथमिकता दी है। उन्होंने लोगों से विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए एकजुट होकर काम करने की अपील की। सूरत के विकास का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सूरत एक ग्रीन सिटी के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
0: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंकामोरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
2: हमने तय किया है कि बीएसएफ जहां जहां है, एसएसबी जहां जहां है, वहां पर स्मार्ट बॉर्डर का निर्माण करना और एक चतुष्कोणीय सुरक्षा रणनीति के तहत स्थानीय प्रशासन को साथ में लेते हुए, टेक्नोलॉजी को साथ में लेते हुए सीमाओं को एकदम अभेद बनाना। और ये स्मार्ट बॉर्डर का कंसेप्ट फाइनलाइजेशन के स्टेज पर है। इसका पायलट प्रोजेक्ट आने वाले साल में हम निश्चित रूप से इंट्रोड्यूस कर देंगे। एक साथ देश की अलग अलग सीमाओं पर 7 या 8 जगह पे पायलट प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे।
1: गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बाड़ लगाने का काम प्राथमिकता पर किया जा रहा है। इसी कड़ी में त्रिपुरा में 119 किलोमीटर लंबी सीमा पर नई डिजाइन की बाड़ लगाने को मंजूरी दी गई है। इसका पहला चरण शुरू हो चुका है। कार्यक्रम में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक प्रवीण कुमार तथा कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार रहेगी। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
2: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में 3.2% की वृद्धि दर देखी गई है, जो मुख्य रूप से कृषि और मत्स्य पालन क्षेत्रों के प्रदर्शन से प्रेरित है। वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 87,77,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद सरकार ने आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए कई सक्रिय कदम उठाए हैं। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती, सुधारों की सफलता और 140 करोड़ भारतीयों के अथक परिश्रम को दर्शाती है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार लोगों के जीवन को सुगम बनाने, व्यापार में सुगमता और युवाओं के लिए अवसरों को बढ़ाने के हर संभव प्रयास करेगी। मई माह में भारत की यात्री वाहन बाजार में लगभग 4,40,000 वाहनों की बिक्री हुई है। ये पिछले वर्ष की तुलना में 23% अधिक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में ऑटोमोबाइल सेक्टर के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये वृद्धि मजबूत उपभोक्ता मांग को दर्शाती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि यह खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। श्री पुरी ने कहा कि प्राकृतिक गैस का भंडार 355 मीटर की गहराई पर मिला है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली के मालवीय नगर में हुई आग की घटना में 13 विदेशी नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि मृतकों में एक व्यक्ति मोजाम्बिक, 4 नाइजीरिया, 1 लाइबेरिया, 3 किर्गिस्तान, 1 उज्बेकिस्तान, 1 बांग्लादेश, 1 कांगो और 1 इराक का नागरिक था। भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों के बीच हुई बातचीत सकारात्मक रही।
3: The negotiating team which came from
4: बातचीत करने वाली टीम यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के कार्यालय से आई थी। इसमें अमरीकी पक्ष के मुख्य वार्ताकार भी शामिल थे। ये बातचीत इस महीने की 1 और 4 तारीख के बीच हुई। ये चर्चा सकारात्मक और रचनात्मक रही है और दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।
1: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है।
3: With Nepal, we have an expansive agenda.
4: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
3: Partnership that we have with Nepal.
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
5: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान की

0: भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। भारत वर्तमान में अपनी स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली सुदर्शन चक्र विकसित कर रहा है। इसमें रूस से प्राप्त S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो 3 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सुगियानो रविवार को नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। भारत अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। भारत की ओर से आशीष तानीपूर्ति ने 4 गोल किए, शाहरुख अली ने 1 गोल किया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से हार गई थी। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर में गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंच गया है। तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। विभाग के अनुसार अरब सागर कर्नाटक महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के अधिकतर हिस्सों के साथ साथ गोवा तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंचने की संभावना है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन के दौरान बंगाल की खाड़ी के कई क्षेत्रों के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। कहा, भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches multiple development projects in Gujarat and Daman. Prime Minister emphasizes on self-reliance in energy sector, says India actively leading towards green future by balancing economic growth and ecological preservation. Country's GDP growth rate estimated at 7.7% in 2025-26 following strong momentum by the economy. Home Minister Amit Shah says Smart Border Project in its final execution stage. Pilot rollout to be introduced next year at sensitive border locations. Southwest monsoon advances further into more parts of Arabian Sea, Goa and Karnataka. And in hockey, India enter final of men's under 18 Asia Cup, beating Pakistan 5-3 in semi-final at Kakamigahara in Japan. Now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has emphasized self-reliance in the energy sector, stating that the world is moving towards a green future and India is actively leading the way by balancing economic growth with ecological preservation. Addressing a large gathering after launching various infrastructure projects worth over 18,000 crore rupees in Surat today, the Prime Minister pointed out that out of India's total renewable energy capacity of 250 gigawatts, Gujarat alone contributes 50 gigawatts, accounting for a crucial one-fifth of the nation's green energy share. He said the current global energy crisis highlights the critical importance of self-reliance in energy. He said the world is gradually progressing

आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सूरत और दमन में बहुत से तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तवानाई के शोबे में खुद किफालत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि इक्तसादी पेशरफ्त को मुतवाजिन करके नीज माहौलियाती तहफ्फुज़ के जरिए भारत सरसब्ज मुस्तकबिल की जानिब फाल तौर पर क़यादत कर रहा है। मईशत में मजबूत रुझान के नतीजे में साल 2025-26 में मुल्क की GDP की पेशरफ्त 7.7% रखी गई है। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि स्मार्ट सरहदी प्रोजेक्ट अमलावरी के अपने हतमी मरहले में है। हिसास सरहदी मकाम पर अगले साल पायलट शुरुआत मुतारिफ की जाएगी। जुनूब मगरबी मानसून बुहरा अरब, गोवा और कर्नाटक के मजीद हिस्सों में पेशरफ्त कर रहा है। और हॉकी में भारत जापान के काका मिगारा के मकाम पर सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 5-3 से शिकस्त देकर मर्दों के अंडर 18 एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यह कहते हुए तवानाई के शोबे में खुद किफालत पर जोर दिया है कि दुनिया एक माहौलियात के लिए साजगार मुस्तकबिल की जानिब पेशरफ्त कर रही है और भारत इक्तसादी पेशरफ्त को मुतवाजिन करके नीज माहौलियाती तहफ्फुज़ के जरिए इसकी फाल तौर पर क़यादत कर रहा है। गुजरात के शहर सूरत में आज 18,800 करोड़ रुपये से ज़्यादा लागत के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह किया कि भारत की 250 गीगावाट की मजमूई काबिल क़द्र तवानाई में से अकेला गुजरात 50 मेगावाट फराहम करता है, जो कि मुल्क की सब्ज़ तवानाई का 5वां हिस्सा होता है। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि रियासत शमसी तवानाई से माहौल के लिए साजगार हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया में तब्दीली में एक वसी रोल अदा करना चाहती है, जो तवानाई में खुद किफालत हासिल करने के लिए लाजमी है। इस मौके पर अवामी जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि ये इकदाम पेशरफ की क़्यादत करेंगे और अवाम के लिए ज़िंदगी की आसानी को बेहतर बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने खुशी जाहिर की कि माहौलियात के दिन के मौके पर वो सूरत में हैं, जो कि मुल्क के साफ तरीन शहरों में से एक है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मौजूदा तवानाई का आलमी बहरान तवानाई में खुद किफालत की कलीदी अहमियत को उजागर करता है।

0: वैश्विक संकट चल रहा है, ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
1: भारत की मईशत ने साल 2025-26 के दौरान तेजी का रुझान बरकरार रखा है। साल 2024-25 की 7.1% असल जीडीपी के मुकाबले साल 2025-26 के दौरान असल जीडीपी की तरक्की का तखमीना 7.7% है। शुमारियात और प्रोग्राम की हिफाजत की वजारत ने आज माली साल 2025-26 के सालाना अंदाजे के आर्जी आदादोशुमार और इस साल जनवरी से मार्च की सहमाही के अंदाजे जारी किए हैं। वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये भारतीय मईशत के लगातार इस्तेहकाम, इस्लाहात की कामयाबी और 140 करोड़ भारतीयों की सख्त मेहनत की अक्कासी करते हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि हुकूमत जिंदगी गुजारने और कारोबार करने में आसानी पैदा करने और नौजवानों के लिए मौके में इजाफा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि स्मार्ट सरहदी प्रोजेक्ट अमलावरी के अपने हतमी मरहले में है। इसमें सरहदों के साथ 7 से 8 हिसास मकामात पर अगले साल पायलट शुरुआत करने की मंसूबाबंदी शामिल है। इन मकामात की हिफाजत बीएसएफ और एसएसबी करती हैं। त्रिपुरा में आज लंकामूरा सरहदी चौकी पर प्रहरी सम्मेलन से खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि ये प्रोजेक्ट एडवांस टेक्नोलॉजी, नौजवानों और मुकामी शहरी इंतजामिया को नाकाबिले दरअंदाजी सरहदी बंदोबस्त का एक निज़ाम वजह करने के जिमन में मरबूत करेगा।
2: हमने तय किया है कि बीएसएफ जहां जहां है, एसएसबी जहां जहां है, वहां पर स्मार्ट बॉर्डर का निर्माण करना और एक चतुष्कोणीय सुरक्षा रणनीति के तहत स्थानीय प्रशासन को साथ में लेते हुए, टेक्नोलॉजी को साथ में लेते हुए सीमाओं को एकदम अभेद बनाना। और इस स्मार्ट बॉर्डर का कंसेप्ट फाइनलाइजेशन के स्टेज पर है। इसका पायलट प्रोजेक्ट आने वाले साल में हम निश्चित रूप से इंट्रोड्यूस कर देंगे। एक साथ देश की अलग अलग सीमाओं पर 7 या 8 जगह पे पायलट प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे।
1: जनाब शाह ने जोर दिया कि हुकूमत त्रिपुरा, मगरबी बंगाल और बिहार के हिस्सा सरहदी हिस्सों में दरअंदाजी या सरहदी रखना के बगैर किसी भी तरह की आबादियाती मुंतकली की इजाजत नहीं देगी। वजीर दाखिला ने मनुष्यात की स्मगलिंग, इंसानों की नाजायज तिजारत और मवेशियों की स्मगलिंग जैसे खतरात को जड़ से खत्म करने की जरूरत पर भी जोर दिया। जनाब शाह ने बड़े पैमाने पर शजरकारी की एक मुहिम में भी शिरकत की और अगार का एक पौधा लगाया। नेपाल के खारजी उमूर के वजीर शिशिर खनाल वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर की दावत पर भारत के 3 रोजा दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंचे। तीसरे पहर आज नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि डॉक्टर जयशंकर कल नेपाल के अपने हम मनसब के साथ बातचीत करेंगे। उन्होंने उजागर किया कि भारत का नेपाल के साथ एक जामे एजेंडा है जिसमें तरक्याती ताउन से लेकर तिजारत और सरमायाकारी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल के साथ कसीर जहती शराकतदारी को मुस्तहकम करना चाहता है। वजारत खारजा ने आज इत्तला दी है कि दिल्ली के मालविया नगर इलाके में हाल ही में पेश आए आग लगने के हादसे में जान गंवाने वालों में गैर मुल्की शहरियों की तादाद 13 है। नई दिल्ली में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने बताया कि महलुकीन में 4 अफराद का ताल्लुक नाइजीरिया से और 3 का ताल्लुक किर्गिस्तान से था, जबकि मोजम्बिक, लाइबेरिया, उज्बेकिस्तान, बांग्लादेश, जमहूरिया कांगो और इराक के एक एक शहरी की मौत हुई है। भारत रूस ताल्लुकात पर बोलते हुए तर्जुमान ने कहा कि भारत और रूस के दिफाई ताल्लुकात मजबूत हैं जो बरसों से चले आ रहे हैं। भारत और अमरीका के दरमियान तिजारती समझौते पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब जायसवाल ने कहा कि अमरीका के आला मुजाकिरातकार अपनी टीम के साथ 1 जून से 4 जून तक भारत में थे। उन्होंने कहा कि बातचीत मुस्बत और तामीरी नौयत की रही। एक दीगर सवाल के जवाब में जनाब जायसवाल ने कहा कि इस साल अब तक 1076 भारतीय शहरियों को अमरीका से मुल्क बदर किया गया है, जबकि यही तादाद पिछले साल 3567 थी। भारत में गैर मुल्की शहरियों के बारे में बात करते हुए तर्जुमान ने कहा कि मुल्क में गैर कानूनी तौर पर रह रहे लोगों से निमटने के बारे में कवानीन मौजूद हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने नई दिल्ली को रूस के 5वीं नस्ल के स्टेल्थ तैयारे सुखोई SU-57 की पेशकश की है और इन तैयारों को

भारत में मुश्तरका तौर पर तैयार करने की तजवीज़ रखी है। ये पेशकश दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत स्ट्रेटेजिक साझेदारी की अक्कासी करती है। सेंट पीटर्सबर्ग इक्तिसादी फोरम के तनाजुर में कल रात सरकर्दा न्यूज़ एजेंसियों के सरबराहान से बातचीत करते हुए जनाब पुतिन ने कहा कि मॉस्को अब भी SU-57 तैयारा प्रोग्राम में नई दिल्ली की शिरकत का ख्वाहिशमंद है। जनाब पुतिन ने इंटीग्रेटेड फिजाई दिफाई निज़ाम और उससे मुतालिक हार्डवेयर समेत दीगर अहम दिफाई प्लेटफॉर्म्स पर भारत के साथ इश्तराक करने की रूस की तैयारी का इजहार किया है। भारत रूसी साख्त के S-400 मिसाइल निज़ाम के मुमकिन कलीदी पुर्जे के साथ अपने दिफाई निज़ाम सुदर्शन चक्र को स्वदेशी तर्ज पर तैयार कर रहा है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत ने आज पाकिस्तान के साथ सख्त एहतजाज दर्ज कराया है और पाकिस्तान के उन मंसूबों पर शदीद एतराज़ किया है जिसके तहत वो पाकिस्तान की जानिब से गैर कानूनी और जबरन कब्जा किए हुए भारतीय इलाके नाम नहाद गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात कराने का मंसूबा रखता है। ये इंतखाबात इस माह की 7 तारीख को होने हैं। भारत ने अपने वाज़ह मौक़िफ़ को दोहराया है कि नाम नहाद गिलगित बल्तिस्तान समेत जम्मू कश्मीर और लद्दाख का मुकम्मल मरकजी खित्ता भारत का अटूट और नाकाबिल तस्खीर हिस्सा है, क्योंकि साल 1947 में जम्मू कश्मीर का भारत में मुकम्मल कानूनी और नाकाबिल वापसी इल्हाक हुआ था। उमूर खारजा की वजारत ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की इस तरह की कोशिशें उन बुनियादी मसाइल को नहीं छिपा सकती जिनमें इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ, सियासी जबर, माशी इस्तेहसाल और पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे वाले इलाकों में आज़ादी से महरूमी शामिल है। नई दिल्ली ने पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे वाले इलाकों में किसी भी बुनियादी या इंतजामी तब्दीली की कोशिश को वाज़ह तौर पर मुस्तरद कर दिया है। भारत ने जोर देकर कहा है कि इस तरह के इकदाम उन हकायक को छुपा नहीं सकते कि पाकिस्तान अब भी गैर कानूनी तौर पर भारतीय इलाकों पर काबिज है जिन्हें खाली करना होगा। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली सेक्रेटेरिएट में एक आला सतही मीटिंग की सदारत की। दिल्ली के वजीर आशीष सूद, दिल्ली पुलिस, दिल्ली फायर सर्विसेज, दिल्ली की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी और दीगर महकमों के सीनियर अफसरान मीटिंग में मौजूद थे। मीटिंग के बारे में मीडिया को तफसीलात बताते हुए जनाब सूद ने कहा कि वजीर आला ने गैर कानूनी तामीरात, फायर सेफ्टी के उसूलों के खिलाफ वर्जियों और इंतजामी लापरवाही से पेश आए हालिया अलमनाक हादसे पर तशवीश का इजहार किया है। वजीर मौसूफ ने कहा कि हुकूमत ने आफात से निमटने से मुतालिक एक्ट 2005 की मुख्तलिफ दफात को मौसर तरीके से नाफिज करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि अगर रिहायशी या तिजारती इमारतों के मालिकान इस कानून के तहत कसूरवार पाए जाते हैं तो उन्हें जुर्मानों के साथ साथ कैद की सजा का भी सामना करना पड़ सकता है। जनाब सूद ने कहा कि मुस्तकबिल में DMs को अपने ज़िले में काम करने वाले किसी भी महकमे के अफसरान की जवाबदेही तय करने का इख्तियार हासिल होगा। वो ज़रूरत पड़ने पर महकमा जाती कार्रवाई की सिफारिश, FIR दर्ज करने और वजह बताओ नोटिसें जारी कर सकेंगे। गुवाहाटी में हलफबरदारी की एक तकरीब में 12 नए काबिनी वुजरा को शामिल करते हुए आज आसाम की वुजरा काउंसिल में तौसी की गई। गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने नए वुजरा को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। आसाम की वुजरा की काउंसिल की तादाद अब बढ़कर 17 हो गई है। आइन के तहत आसाम में वजीर आला समेत ज्यादा से ज्यादा 19 वुजरा हो सकते हैं। पेट्रोलियम और कुदरती गैस के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने आज ऐलान किया कि अंडमान जजायर के मशरक़ी साहिल से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम 3 के मकाम पर कुदरती गैस दरियाफ्त हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब पुरी ने कहा कि ये दरियाफ्त बुहरे अंडमान के तवानाई के वसी इम्कानात को वाजह करती है और इस ताश में जारी जस्तजू की मुहिम में एक और कामयाबी को नुमाया करती है। पद्म अवार्ड्स 2027 के लिए नामजदगी का अमल अगले माह की 31 तारीख तक जारी रहेगा। वजारत दाखिला ने कहा कि पद्म अवार्ड्स के लिए नामजदगी और सिफारिशात का अमल जो 15 मार्च को शुरू हुआ था सिर्फ राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन तरीके से मौसूल नामजदगियों के जरिए जारी रहेगा। वजारत ने सिलसिले में शहरियों से खुद नामजदगी समेत नामजदगियाँ और सिफारिशात दाखिल करने की अपील की है। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE ने नतायज के ऐलान के बाद अपने पोर्टल पर हुए मनसूबाबंद साइबर हमलों के बारे में दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। 12वीं जमात के उम्मीदवारों के जवाबी पर्चों के वेरिफिकेशन और दोबारा जांच के लिए यह पोर्टल 2 जून को शुरू किया गया था। CBSE ने कहा कि गुज़िश्ता 3 दिन के दौरान पोर्टल पर मुतअद्दिद मनसूबाबंद साइबर हमले हुए हैं। तहम इन हमलों को 24 घंटे 7 दिन की लगातार निगरानी
और जवाबी मैकेनिज्म

0: मेकेनिज्म के जरिए नाकाम बना दिया गया। इस दौरान आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास और दीगर मरकजी हुकूमत की एजेंसियों की साइबर सिक्योरिटी टीमों की मदद हासिल रही। भारतीय महकमे मौसमियात ने कहा है कि जुनूब मगरबी मानसून मगरबी वस्ती और मगरबी वस्ती बहिर अरब, गोवा के हिस्सों और कर्नाटक के इलाकों में मजीद आगे बढ़ गया है। इस तरह की सूरत हाल तमिलनाडु और जुनूब मगरबी खलीज बंगाल में भी जारी है। महकमे मौसमियात ने पेशगोई की है कि जुनूब मगरबी मानसून के वस्ती बहिर अरब, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के मजीद हिस्सों के साथ साथ गोवा, तमिलनाडु और जुनूब मगरबी खलीज बंगाल के बाकी हिस्सों में भी आगे बढ़ने के लिए सूरत हाल मवाफिक है। मौसमियात की एजेंसी ने यह भी कहा है कि आइंदा 2 से 3 दिन के दौरान इसी तरह की सूरत हाल मगरबी वस्ती, मशरक़ी वस्ती और शुमाल मशरक़ी खलीज बंगाल के इलाकों के साथ साथ शुमाल मशरक़ी रियासतों के कुछ हिस्सों में भी जारी रहने की तवक्को है। हॉकी में भारत ने आज जापान के शहर काकामी गहारा में खेले गए मर्दों के अंडर 18 एशिया कप 2026 के सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 3-5 से हरा दिया, जहां भारत का मुकाबला मेजबान जापान से होगा। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सूरत और दमन में बहुत से तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तवानाई के शोबे में खुद की फालत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि इक्तसादी पेशरफ्त को मुतवाजिन करके नीज माहौलियाती तहफ्फुज़ के जरिए भारत सब्ज मुस्तकबिल की जानिब फाल तौर पर क़यादत कर रहा है। मईशत ने मजबूत रुझान के नतीजे में साल 2025-26 में मुल्क की GDP की पेशरफ 7.7% रखी गई है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि स्मार्ट सरहदी प्रोजेक्ट अमल आवरी के अपने हतमी मरहले में है। इस 7 सरहदी मकामात पर अगले साल पायलट शुरुआत मुतारिफ कराई जाएगी। और जुनूब मगरबी मानसून बहिर अरब, गोवा और कर्नाटक के मजीद हिस्सों में पेशरफ्त कर रहा है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आइए सुनते हैं साहित्यिक पत्रिका पर आधारित कार्यक्रम। शब्द शिल्प स्वर सहयोग सुप्रभात राय और प्रस्तुतकर्ता अतुल कुमार। प्रदर्शन आकाशवाणी भागलपुर।
2: श्रोता मित्रों नमस्कार, उपस्थित हैं हम शब्द शिल्प के इस अंग के साथ। श्रोताओं, वैसे तो साहित्य से शायद ही कोई विषय अनछुआ हो। हर विषय और मौसम पे साहित्यिक रचनाएं मिलती है, साथ ही ग्रीष्म ऋतु और साहित्य का गहरा और परस्पर संबंध रहा है। भारतीय साहित्य में जहां एक ओर गर्मी की प्रचंडता, तपन और लू का चित्रण मानवीय संघर्ष और प्रकृति की कठोरता को दर्शाता है, वहीं दूसरी ओर ये प्रेम, उल्लास और फलों के राजा आम के मौसम के रूप में भी उभरती है। कुछ साहित्यकारों ने दोपहर को एकांत और आत्ममंथन के प्रतीक के रूप में देखा है, तो कहीं गर्म हवा को साहित्य में तपस्या और जीवन की कठोर परीक्षा के रूप में दर्शाया गया है। पश्चिमी साहित्य में ग्रीष्म ऋतु को अक्सर युवावस्था, स्वतंत्रता और प्रेम का प्रतीक माना गया है, तो इसी परिप्रेक्ष्य में आइए सुनते हैं एक वार्ता, ग्रीष्म ऋतु का साहित्यिक चित्रण। वार्ताकार हैं डॉक्टर इति कुमारी।
3: भारत ऋतुओं का देश है। यहाँ प्रकृति समय समय पर अपने विविध रूपों से मानव जीवन को प्रभावित करती रही है। भारतीय संस्कृति और साहित्य में ऋतुओं का विशेष स्थान है, क्योंकि मनुष्य और प्रकृति का संबंध अत्यंत घनिष्ठ माना गया है। इन ऋतुओं में ग्रीष्म ऋतु का अपना विशिष्ट महत्व है। सामान्यतः ग्रीष्म को केवल तपन, लू और कठिनाई का प्रतीक समझा जाता है, परंतु साहित्यिक दृष्टि से यह ऋतु केवल गर्मी का अनुभव नहीं कराती, बल्कि जीवन के संघर्ष, तपस्या, प्रतीक्षा, प्रेम, विरह और प्रकृति के सौंदर्य को भी अभिव्यक्त करती है। भारतीय साहित्य की प्राचीन परंपरा में ऋतु वर्णन का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। संस्कृत साहित्य में महाकवि कालिदास ने अपनी प्रसिद्ध कृति ऋतु संहार में ग्रीष्म ऋतु का अत्यंत सजीव चित्रण किया है। उन्होंने सूर्य की प्रखर किरणों, सूखी धरती, तप्त वायु तथा जल

के महत्व को बड़ी कलात्मकता से प्रस्तुत किया है। कालिदास के अनुसार ग्रीष्म केवल कष्टदायक नहीं बल्कि मनुष्य को धैर्य और सहनशीलता का पाठ पढ़ाने वाली ऋतु है। इस ऋतु में प्रकृति का कठोर रूप दिखाई देता है, किंतु यह कठोरता आने वाले मनमोहक वर्षा में फैलता हुआ मोर पंख एवं हरियाली को भी दर्शाता है। इस मौसम को विरह और तड़प का प्रतीक माना गया है। दोपहर की सूनी राहें, गर्म हवाएं, लू और सूखते हुए जल स्रोत प्रेमी प्रेमिकाओं के मन की व्याकुलता और विरह की अगन को दर्शाते हैं। रीतिकाल के कवि बिहारी ने ग्रीष्म की दोपहरी का वर्णन करते हुए लिखा है, देखी दोपहरी जेठ की छाहे चाहती छां, अर्थात जेठ के महीने की दोपहर इतनी भयंकर है कि छाया भी अपने लिए छाया ढूंढने लगती है, वो भी डरकर जंगलों या घरों के भीतर छिप गई है। ग्रीष्म को केवल विनाश या कष्ट का प्रतीक नहीं माना गया है, बल्कि इसे सृजन के अग्रदूत के रूप में देखा जाता है। जब तक ग्रीष्म की तपन चरम पर नहीं होगी, तब तक समुद्र का जल वाष्प बनकर बादलों का रूप नहीं लेगा। इसलिए ग्रीष्म की तपस्या ही वर्षा ऋतु के सुखद आगमन का मार्ग प्रशस्त करती है। यह मौसम वर्षा ऋतु के आनंद की भूमिका भी तैयार करती है। हिंदी साहित्य में भी ग्रीष्म ऋतु का उल्लेख अनेक रूपों में मिलता है। भक्ति काल के कवियों ने इसे आध्यात्मिक प्रतीकों के माध्यम से प्रस्तुत किया। कबीर ने संसार की तपन और आत्मा की प्यास को ग्रीष्म की गर्मी से जोड़ा है। वहीं सूरदास और तुलसीदास ने प्रकृति के माध्यम से मानव भावनाओं को व्यक्त किया है। रीति काल के कवियों ने ग्रीष्म ऋतु में विरहिणी नायिकाओं की व्यथा का मार्मिक चित्रण किया है। तपती धरती और सूखे वातावरण के बीच प्रेम वियोग की भावना और भी गहरी हो जाती है। आधुनिक हिंदी साहित्य में भी ग्रीष्म ऋतु अनेक सामाजिक और मानवीय संदर्भों के साथ सामने आती है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लोक जीवन और सादगी का चित्रण बहुत ही सटीकता के साथ किया है। हिंदी साहित्य के छायावादी और प्रगतिवादी के स्तंभ कहे जाने वाले कवियों ने ग्रीष्म ऋतु के बहाने ग्रामीण जीवन और मजदूरों के संघर्ष को रेखांकित किया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता वह तोड़ती पत्थर में इलाहाबाद की पथ पर दोपहर की कड़कती धूप में काम करती महिलाओं का वर्णन ग्रीष्म की क्रूर यथार्थ को दिखाता है। सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा जैसे कवियों ने ग्रीष्म के माध्यम से जीवन के संघर्ष और संवेदनाओं को अभिव्यक्त किया है। निराला की कविताओं में ग्रीष्म की कठोरता के बीच श्रमिक जीवन की पीड़ा दिखाई देती है। खेतों में काम करते किसान, धूप में तपते मजदूर और सूखी धरती की करुणा साहित्य को यथार्थ से जोड़ती है। इस प्रकार ग्रीष्म केवल प्राकृतिक शत्रु न रहकर सामाजिक यथार्थ का प्रतीक बन जाती है। भारतीय लोक साहित्य में ग्रीष्म ऋतु का विशेष महत्व है। गांव में पके हुए आम की मिठास, कोयल की कूक, कुओं और तालाबों का जीवन तथा पेड़ों की छाया से जुड़ी अनेक लोक कथाएं और लोकगीत प्रचलित हैं। उत्तर भारत के लोकगीतों में गर्मी के दिनों में मायके जाने की इच्छा व्यक्त करती स्त्रियों की भावनाएं मिलती हैं। आम, तरबूज, खरबूजा और बेल जैसे फलों का वर्णन लोक जीवन को आनंदमय बनाता है। इस प्रकार ग्रीष्म ऋतु भारतीय जनजीवन और लोक संस्कृति की आत्मा से जुड़ी हुई है। ग्रीष्म ऋतु भारतीय दर्शन और आध्यात्म में भी तपस्या का प्रतीक मानी गई है। ऋषि मुनि कठिन गर्मी में तप करके आत्मबल को प्राप्त करते हैं। साहित्य में यह तपस्या आत्म संयम और साधना का रूप लेती है। ग्रीष्म की जलती धूप मनुष्य को यह संदेश देती है कि कठिनाइयों के बाद ही जीवन में शीतलता और सुख प्राप्त होता है। इसलिए साहित्यकारों ने ग्रीष्म को संघर्ष और आशा के प्रतीक के रूप में देखा है। प्रकृति चित्रण की दृष्टि से भी ग्रीष्म ऋतु अत्यंत प्रभावशाली है। इस ऋतु में पेड़ के पत्ते झड़ जाते हैं, नदियां सिकुड़ जाती हैं और धरती तपने लगती हैं। किंतु इनके आगमन से पहले पलाश के लाल फूल, अमलतास

0: सुनहरी छटा और आम्र मंजरी प्रकृति को अनोखा सौंदर्य प्रदान करती है। कवियों ने इन दृश्यों को अपनी रचनाओं में बड़ी सुंदरता से चित्रित किया है। कोयल की मधुर आवाज और आम के पेड़ों की हरियाली ग्रीष्म की कठोरता के बीच सौंदर्य और मधुरता का अनुभव कराती है। ग्रीष्म ऋतु का एक महत्वपूर्ण साहित्यिक पक्ष विरह और प्रतीक्षा का भी है। भारतीय काव्य परंपरा में विरहनी नायिका की व्यथा को ग्रीष्म के माध्यम से अत्यंत मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। तपती हवाएं, सूनी राहें और सूखे वृक्ष मानो उसके मन की पीड़ा को व्यक्त करते हैं। इस प्रकार ग्रीष्म केवल बाहरी ताप नहीं बल्कि हृदय की संवेदनाओं का भी प्रतीक बन जाती है। आज के समय में ग्रीष्म ऋतु का साहित्यिक महत्व और भी बढ़ गया है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संकट ने प्रकृति के संतुलन को प्रभावित किया है। आधुनिक साहित्यकार ग्रीष्म की बढ़ती तीव्रता के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहे हैं। सूखती नदियां, घटते जल स्रोत और बढ़ती गर्मी मानव जीवन के लिए चुनौती बनती जा रही है। साहित्य इन समस्याओं के प्रति समाज को जागरूक करने का कार्य कर रहा है। कहा जाता है कि भारतीय साहित्य में ग्रीष्म ऋतु केवल एक मौसम नहीं बल्कि जीवन के अनेक अनुभवों और भावनाओं का प्रतीक है। यह संघर्ष, तपस्या, प्रेम, विरह, सौंदर्य और आशा का संदेश देती है। प्राचीन संस्कृत साहित्य से लेकर आधुनिक हिंदी साहित्य तक ग्रीष्म ऋतु ने कवियों और लेखकों को गहन प्रेरणा प्रदान की है। भारतीय साहित्य में ग्रीष्म का चित्रण यह सिद्ध करता है कि प्रकृति और मानव जीवन एक दूसरे के पूरक हैं। सूरज की किरणों में जीवन का संदेश छिपा है, संघर्ष की गर्मी में ही सफलता का रास्ता बना है, तपती राहों में भी मंजिल मिल जाती है, ग्रीष्म की हर शाम सुकून दे जाती है। इस प्रकार ग्रीष्म ऋतु का साहित्यिक दृष्टिकोण से चित्रण एक महत्वपूर्ण संदर्भ है जो सभी मौसम में इसे विशिष्ट संज्ञा देती है।
1: श्रोताओं, ग्रीष्म को केवल विनाश या कष्ट का प्रतीक नहीं माना गया बल्कि इसे सृजन के अग्रदूत के रूप में देखा जाता है। अभी हम डॉक्टर इति कुमारी से वार्ता ग्रीष्म ऋतु का साहित्यिक चित्रण सुन रहे थे। शब्द शिल्प के इस अंक में अब आइए सुनते हैं एक कहानी। गर्मी जून में नहीं जुनून में है। रचनाकार हैं धीरेंद्र छथरवाला।
2: गर्मी न जून में है न ऊन में है, गर्मी जुनून में है। अगर मनुष्य चाहे तो वीरान वन में भी हरी क्रांति ला सकता है और मन चाहे मंजिल भी पा सकता है। मनोहर एक पढ़ा लिखा इंसान था, सिर्फ वक्त का मारा था। विलक्षण प्रतिभा, तीक्ष्ण मानसिकता और अदम साहसी भी था। असंख्य प्रतियोगिता में वह प्रथम आता था, मगर उसके पास न मोटी रकम और न ऊंची पैरवी। यही कारण था कि वह मंजिल नहीं पा सका। बचपन में ही विवाह हो जाने के वजह से पारिवारिक समस्या भी उसके सामने सुरसा की तरह मुबाए हुए था। अंततः वह हार नहीं मानने वाला था। बाध्य होकर वह किसी तरह एक रिक्शा का इंतजाम किया और वह रिक्शा चलाने का फैसला लिया। इसी बीच मनोहर दो बेटे का पिता भी बन चुका था। उसकी पढ़ाई लिखाई, खान पान की व्यवस्था हर वक्त मनोहर के मानस पटल यानी उसके दिमाग में दौड़ता रहता था। उसके मन में यह था कि मैं तो पढ़ लिखकर रिक्शा चलाने लगा, मगर अपने बेटे को मैं पढ़ा लिखा कर IAS बनाऊंगा। इसके लिए अगर मुझे खून भी बेचना पड़ेगा या किडनी, मैं तैयार हूँ। इसी संकल्प के साथ मनोहर अपने आप को मशीन बना दिया था। भयंकर शीत, झुलसा देने वाला ग्रीष्म, काम सखा वसंत और तीक्ष्ण स्वरों वाली वर्षा का परवाह किए बगैर वह रात दिन रिक्शा चलाता रहता था। एक दिन मनोहर का दोस्त अचानक देखा कि मनोहर रिक्शा पर सवारी बैठा कर जा रहा था। वह निर्निमेष मनोहर को देखता रहा तब तक जब तक मनोहर उसके आंख से ओझल न हुआ और वह सोचने लगा कि पढ़ाई

लिखाई में मनोहर विलक्षण था। हर वर्ष अपने वर्ग में वह प्रथम आता था, मगर आज वह रिक्शा क्यों चला रहा है? जरूर कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं। अब मैं मनोहर से बिना मिले नहीं जाऊंगा। वह वहीं मनोहर के आने का इंतजार करने लगा। लगभग 2 घंटे के बाद मनोहर उस कड़ी धूप में पसीने से तरबतर होकर आया और एक गाछ की छांव में रिक्शा को खड़ा कर पसीना पूछने लगा। इसी बीच वह दोस्त शेखर जो इंतजार कर रहा था, वह धीरे धीरे मनोहर के करीब आया। मनोहर शेखर को देखकर दंग रह गया कि अरे शेखर, कहाँ से, क्या कर रहे हो, बाल बच्चा कैसे हैं? दोनों दोस्त विगत 10 वर्षों के बाद मिला था। इतना सुनते ही शेखर मनोहर के गले से लिपट गया और रोने लगा। शेखर के कंधों पर मनोहर के आंखों से निकला वह गर्म आंसू शेखर के कंधों को झकझोर कर रख दिया। इसी बीच शेखर पूछ बैठा कि मनोहर, वह जो तुम्हारा बेटा नमन था, वह कितना बड़ा हुआ और वह किस क्लास में पढ़ रहा है? मनोहर ने कहा, देखो शेखर, वह बहुत तेज है पढ़ने में। वह वर्ग 4 से लेकर मैट्रिक तक वह हमेशा प्रथम रहा, यहाँ तक कि वह मैट्रिक की परीक्षा में अपने स्कूल में टॉप आया। क्या करें यार, उसकी बलवती इच्छा है कि मैं दिल्ली में पढ़ूंगा। अब उसका नाम दिल्ली में लिखवाना ही पड़ेगा और लिखवा ही दूंगा, चाहे इसके लिए जो करना पड़े। वाह भाई मनोहर, तुमको इस भीषण गर्मी का पता है कि अभी यहाँ का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस है, फिर भी तुम रिक्शा चला रहे हो? सुनो शेखर, गर्मी ना ऊन में है, ना गर्मी जून में है, गर्मी जुनून में है। मेरा तो संकल्प है कि जब मेरा बेटा नमन बीए में भी अपने कॉलेज में फर्स्ट यानी प्रथम आया, उसकी बलवती इच्छा है कि मैं यूपीएससी की पढ़ाई करूंगा। उसकी पढ़ाई के लिए तो यह 45 डिग्री धूप क्या है, 100 भी हो तो मनोहर का रिक्शा न रुका है न रुकेगा, तब तक जब तक मेरा बेटा नमन आईएएस नहीं बन जाता है, तब तक मेरा यह क्रम चलता ही रहेगा। इतना सुनते ही शेखर बोल बैठा कि नमन दिल्ली में कहाँ रहता है, बताओ, मैं उसे समय समय पर मिलूंगा। एक दिन अचानक सड़क के किनारे खड़ा एक लड़का को देखा। उसका चेहरा साफ साफ मनोहर का दूसरा चेहरा दिखा। बिना सोचे समझे बोल पड़ा, तुम नमन हो? जी हाँ, मैं नमन हूँ और मनोहर बाबू का बड़ा बेटा हूँ। सर, आपकी तारीफ क्या है, यानी आपका परिचय? तो आज से पहले कहीं आपको देखा भी नहीं? हाँ, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, हम और मनोहर दोनों एक साथ पढ़ता था। मेहनत से पढ़ो, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो यह मेरा मोबाइल नंबर है, कॉल करना, तुम्हारे साथ हमेशा मैं तैयार हूँ। इतना कहकर वह जाने लगा तो नमन नमस्ते कहकर विदा किया और चलते बना। एक दिन शेखर अपने मित्र के घर उसकी बेटी की विवाह में शरीक होने के लिए जाता है। अचानक वहां मनोहर से मिलता है। मनोहर को भी उस विवाह में सम्मिलित होने का निमंत्रण था। दोनों मित्र में बातचीत के क्रम में मनोहर शेखर को कहता है कि तुम कभी कचहरी कोर्ट गए हो? वहां एक एक झोपड़ी में इस भयंकर धूप में वकील साहब बैठे रहते हैं और उनकी नजर बाहर आने वाले क्लाइंट पर है। धूप की चिंता नहीं, क्योंकि इतने पैसे पास नहीं हैं कि माँ की दवाई लेना है, घर के लिए साग सब्जी लेना है। बच्चे कोर्ट आते वक्त तरबूजा और समोसा लाने को कहा, वह कैसे होगा? इससे तो मैं ठीक हूँ, जो इस भयंकर ग्रीष्म की परवाह किए बिना पढ़ाई से लेकर घर खर्च भी चला देता हूँ, इंतजार नहीं करता। एक दिन एक बीमार व्यक्ति को रिक्शा पर बैठाकर मनोहर अस्पताल लेकर जाता है।

0: देखा कि कुछ लोग आपस में चर्चा कर रहा था कि इसी शहर का एक लड़का नमन नाम का है, जो IAS की परीक्षा में ऑल इंडिया में दूसरा स्थान लाया है, इस शहर का मान बढ़ाया है, इस शहर का नाम रोशन किया है। इतना में एक आदमी बोला, वह जो रिक्शा वाला खड़ा होकर पसीना पोंछ रहा है, नमन उसी का बेटा है। वहाँ खड़े लोगों ने मनोहर को नमस्ते करते हुए बोला, नमन आपका बेटा है? जी हाँ, क्या बात है, कृपया बताएं कि आपका लड़का क्या कर रहा है? आपका नाम मनोहर रिक्शा वाला है? आप मिठाई खाएं, क्योंकि आपका बेटा जो है ऑल इंडिया में IAS के में दूसरा स्थान लाकर इस शहर का नाम रोशन किया है। आपको प्रणाम। अब मनोहर का खुशी का ठिकाना न रहा, वह फूले न समा रहा था। वह दौड़ता हुआ घर गया और अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, चलो सामने मंदिर में प्रणाम करने। क्या बात है, अरे नमन IAS की परीक्षा में दूसरा स्थान पूरे इंडिया में लाया है, वह तो अब जिला अधिकारी बन गया और हम सबका दुख दूर हो गया। इतने में नमन घर आता है, आते ही पिता से लिपट कर रोने लगता है, पिता सीने से लगाता है और नमन को बधाई देने वालों का तांता लगा रहता है। इस प्रकार मनोहर ने यह सिद्ध करके समाज को, दोस्त को, सगे संबंधी को बता दिया कि गर्मी न ऊन में है न जून में है, गर्मी जुनून में है।
1: कुछ रचनाएं किसी विचार या किसी अनूठे क्षण की उपज भर नहीं होती, बल्कि जीवन की जिज्ञासाएं, अनुभव और अवलोकन जब एक लय में गूंजने लगता है, तब वे अपना स्वरूप धारण करती है। अभी हम धीरेन्द्र छथरवाला से कहानी गर्मी जून में नहीं जुनून में है सुन रहे थे। शब्द शिल्प में अब आइए चलते हैं आखिरी सोपान यानी काव्य पाठ की तरफ। इसमें आज हम सुनेंगे अभय कुमार पाठक से काव्य पाठ।
2: ओह, यह कैसा समय आ गया, पानी न जाने अब कहाँ खो गया। लोग पानी के लिए खून बहा रहे हैं, पानी के लिए अब खूंसे नहा रहे हैं। यह तो अभी आगाज है, अंजाम तो और भी बुरा होगा। नागासाकी, हिरोशिमा जैसा कई देश अभी और जलेगा। तृतीय विश्व युद्ध का कारण कुछ और नहीं पानी होगा। जहाँ इतिहास नए युग को दोहराएगा, यही कहानी होगा। समय रहते हम संभल जाएं तो अच्छा होगा। हमारी गलतियों से परेशान सदियों का बच्चा होगा। पानी हर शय की ज़रूरत है जीने के लिए, पेड़ पौधे पशु पक्षी जमी पीने के लिए। कहीं एक बूंद के लिए लड़ाई हो रहा है, सैकड़ों लीटर से कहीं कोई गाड़ी धो रहा है। पहाड़ मिट रहा है, जंगल कट रहा है, पक्कीकरण की होड़ में जमीन घट रहा है। पैसों की खातिर तालाब भर रहा है, अपनी बर्बादी खुद इंसान कर रहा है। मिट्टी की सौंधी खुशबू खो गई, खेत को बिकते देख मेरी आंखें रो गई। पानी के लिए हर तरफ कोहराम मच रहा है, खेत और तालाब को मिटाकर शहर बस रहा है, खेत और तालाब को मिटाकर शहर बस रहा है। आ जाओ मेघों के राजा, आ जाओ मेघों के राजा, देखो धरती तरस रहा है। दुनिया यह बेहाल बनी, अब धूप से अंगारे बरस रहा है। पानी को मोहताज यहाँ सब, जाने क्या कब हो जाएगा। पानी को मोहताज यहाँ सब, जाने क्या कब हो जाएगा। बूंद बूंद तेरा जल अमृत, क्या यूं ही अब खो जाएगा। नदी पोखरे सूख गए सब, कुआं भी अब खाली है। पौधा को देख आंसू आया, लाचार पड़ा अब माली है। हम मानव कुछ हल कर लेते, पशु पक्षी सब तड़प रहा है। खेत हमारा कितना प्यासा, पग पग पर यह दरक रहा है। जल्दी से हरियाली कर दो, जल्दी से हरियाली कर दो, इतनी जल्दी तुम आ जाओ। झूम झूम कर सब नाचेंगे, आओ बादल जल बरसाओ। झूम झूम कर सब नाचेंगे, आओ बादल जल बरसाओ।

माँ शब्द, माँ शब्द संसार में सबसे पवित्र है। बिना बोले ही जान जाए माँ वो मित्र है। माँ की डांट आरती है, माँ का चांटा जीवन का सारथी है। माँ करुणा में सागर है, माँ रोशनी में दिवाकर है। माँ का हर शब्द मोती है, माँ का हर शब्द मोती है। माँ अमावस रात की ज्योति है, माँ बिंदु है, माँ ब्रह्मांड है। माँ सुबह की लालिमा, माँ सुकून की सांझ है। माँ खुशबू है, माँ इत्र है। माँ खुशबू है, माँ इत्र है। माँ शब्द संसार में सबसे पवित्र है। माँ शब्द संसार में सबसे पवित्र है। खाक होने से अच्छा है अंगदान करें। खाक होने से अच्छा है अंगदान करें। जिंदगी को जीने का सम्मान करें। नित्य नित्य नया शोध हो अंग जोड़ने के लिए। सिमटती हुई सांसों में जहाँ घोलने के लिए। नित्य नया शोध हो अंग जोड़ने के लिए। सिमटती हुई सांसों में जहाँ घोलने के लिए। जो हर किसी के ख्वाब को पूरा कर सके। मायूसी भरी जिंदगी में खुशियाँ भर सके। कटे हुए हाथों को हाथ मिल जाए। बेपैर किसी के पैरों से चल पाए। गूंगे का हर शब्द मेरी आवाज़ हो। बहरे के कानों में सुरों का साज हो। मेरा दिल किसी की धड़कन बन जाए। गुर्दा किसी के तन का तजन बन जाए। कोई मेरी आँखों से दुनिया का रंग देख ले। मरने के बाद जो दान करना है वो अंग देख ले। देहदान की ज़रूरत लोगों को बताएंगे। खुशी से इस पंक्ति में हम खड़े हो जाएंगे। रक्तदान की भावना भी जन जन में जगाएं। छोटी सी इस पहल से किसी की जान बचाएं। छोटी सी इस पहल से किसी की जान बचाएं।

0: श्रोताओं, कुछ रचनाएं भावों और कल्पनाओं को सुंदर और प्रभावशाली भाषा में प्रस्तुत करती है। ये मनुष्य के हृदय को आनंदित करने के साथ साथ उसे संवेदनशीलता, नैतिक मूल्यों और जीवन के गहरे सत्यों से जोड़ती है। अभी हम अभय कुमार पाठक से काव्य पाठ सुन रहे थे। श्रोता मित्रों, साहित्य मानव जीवन को दिशा, संस्कार और चेतना प्रदान करता है। ये ना केवल ज्ञान का संचित भंडार है, बल्कि हमारी भाषा, संस्कृति और विचारों को संरक्षित रखकर हमें एक बेहतर इंसान और समाज का निर्माण करने में मदद करता है। श्रोता मित्रों, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही है आपसे अनुमति लेने का। आज के शब्द शिल्प के प्रस्तुतकर्ता थे अतुल कुमार प्रियदर्शन, स्वर सहयोग था सुप्रभात राय का। प्रस्तुति आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इसके लिए हमारा पता है, कार्यक्रम आपके पत्र द्वारा केन निदेशक, आकाशवाणी भागलपुर। हमारा पिन कोड है 812001। आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। इसके लिए हमारी ईमेल आईडी है phairbhagalpur@gmail.com। तो इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे साहित्यिक पत्रिका पर आधारित कार्यक्रम शब्द शिल्प। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत थीम पर आधारित कार्यक्रम आज की रात।

जब कोई व्यक्ति उदास या मायूस होता है तो अक्सर अपने दिल की बातों को, अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाता। कई बार दिल का दर्द किसी को साझा करना चाहता है लेकिन सही शब्द नहीं मिल पाते। जब दिल टूटता है तो आंखें भर आती है। जब दिल के सागर में दर्द गोते लगाता है, जिंदगी वीरान सी लगती है। और जिंदगी में जब खुशियां होती हैं तो दिल झूमने लगता है। जी हाँ श्रोताओं, आज का थीम हमने लिया है दिल, तो चलिए कुछ दिल की बातें करते हैं और कुछ दिल की बातें सुनते हैं। न तुम्हें देखा न तुम्हारा दीदार हुआ, दिल से दिल जुड़े और प्यार बेशुमार हुआ।

दर्द की रात भरी है, ख्वाबों का सफर अधूरा है। तन्हाई में चुपके से दिल की बातें खुद से करते हैं। खोए हुए हैं हम तेरी यादों की गहराई में, अपने ही दिल की धड़कनों की धुन में तुझको ढूंढते हैं।

खुद से रूठे हैं हम और खुद ही मनाना चाहते हैं, पर कहाँ मिलेगा वो दिल जिसे हम खो चुके हैं।

तुझे खोकर ऐसा लगता है दिल की बेहतरीन किताब खो दी है। अब तो सब कुछ अधूरा सा लगता है। उसकी खता सिर्फ दूरियों में नहीं, दिल के अंदर भी महसूस होती है।

दिल की बातें अधूरी रह गई, तेरी यादें साथ चली जा रही है। खुदा जाने क्या हो गया है हमें, तुझसे बिछड़ कर खुद से बिछड़ गए हैं हम।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत थीम पर आधारित कार्यक्रम आज की रात। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आइए सुनते हैं फिल्म संकेत।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

श्रोताओं, फिल्म संगीत में आप सभी का स्वागत है। तो आइए सबसे पहले हम सुनते हैं प्रेम पुजारी फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में नीरज की लिखी इस रचना को दर्ज दिया है एस टी वर्मन ने।

0: 90.
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: श्रोताओं, अगला गीत हमने लिया है सफर फिल्म से, किशोर कुमार की आवाज में, शब्द है इंदिवर के और संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

0: वाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में आइए सुनते हैं दो कलियां फिल्म का ये गीत। सही लुधियानवी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है रवि ने।

श्रोताओं, आइए सुनते हैं अनपढ़ फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में। गीत लिखा है राजा मेहदी अली खान ने और इसे संगीत से सजाया मदन मोहन ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अनपढ़ फिल्म का ये गीत। लता मंगेशकर की आवाज में गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, थोड़ी देर में हम सुनते हिंदी और अंग्रेजी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमन में 2,970 करोड़ रुपए की परियोजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज सूरत में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत के कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने हमेशा अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकार कर विकास को प्राथमिकता दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री ने त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंका मुरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैसों का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि यह खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि यह खोज इस

क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।